0: कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती
0: RM2
1: रेडियो मस्ती,
0: फील द मस्ती।

0: You're listening to RM2, a Radio Masti.
1: जिस दिल

0: एक बात बताऊं दोस्त?
1: बता बता जल्दी बता।
0: एक बार वो मुझे मिलने आई।
1: अच्छा?
0: मैंने प्यार से उसका हाथ पकड़ लिया।
1: फिर क्या हुआ?
0: उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा, मैंने उसकी आंखों में आंखें डाल दी, बस दोनों देखते रह गए।

0: उसका टेलीफोन आया। हाँ, कहने लगी
1: हेलो
0: हेलो डार्लिंग
1: डार्लिंग।
0: हाँ,
1: फिर क्या बोली?
0: बोली मेरे घर में पार्टी है, आओ। जब मैं वहाँ पहुँचा तो पता लगा वहाँ उसकी सिवा कोई भी नहीं था।
1: फिर क्या हुआ?
0: मैं था, वो थी, मैं था।

0: से कभी तुम ना।
1: Rise and shine, start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
2: Radio Musti.
3: सुबह के 5:03 हो रही है। आपका प्यार, आपका अपनापन, आपकी दोस्ती जब तक है ना, तब तक आपसे जुदा होना बहुत ही मुश्किल है। Wishing you all a very good morning. प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम। नीतू की आवाज़ थोड़ी सी ख़राब है आज, लेकिन हाँ, जोश में कमी बिल्कुल नहीं है। ऊपर से फ्राइडे का दिन, सो व्हाटएवर यू माइट बी स्टे वेल ट्यून्ड, एंड द फुटबॉल मानिया हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। आपने कल रात फुटबॉल देखे होंगे, आपके फेवरेट मैचेस जो होंगे, आपके फेवरेट टीम्स, मोर एंड मोर अपडेट्स दिन भर आपको मिलते रहेंगे। सो स्टे वेल ट्यून्ड, एंड जितने भी अर्ली राइजर्स हैं, आप सबका स्वागत करते हुए बस ऐसे ही प्यार मोहब्बत के साथ निभाते चलेंगे विद द बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक। आपके मैसेजेस ऑन सैंक कैट नफ नफ दोज नफ कैट वर एवर यू माइट बी, बस किसी को हाय हेलो, किसी को विश करना चाहेंगे गुड मॉर्निंग, वो जो भी, या फिर किसी का आज बर्थडे है, एनिवर्सरी है, देन एक प्यारा सा पैगाम व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए टिल 7 AM।

0: rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: हवा हो जो भी हो हमारे रुकने से कहाँ रुकते हैं भाई, लेकिन आप हाँ थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं, हमारे हम सफ़र बने हुए हैं. थैंक यू सो मच, अ वेरी गुड मॉर्निंग रेडियो मस्ती टीम. हम बिल्कुल जुदा नहीं होंगे, ये हुई ना बात. थैंक यू. कैसे हैं माय डियर फ्रेंड्स सरोजनी नेगी ओजुल नायदो साथ में सीताना, आप आज फैमिली के लिए थैंक यू सो मच. हाई नीटू एंड RM2 टीम, गुड मॉर्निंग. प्लीज़ गाना मेरी बेटी रिया के नाम, साथ में अंशी केशनी चाची प्रेमिला रामचंद्र और जितने भी आपके डियर वंस हैं आपके लिए खास तौर से कविता बर्टन पॉजिटिव लक्सी. अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको अब्दुल सायरा बानू, हैप्पी फ्राइडे आपको भी, हैव ए नाइस डे अहेड. साथ ही साथ मौदार बैसे हैं धीरज आयुष विदिशा अश्विन ज्योति हरक परिवार, राम राम जी आपके लिए भाई सूरज एंड शर्मा सजादा परिवार लाल माची से हैं, बल्कि त्रियोली से है, सॉरी.

एंड लाल माची से हैं राघुबेन और बस जन्मदिन के लिए मांग कर रहे हैं। दोस्त का नाम है सूरज ऋषि और उनके सभी परिवार के लिए जितने भी लोग आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं हार्दिक शुभकामनाएं। अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी बदवक विदेशी आप हो त्याग से आपके सभी डियर वंस के नाम विदाउट फॉरगेटिंग होम यहाँ पर प्रणाम जी आप है मिस्टर संजय बंधु फ्रॉम सेंचुरिया विलेज एंड बस आज आपके भाई संजीव बंधु उनका बर्थडे है वो इंग्लैंड में है सभी बंधु परिवार की तरफ से एंड रेडियो मस्ती परिवार उनको हार्दिक शुभकामनाएं भेज रही हैं।

0: avec MBC Play, tout ban 104 matchs Coupe du Monde FIFA 2026, avec ou pas tout. Et oui, l'intégralité compétition là pour en direct l'Oban Sen Premium New World TV qui est disponible au MBC Play à partir de 16 ans pour 300 roupies. Et coupé pour sa package là, 6 ans c'est le fois. Ou pourquoi pas suivre tout ban match directement l'eau mobile, tablette, ordinateur ou soit télévision. Download MBC Play, l'eau App Store, Google Play, Huawei App Gallery et Android TV. MBC Play avec ou partout.
1: आइए जानते हैं एमबीसी प्ले पर न्यू वर्ल्ड स्पोर्ट्स पैक में सब्सक्राइब करने का तरीका। स्टेप वन, सब्सक्राइबर को पहले एमबीसी प्ले ऐप खोलना होगा और जाना होगा टीवी सेक्शन में। अब जब किसी भी न्यू वर्ल्ड चैनल पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा टू अ सिक्योर मिप्स पेमेंट पोर्टल। स्टेप टू, अब आपके सामने होंगी दो पेमेंट ऑप्शंस। एक तरीका मोबाइल बैंकिंग एप्स के जरिए पेमेंट करने का, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। सो आपको सिलेक्ट करना होगा अपना प्रेफर्ड मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। अब इन पेमेंट एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर आपको एंटर करना होगा। ऐसा करने के बाद उस बैंकिंग एप्लीकेशन के द्वारा एक सिक्योर पुश नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पर दिखेगी। यूजर को उस नोटिफिकेशन को खोलना है, ट्रांजैक्शन और उसकी डिटेल्स को रिव्यू करना है और सिलेक्ट करना है एक्सेप्ट एंड पे। और वहीं पर अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का ऑप्शन चुनते हैं तो पहले मांगी हुई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स आपको भरनी होंगी और उसके बाद आपके बैंक के द्वारा आपको मिलेगा एक सिक्योर्ड वन टाइम पासवर्ड, यानी कि OTP SMS या ईमेल द्वारा। ये OTP आपको अपने स्क्रीन पर एंटर करना होगा टू ऑथराइज द ट्रांजैक्शन। तीसरा और अंतिम स्टेप, एक बार यूजर ने पेमेंट को ऑथराइज कर दिया अपने बैंकिंग ऐप या OTP के द्वारा, तो उनको अपना स्क्रीन नहीं बंद करना बल्कि इंतजार करना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है पूरी तरह कंप्लीट हो जाए ऑन द एमबीसी प्ले एप्लीकेशन। अब बस सक्सेसफुल पेमेंट कंफर्मेशन होते ही सिस्टम ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर देगा एमबीसी प्ले होम पेज पर और अनलॉक कर देगा इमीडिएट एक्सेस टू द प्रीमियम स्पोर्ट्स स्ट्रीम्स। ज्यादा जानकारी या मदद के लिए सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच में फोन कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन सपोर्ट को 433-3135 या 433-2871 या 433-3145 या 433-2905 या 5251-6363 या फिर ऑन 5944-6800।
2: Wake up with the sun and the sound of fun.
3: RM2
2: Radio Musty.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: आज बजकर 31 मिनट हो रहे हैं. थैंक यू सो मच. थोड़ी देर में आपका हॉरोस्कोप. ओम नमो दुर्गाय नमः. पाजु फैमिली थैंक यू. रुपेश कैसे हैं दोस्त? आपके नाम लवली वाइफ के लिए एंड ऑफ कोर्स आपके पूरे परिवार के नाम आपकी वाइफ दी एंड फैमिली फ्रॉम कटेज. अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको कमलदीप. साथ ही साथ निभा रही है मुकेश साधना लालमाची से पूरे परिवार. हैप्पी फ्राइडे आपको शीला जी फ्रॉम लेस्पेरांस ट्रेबुशे एंड ऑफकोर्स आपके पूरे परिवार के नाम. थैंक यू नीतू. बस हम आपको कहेंगे थैंक यू दोस्त हमारे हम सफर बनने के लिए. रोहन हबी सुबिराज सुनीता शुमैगोनी से हैं आप. और आज मेरी भाभी रेशमी बगन अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है. ये है बिलसे सुया की तरफ से. लालदेव बेटा भी की बहु कीर्ति अपनी वंश सुया बिहारी कोंगुमा से पूरे परिवार की तरफ से ढेर सारा प्यार शुभकामनाएं. एंड कुमार डेबीचन जॉगिंग एंड फुल ऑन म्यूजिक आपके साथ. थैंक यू सो मच. ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है. और मीला राम दिकल मोताय ब्लॉन्श से है आपके पूरे परिवार के नाम.

0: rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: ये बहारें झूम उठती हैं क्योंकि आप हमारे हम सफ़र बने रहती हैं. थैंक यू सो मच, दिल से आपको धन्यवाद. जय माता दी. और यहाँ पर वेल मैं देख रही हूँ नाम किन का है. अभी तक नाम दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हाँ आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस के लिए थैंक यू. माला जी पेचित रिवियर से हैं. आपकी बहन ललिता का जन्मदिन है, वो भी रहती है पेचित रिवियर. हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं उनको. एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू टू. बेटी है स्वीटी, दामाद कमलेश, ग्रैंड चिल्ड्रन शेषना, योहन, रोहन, आपके लिए रागिनी जी मुसलमान सौ सुसी से आपके पूरे परिवार के नाम.

0: ये जो गाड़ी है ना सवेरे वाली गाड़ी वो एकदम स्पेशल है, एकदम शो है. द मोमेंट आप इसमें अंत्य करते हैं तो बस मंजिल एकदम सुहाना हो ही जाता है. 5:42 बस आपका दिन कैसा रहेगा ये जानना चाहेंगे आप.
1: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
0: And as usual, शुरुआत तो आप ही के साथ.
2: एरीज मेष राशि.
0: तो आज का दिन मिला जुला रहेगा लेकिन आपकी सकारात्मक सोच पॉजिटिव सोच हर स्थिति को आसान बना देगी. मन में ईर्ष्या या फिर निगेटिव रखने से बचें. सेहत से जुड़ी किसी पुरानी

0: यानी समस्या को अब नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। रिश्तों में गर्माहट लौटेगी और सगे संबंधियों से मुलाकात का मौका मिलेगा।
1: टॉरस वृषभ राशि,
0: आज भाग्य आपके साथ खड़ा नजर आएगा, मेहनत का फल मिलेगा, आय बढ़ाने के नए रास्ते आपके खुल सकते हैं, कोर्ट कचहरी का मामला आपके पक्ष में जा सकता है, रिश्तों में चल रही खटास बातचीत से खत्म होगी, भाई बहनों और परिवार का सपोर्ट उनका सहयोग आपके लिए मददगार साबित होंगे और दोस्तों का दायरा बढ़ाने से सामाजिक जीवन में रौनक बनी रहेगी।
1: जेमिनी मिथुन राशि,
0: आज का दिन संतुलन और शांति लेकर आएगा, लेकिन धार्मिक आयोजन में शामिल होकर मन को सुकून मिलेगा। राजनीति या सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़े लोग जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें। आप अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, वैसे पुराने मनमुटाव को खत्म करने के लिए पहल आप करेंगे जिससे रिश्तों में मिठास लौटेगी।
1: कैंसर कर्क राशि,
0: वह आज का दिन सामान्य लेकिन स्थिर रहेगा। नए काम की शुरुआत का विचार मन में आ सकता है, लेकिन अनजान लोगों पर तुरंत भरोसा ना करें। आपके निर्णय लेने की क्षमता मजबूत रहेगी। लाइफ पार्टनर के साथ बिताया गया समय रिश्तों को और मजबूत करेगा। किसी काम में समय पर मदद मिल जाएगी और बड़ों की किसी बात से मन थोड़ा दुखी भी हो सकता है।
1: लियो सिंह राशि,
0: आज परिवार और रिश्तों में तालमेल बनाए रखना आपके लिए बेहद जरूरी होगा। विरोधी सक्रिय होंगे, लेकिन आपकी समझदारी उनके हर प्रयास को कमजोर कर देगी। संतान की संगति पर नजर रखें, घूमने फिरने की योजना बन सकती है। नौकरी से जुड़ी परेशानी होने पर नए विकल्पों पर विचार करना आपके लिए एकदम फायदेमंद साबित होगा।
1: वर्गो कन्या राशि,
0: वर आज का दिल यानी कि आज दिल की कोई इच्छा पूरी होने से आपका मन खुश रहेगा। जीवन साथी के लिए कोई खास गिफ्ट खरीद सकते हैं। माता पिता की सेवा में समय बिताकर आत्मिक शांति मिलेगी। कार्यक्षेत्र में समस्याओं को लेकर वरिष्ठों से खुलकर बातचीत करना फायदेमंद रहेगा। बिजनेस को आगे बढ़ाने के प्रयास तेज होंगे एंड प्लीज वाहन चलाते समय बी वेरी केयरफुल।
1: लिब्रा तुला राशि,
0: वेल आज जो है खर्चे आपके लिए कहा जा रहा है कि बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट संभाल कर चलना जरूरी है। ओके, काम का दबाव ज्यादा रहेगा, परिवार को लेकर भी चिंता बनी रह सकती है, संतान की सेहत को लेकर मन परेशान रहेगा। यात्रा के दौरान वैसे आपके लिए ये कहा जाता है कि महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है, बिजनेस में बदलाव करने का विचार मन में आ सकता है।
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,
0: आज मन किसी फैसले को लेकर उलझा रह सकता है, लेकिन खुद पर भरोसा रखना ये भी तो जरूरी है। सामाजिक गतिविधियों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। गुस्से पर कंट्रोल करना आज सबसे बड़ी सीख साबित होगी। बिजनेस से जुड़े समस्या को सुलझाने के लिए आपके पार्टनर से खुलकर बात करनी होगी। अनजान लोगों से दूरी बनाए रखना फायदेमंद रहेगा आपके लिए।
1: सजिटेरियस धनु राशि,
0: आज का दिन भागदौड़ से भरा रहेगा। जरूरी कामों को टालना नुकसान दे सकता है। परिवार के मामलों में मिल बैठकर सुलझाने के आप प्रयास करेंगे, तभी तो रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। लाइफ पार्टनर के साथ मिलकर किसी नए काम की शुरुआत का विचार बन सकता है। पिताजी की सलाह लेने पर मन की चिंता दूर होगी। रुका हुआ काम पूरा होने से आपको राहत भी मिलेगी।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
0: रात आज जिम्मेदारियों की पूरी ईमानदारी से निभाना होगा। आपको नए जिम्मेदारी या प्रोजेक्ट मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। निवेश से लाभ मिलने के योग हैं। खान पान में सुधार से बेहतर आपकी सेहत होगी। मन की कोई इच्छा पूरी होने से खुशी का माहौल रहेगा। वैवाहिक जीवन में तालमेल अच्छा बना रहेगा, हालांकि भागदौड़ बनी भी रह सकती है।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि,
0: आज चुनौतियां तो आएंगी, लेकिन परिवार और दोस्तों का साथ आपको मजबूत बनाए रखेंगे। दूसरों के मामलों में दखल देने से प्लीज बचे। आध्यात्मिक गतिविधियों में मन लगेगा। लंबी दूरी की यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी दूर रहने वाले अपने की याद भावुक कर सकती है एंड स्टूडेंट्स करियर से जुड़े कामों में व्यस्त रहेंगे।
1: पाइसेस मीन राशि,
0: लास्ट आज सामाजिक और व्यावसायिक दोनों क्षेत्रों में

0: सफलता के संकेत हैं। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, लोग आपके काम की तारीफ करेंगे, प्रशंसा करेंगे। आर्थिक मामलों के लिए गए प्रयास सफल रहेंगे। नौकरी के नए अवसर सामने आ सकते हैं। बड़ों के साथ संपत्ति को लेकर चर्चा हो सकती है एंड अचानक यात्रा का योग भी बन सकता है जो लाभदायक साबित होगी। विशिंग यू ऑल बेस्ट ऑफ लक एंड ए वेरी गुड डे अहेड।
1: RM2 Radio Masti Feel

है सबसे स्पेशल बात कि दिल से दिल यहाँ पर जुड़ जाता है। अमृता रामलाल कानूत से आपकी ननद साधना प्रभु का आज बर्थडे है, सो विश कर रही है उनके पति प्रकाश, बच्चे नीमा, दिनेश, गायल, अंशिका, समीक्षा, सब परिवार की तरफ से उनको ढेर सारा प्यार, हार्दिक शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग, जय माता दी आपको, प्रेमिला जी प्रंदी पपाए से, और सभी के लिए गाना खास पति रंजीत एंड पूरे परिवार। सोनम भोला, थैंक यू माई डियर, राम गुलाम फैमिली के लिए। एंड बदवक विदेशी, वेरी गुड मॉर्निंग आपको अनुषा के लिए भी, यही गाना आपके नाम चलाते हैं। ओके, आपने अपना नाम तो नहीं लिखा, मैं ढूंढ रही हूँ। ओके, जगमनी है आप, सो चलिए पूरे परिवार के लिए।

और ये जो साथ है ना आपका और हमारा बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही खास है। बस प्यारी तरानी आपको अच्छे लग रहे हैं। देवी जी शुभ दिन आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू टू प्यारी सी रेखा, आपके बेटे अंश के नाम पोंबोजो से आपके पूरे परिवार के लिए। बस थोड़ी देर में 6 बजे आप सुन पाएंगे संक्षिप्त समाचार।

0: listening to Radio Masti. The time is brought to you by McDonald's.
1: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
0: And RKG Classic Pure Cow Ghee. Share the taste. Share happiness.
2: Radio Masti.
3: North. South.
4: 103.5.
3: East. West.
4: 96.4.
3: Center.
4: 99.4.
5: RM2 Radio Musty.
2: Radio Musty.
5: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
0: Chill ji hai. सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे करुणा. नमस्कार.
6: नमस्कार नीतू शाह, सभी को नमस्कार. फीफा कप का विश्व फीफा कप 2026 का आगाज मेक्सिको सिटी में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हुआ. इस समारोह में सांस्कृतिक प्रदर्शन, नृत्य और विश्व प्रसिद्ध गायिका शकीरा की प्रस्तुति ने दर्शकों का उत्साह बढ़ा दिया. मेजबान मेक्सिको ने अपने अभियान की शानदार शुरुआत करते हुए दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया. मेक्सिको की जीत के साथ स्टेडियम में जश्न का माहौल छा गया और विश्व कप 2026 का रोमांचक सफर आधिकारिक रूप से शुरू हो गया. नेशनल होलसेल मार्केट की सेवाओं का विकेंद्रीकरण अब गुडलैंड्स और फ्लैग तक किया जाएगा. ये परियोजना एक पायलट आधार पर शुरू की जाएगी. क्यूपिप के कॉलेज में कथित बुलिंग और हमले के मामले पर जांच की जा रही है. मामले की सूचना 10 जून को फैमिली प्रोटेक्शन ब्रिगेड को दी गई थी. और विदेश में उत्तर प्रदेश तथा बिहार में तेज आंधी पानी और वज्रपात से 16 लोगों की मौत हो गई है. और अब मौसम की रिपोर्ट. हमारे इलाके पर हल्की हवा पाई जा रही है. पूर्व की ओर से आने वाले बादल हमारे मौसम को प्रभावित करेंगे. अनुमान है कि आज तड़के मौसम सुहाना रहेगा. इसके बाद बादल घिराएंगे पूर्व और सेंट्रल प्लाटू पर, जहां तहां बारिश हो सकती है. दोपहर में कुछ घरी के लिए दक्षिण पश्चिम, दक्षिण एवं सेंट्रल प्लाटू पर बादल घिराएंगे और रह रहकर बारिश हो सकती है. अन्य इलाकों में हल्के बादल छाए रहेंगे. रात के दौरान मौसम सुहाना रहेगा, लेकिन देर रात को पूर्व, उत्तर और सेंट्रल प्लाटू पर बादल घिराएंगे और बारिश हो सकती है. तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम 17 से 19, अधिकतम 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच. साहली इलाकों में न्यूनतम तापमान 21 से 23, अधिकतम 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. उत्तर पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हल्की और अस्थिर हवा चलेगी. प्रवाल रेखा से परे समंदर चंचल रहेगा. लहरें 2 मीटर तक हो सकती हैं. आज के लिए सूर्योदय 6:41 पर, सूर्यास्त होगा 5:37 पर. तो पूरा समाचार बुलेटिन 6:30, तब तक के लिए अनुमति दे. नमस्कार.
7: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
8: Avec NBC Play, tout bande son.

0: en 4 matchs Coupe du Monde FIFA 2026 avec ou pas tout. Et oui, l'intégralité compétition là pour en direct l'Oban Sen Premium New World TV qui est disponible au MBC Play à partir des 16 hein, pour 300 roupies. Et coupé pour sa package là, 6 cents le fois. Ou pourquoi pas suivre tout Oban match directement le mobile, tablette, ordinateur ou soit télévision. Download MBC Play, le App Store, Google Play, Huawei App Gallery et Android TV. MBC Play avec ou partout.
1: आइए जानते हैं एमबीसी प्ले पर न्यू वर्ल्ड स्पोर्ट्स पैक में सब्सक्राइब करने का तरीका। स्टेप वन, सब्सक्राइबर को पहले एमबीसी प्ले ऐप खोलना होगा और जाना होगा टीवी सेक्शन में। अब जब किसी भी न्यू वर्ल्ड चैनल पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा टू अ सिक्योर मिप्स पेमेंट पोर्टल। स्टेप टू, अब आपके सामने होंगी दो पेमेंट ऑप्शंस। एक तरीका मोबाइल बैंकिंग एप्स के जरिए पेमेंट करने का, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। सो आपको सिलेक्ट करना होगा अपना प्रेफर्ड मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। अब इन पेमेंट एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर आपको एंटर करना होगा। ऐसा करने के बाद उस बैंकिंग एप्लीकेशन के द्वारा एक सिक्योर पुश नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पर दिखेगी। यूजर को उस नोटिफिकेशन को खोलना है, ट्रांजैक्शन और उसकी डिटेल्स को रिव्यू करना है और सिलेक्ट करना है एक्सेप्ट एंड पे। और वहीं पर अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का ऑप्शन चुनते हैं तो पहले मांगी हुई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स आपको भरनी होंगी और उसके बाद आपके बैंक के द्वारा आपको मिलेगा एक सिक्योर्ड वन टाइम पासवर्ड, यानी कि OTP SMS या ईमेल द्वारा। ये OTP आपको अपने स्क्रीन पर एंटर करना होगा टू ऑथराइज द ट्रांजैक्शन। तीसरा और अंतिम स्टेप, एक बार यूजर ने पेमेंट को ऑथराइज कर दिया अपने बैंकिंग ऐप या OTP के द्वारा, तो उनको अपना स्क्रीन नहीं बंद करना बल्कि इंतजार करना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है पूरी तरह कंप्लीट हो जाए ऑन द एमबीसी प्ले एप्लीकेशन। अब बस सक्सेसफुल पेमेंट कंफर्मेशन होते ही सिस्टम ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर देगा एमबीसी प्ले होम पेज पर और अनलॉक कर देगा इमीडिएट एक्सेस टू द प्रीमियम स्पोर्ट्स स्ट्रीम्स। ज्यादा जानकारी या मदद के लिए सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच में फोन कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन सपोर्ट को 433-3135 या 433-2871 या 433-3145 या 433-2905 या 5251-6363 या फिर ऑन 5944-6800।
2: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
3: Radio Musty.

सारी दुनिया से तो हम भी बेगाने हैं भाई, लेकिन कभी नहीं भूले कि आपका साथ हमें मिलता रहता है। थैंक यू सो मच। 6:13, वेलकम बैक एंड वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। 5499-1294 पर लेट मी विश अ वेरी गुड मॉर्निंग। किनको आप है? संजीता रीना फ्रॉम कैथ कोको, आप कहते हैं प्लीज डेडिकेटिंग द नेक्स्ट गाना टू माई टू बेबीज प्रत्युष दुवंश। और यहाँ पर है श्रीना, आपकी माँ रेणुका, पापा मनोज, हर दुआर परिवार को अ वेरी गुड मॉर्निंग। सेम टू यू ललित एंड जीत इन फैमिली। बो कोराज टू ऑल दोस गोइंग टू वर्क, या फिर आप ऑलरेडी हिट कर रहे हैं रास्ते, प्लीज ड्राइव केयरफुली।

90s वो तो कुछ अलग ही दौर था है ना, और गाने तो एकदम मस्त. थैंक यू सो मच मिस्टर प्रीतम बीतू फ्रॉम पीतोम, एंड गाने आपको अच्छे लग रहे हैं. थैंक यू.

Hey lovely Kavita, कैसी हैं आप? नमस्कार, good morning and बस हमेशा की तरह साथ निभाते रहती हैं. Thank you so much. शिवशकर 18 मिनट हमारा मन कहता है कि बस आपके लिए प्यारे प्यारे गाने ऐसे ही नगमे चलाते रहें. आपके लिए मन क्या कहता है? 5499 1294.

0: Wake up with the sun and the sound of fun.
1: RM2
0: Radio Musti.
2: आप जैसे लवली पीपल हो तो मन क्यों ना चाहे. गुड मॉर्निंग चाहे आप साहब.

नमस्कार, सबसे पहले आज की सुर्खियां। फीफा विश्व कप 2026 का आगाज मेक्सिको सिटी में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हुआ। मेजबान मेक्सिको ने अपने अभियान की शानदार शुरुआत करते हुए दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। नेशनल होलसेल मार्केट की सेवाओं का विकेंद्रीकरण, अब गुडलैंड्स और फ्लैग तक किया जाएगा। चुपिप के कॉलेज में कथित बुलिंग और हमले के मामले पर जांच जारी। मामले की सूचना 10 जून को फैमिली प्रोटेक्शन ब्रिगेड को दी गई थी। और उत्तर प्रदेश तथा बिहार में तेज आंधी, पानी और वज्रपात से 16 लोगों की हुई मौत।

तो फीफा विश्व कप 2026 का आगाज मेक्सिको सिटी में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हुआ। इस समारोह में रंग बिरंगे सांस्कृतिक प्रदर्शन, नृत्य और विश्व प्रसिद्ध गायिका शकीरा की प्रस्तुति ने दर्शकों का उत्साह बढ़ाया। हजारों फुटबॉल प्रशंसक ऐतिहासिक एस्टेका स्टेडियम में पहुंचे, जहां 40 वर्षों बाद अपने देश में विश्व कप की वापसी को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। हालांकि स्टेडियम के बाहर कुछ स्थानों पर छिटपुट हिंसक झड़पें भी हुई। कट्टरपंथी प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने आयोजन को बाधित करने की कोशिश भी की, जिसके जवाब में सुरक्षा बलों ने कड़ी कार्रवाई की। इसके बावजूद अधिकांश समय फुटबॉल ही आकर्षण का केंद्र में बना रहा। मेजबान मेक्सिको ने अपने अभियान की शानदार शुरुआत करते हुए दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। मेक्सिको की जीत के साथ स्टेडियम में जश्न का माहौल छा गया और विश्व कप 2026 का रोमांचक सफर आधिकारिक रूप से शुरू हो गया। फीफा विश्व कप 2026 के उद्घाटन मैच में मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराकर शानदार शुरुआत की। मेक्सिको सिटी के एस्टेका स्टेडियम में खेले

गए इस मुकाबले में जूलियन क्विन्योनेस ने 9वें मिनट में पहला गोल किया, जबकि राउल जिमेनेज ने 67वें मिनट पर दूसरा गोल किया। ये उनके विश्व कप करियर का पहला गोल है। दक्षिण अफ्रीका को 2 लाल कार्ड मिले, जिससे टीम को मैच में वापसी करने में कठिनाई हुई। लगभग 80,000 दर्शकों की मौजूदगी में

0: अंक हासिल कर ग्रुप स्टेज का सफल आगाज किया। आगे की खबरों में, इस सप्ताह अदालतों में काफ़ी चहल पहल देखी गई। दो मामले, दो पूर्व प्रधानमंत्री से संबंधित, वर्तमान प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम को तिजोरी मामले में 10 वर्षों की कानूनी प्रक्रिया के बाद सभी 23 आरोपों से राहत मिल गई और आरोप हटा दिए गए। वहीं पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री प्रवीण जगनाथ को सुटकेस और 114 मिलियन रुपए से जुड़े मामले में 8 दिसंबर को फिर से अदालत में पेश होना होगा, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है। इन दोनों मामलों ने मॉरिशस की न्याय व्यवस्था को लेकर बहस फिर से तेज कर दी है और इसके साथ एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी उठता है कि क्या मॉरिशियन लोग अभी अपनी न्याय प्रणाली पर भरोसा करते हैं। विस्तार प्रणव बिहारी और आस्था गोबिंद के साथ।
1: न्याय व्यवस्था को लेकर मॉरिशनों की सोच में पिछले कुछ वर्षों के दौरान उल्लेखनीय बदलाव देखने को मिला है। अफ्रो बारोमीटर के 2024 की सर्वेक्षण के अनुसार 67% लोगों का मानना है कि कुछ जज और मैजिस्ट्रेट करप्शन से जुड़े हो सकते हैं। वर्ष 2012 में यह आंकड़ा 46% था। इसी दौरान अदालतों और न्याय व्यवस्था पर लोगों का भरोसा भी कम हुआ है। 2012 में जहां 79% लोगों ने विश्वास जताया था, वहीं 2024 में ये आंकड़ा घटकर 56% रह गया। सर्वेक्षण में ये भी सामने आया है कि 29% मॉरिशनों का मानना है कि कुछ न्यायिक फैसले कानून के बजाय राजनीतिक प्रभाव से प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि अफ्रीकी स्तर पर मॉरिशस की स्थिति अब भी अपेक्षाकृत बेहतर बनी हुई है। अदालतों पर विश्वास के मामले में देश 37 अफ्रीकी देशों में 7वें स्थान पर है। वहीं जजों और मैजिस्ट्रेटों में करप्शन की धारणा के मामले में भी मॉरिशस कई अन्य अफ्रीकी देशों से बेहतर स्थिति में है। नाइजीरिया, कैमरून, गाबन जैसे देशों में ये आंकड़ा 97% तक पहुंच जाता है। सर्वेक्षणों के अनुसार केवल 21% मॉरिशनों का मानना है कि कोई भी जज या मैजिस्ट्रेट भ्रष्ट नहीं है।
0: नेशनल होलसेल मार्केट की सेवाओं का विकेंद्रीकरण अब गुडलैंड्स और फ्लक तक किया जाएगा। ये परियोजना एक पायलट आधार पर शुरू की जाएगी। इसका उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखला और परिवहन लागत को घटाना है, जिससे कि उपभोक्ताओं के लिए फलों और सब्जियों की कीमतें कम हो सके। इसी संदर्भ में उत्तर और पूर्वी क्षेत्रों के किसानों तथा नीलामीकर्ताओं के साथ कल गुरुवार 11 जून को गुडलैंड्स के फार्मर सर्विस सेंटर में एक बैठक लगाई गई। सिंचा मुटु, आस्था गोबिंद।
1: हर दिन लगभग 1500 किसान, नीलामीकर्ता और व्यापारी तथा 700 से 900 वाहन देश के विभिन्न हिस्सों से बेलरीव स्थित नेशनल होलसेल मार्केट पहुंचते हैं। यहां प्रतिदिन लगभग 200 टन फल और सब्जियों का कारोबार होता है। फल और सब्जियों की नीलामी प्रक्रिया को विकेंद्रित करने की योजना के तहत बिक्री व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने तथा परिवहन लागत को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी उद्देश्य से कृषि उद्योग मंत्रालय और एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड ने विभिन्न पक्षों के साथ विचार विमर्श बैठक आयोजित की। ये पायलट परियोजना लगभग एक महीने के भीतर शुरू होने की उम्मीद है। कृषि उद्योग मंत्री डॉक्टर अरविंद बुलेल ने बताया,
2: C'est bien qu'il nous fait sa session interactive. Et tout va se faire dans un esprit de participation et avec la transparence voulue. Okay? Et parce que aussi bien répondre à la norme sanitaire.
1: इसी परियोजना के तहत शनिवार के दिन गुडलैंड्स बाजार के निकट और फ्लक बस अड्डे के पास फल और सब्जियों की नीलामी आयोजित की जाएगी।
0: मॉरिशस में बॉ काउंसिल ने अटोर्नी जनरल दफ्तर में कार्यरत अपने एक सदस्य के प्रति समर्थन व्यक्त किया। गुरुवार 11 जून को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में, जिस पर इसके सचिव यतिन वर्मा के हस्ताक्षर हैं, काउंसिल ने कहा कि उसने सोशल मीडिया पर संबंधित वकील के खिलाफ प्रसारित हो रही टिप्पणियों और आरोपों की जानकारी दी। उसका मानना है कि इस पेशेवर को 17 मई को कौटोयल में एक समूह और गांव के निवासियों के बीच हुई झड़प से अनुचित रूप से जोड़ा गया है।

0: संस्था ने कहा कि किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को अपुष्ट आरोपों और अटकलों के आधार पर नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। बॉ काउंसिल ने यह भी दोहराया कि प्रत्येक नागरिक को अपनी प्रतिष्ठा और गरिमा के सम्मान का मौलिक अधिकार प्राप्त है। काउंसिल ने बिना सत्यापित जानकारी के आधार पर फैलाए जा रहे आरोपों और सार्वजनिक टिप्पणियों पर खेद जताया। साथ ही उसने जिम्मेदार, संतुलित और तथ्यों पर आधारित सार्वजनिक संवाद की आवश्यकता पर जोर दिया। इस पर यतीन वर्मा को सुनते हैं।
1: जब न्याय व्यवस्था के किसी सदस्य की ईमानदारी और प्रतिष्ठा पर सवाल उठाए जाते हैं तो ऐसे समय में बॉ काउंसिल का कर्तव्य है कि वो अपने सदस्य का समर्थन करे और संस्थागत मूल्यों की रक्षा करे। हम इस स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हैं। दुर्भाग्यवश कई भ्रामक और अपुष्ट जानकारियां प्रसारित की जा रही हैं जो किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और सत्यनिष्ठा को प्रभावित कर सकती हैं। ये अस्वीकार्य है। सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अवश्य है और लोकतांत्रिक समाज में उसका सम्मान भी किया जाना चाहिए, लेकिन ये स्वतंत्रता असीमित नहीं है। हर व्यक्ति के अधिकार, गरिमा और उसकी प्रतिष्ठा का भी समान रूप से सम्मान किया जाना चाहिए। इसलिए आवश्यक है कि सार्वजनिक टिप्पणियां जिम्मेदारी के साथ की जाएं और केवल सही तथ्यों की जानकारी साझा की जाए।
0: क्यूपिप के कॉलेज में कथित बुलिंग और हमले के मामले पर जांच की जा रही है। मामले की सूचना 10 जून को फैमिली प्रोटेक्शन ब्रिगेड को दी गई थी। स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार फिनिक्स स्थित फैमिली सपोर्ट सर्विस ने पीड़ित की जिम्मेदारी संभाली, जिसने गुरुवार की दोपहर को अपना बयान दर्ज कराया। मामले की फाइल आगे की जाँच के लिए संबर पुलिस स्टेशन भेज दी गई है। इसके अलावा कॉलेज के प्रबंधन और परिवार संरक्षण ब्रिगेड के बीच हुई बैठक के बाद एक जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया गया है ताकि स्कूलों में उत्पीड़न और घटनाओं को रोका जा सके और विद्यार्थियों की सुरक्षा को और भी मजबूत किया जा सके। कुछ ही घंटों में 91 लोगों की गिरफ्तारी, यही परिणाम रहा। इस सप्ताह मंगलवार और बुधवार की रात के बीच उत्तरी पुलिस डिवीजन द्वारा चलाई गई एक बड़े अभियान का एक व्यापक कार्रवाई थी, जिसमें पुलिस की कम से कम 9 विशेष इकाइयों को तैनात किया गया था। अधिकारियों के पास सैकड़ों वारंट थे और कई इलाके में एक साथ छापेमारी की गई। प्रणव बिहारी की रिपोर्ट, विवरण आस्था गोबिन का।
1: ऑपरेशन थंडर स्ट्राइक नाम से शुरू किए गए एक विशेष पुलिस अभियान के तहत तड़के 3 बजे कई इलाकों में कार्रवाई चलाई गई। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य वांछित व्यक्तियों को गिरफ्तार करना, लंबित वारंटों को लागू करना और कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाना था। इस कार्रवाई में उत्तरी डिवीजन के पुलिस स्टेशनों, जाँच इकाइयों, विशेष हस्तक्षेप टीमों और डॉग यूनिट सहित कुल 9 पुलिस इकाइयों ने हिस्सा लिया। पुलिस के अनुसार 165 वारंटों में से 58 को लागू किया गया, जबकि 47 वांछित व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा अन्य मामलों में भी 45 लोगों को हिरासत में लिया गया। इस प्रकार एक ही रात में कुल 91 गिरफ्तारियां की गई। गांवे, पॉम्पलेमूसेस, थ्रियोले, पॉइंट पीमा उन इलाकों में शामिल रहे जहां सबसे अधिक कार्रवाई की गई। गिरफ्तार किए गए लोगों को आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अदालत में पेश किया जाएगा।
0: अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की दिशा में यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस एक और महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। मंत्रिपरिषद ने यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दे दी है। ये साझेदारी इंडस्ट्री एक्सचेंज नेटवर्क कार्यक्रम के अंतर्गत की जा रही है, जिसका मकसद कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना है। उच्च शिक्षा मंत्री कविराज सुको ने बताया कि इस सहयोग के तहत एक खास अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की भी योजना है। उनसे बात की अंजलि सिरतन फुलचंद ने, विवरण आस्था गोविंद का।
1: एक शोध संस्था कायम करने का इरादा है। इसकी विशेषज्ञता AI और IT पर शोध को बढ़ा

0: हानि पर केंद्रित होगी। हम देश के नौजवानों को इस बदलती दुनिया और चुनौतीपूर्ण नौकरी की मंडी के लिए तैयार करना चाहते हैं। आज सभी जगह AI का ही बोलबाला है। हम चाहते हैं कि मॉरिशस की यूनिवर्सिटियां शोध में आगे बढ़ें।
1: Mais en même temps, on vit que ma recherche émane de nos bonnes universités.
2: 26-29 मई तक मंत्री अरविंद बुलेल के नेतृत्व में एक मॉरिशियन प्रतिनिधिमंडल ने मोनाको ब्लू इनिशिएटिव और ब्लू इकोनॉमी एंड फाइनेंस फोरम में भाग लिया। ये अंतर्राष्ट्रीय मुलाकातें महासागरों के भविष्य और ब्लू इकोनॉमी के विकास पर केंद्रित रहीं। इसी से मॉरिशस के लिए निवेश के नए अवसर, क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने की संभावनाएँ और समुद्री संसाधनों के सतत प्रबंधन के लिए ठोस मार्ग सामने आई है। शबनीज उजिया, असीता रखू।
3: मोनाको में इस मिशन के प्रमुख परिणामों में से एक मास्कारविंस के प्लाटो पर किए गए वैज्ञानिक अभियान की अंतिम रिपोर्ट का अनुमोदन रहा है, जिसे मॉरिशस, सेशल्स और मोनाको ने मिलकर संचालित किया था। इस दस्तावेज में महासागरों की बेहतर सुरक्षा, क्षेत्रीय देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने और समुद्री संसाधनों के प्रबंधन में सुधार के लिए 25 सिफारिशें शामिल हैं। चर्चाओं के दौरान मॉरिशस में ब्लू इकोनॉमी को और विकसित करने के कई रास्ते भी पहचाने गए, जिनमें समुद्री नवीकरणीय ऊर्जा, सतत जल कृषि, सैवाल यानी सीवीड की खेती और समुद्री जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्र शामिल हैं, जो देश के लिए नए आर्थिक अवसर पैदा कर सकती हैं। मॉरिशस प्रतिनिधिमंडल ने एक नवीन टेक्निक का भी अवलोकन किया, जिसमें समुद्री जल का उपयोग हीटिंग यानी कि गर्म और ठंडा कूलिंग करने के लिए किया जाता है। एक ऐसा समाधान जो भविष्य में अधिक पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा परियोजनाओं को प्रेरित कर सकता है। इस भागीदारी के माध्यम से मॉरिशस ने ये दोहराया है कि वह अपने समुद्री संसाधनों का बेहतर उपयोग करने के साथ साथ उनकी सुरक्षा और संरक्षण आने वाली पीढ़ियों के लिए सुनिश्चित करना चाहता है।
2: विदेश स्तर पर भारत में उत्तर प्रदेश और बिहार में तेज आंधी और वज्रपात से 16 लोगों की मौत हो गई है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए एक प्रारंभिक समझौता करीब है। उन्होंने कहा कि बातचीत में प्रगति होने के कारण उन्होंने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमले रद्द कर दिए हैं। हालांकि ईरान ने ट्रंप के इस दावे को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि वार्ताएं अभी भी जारी हैं और अभी तक कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ है। कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत बाकी है और किसी भी समझौते को औपचारिक मंजूरी मिलना अभी शेष है। मौसम की रिपोर्ट। हमारे इलाके पर हल्की हवा पाई जा रही है। पूर्व की ओर से आने वाले बादल हमारे मौसम को प्रभावित करेंगे। अनुमान है कि सुबह के वक्त मौसम सुहाना रहेगा, फिर दोपहर में पूर्व एवं सेंट्रल प्लाटू पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। इसके अलावा दक्षिण पश्चिम, दक्षिण एवं सेंट्रल प्लाटू पर भी बादल घिर आएंगे और जहाँ तहाँ बारिश हो सकती है। अन्य इलाकों में हल्के बादल छाए रहेंगे। रात के दौरान शुरू में मौसम सुहाना रहेगा, लेकिन देर रात को बादल घिर आएंगे पूर्व की तरफ से और उत्तर पूर्व तथा सेंट्रल प्लाटू पर जहां तहां बारिश हो सकती है। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम 17 से 19, अधिकतम जो है 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच। साहली इलाकों में न्यूनतम तापमान 21 से 23, अधिकतम 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। उत्तर पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हल्की और अस्थिर हवा चलेगी। प्रवाह रेखा से परे समंदर चंचल रहेगा, लहरें 2 मीटर तक हो सकती हैं। आज सूर्योदय हुआ 6:41 पर, सूर्यास्त होगा 5:37 पर।

0: 2026 का आगाज मैक्सिको सिटी में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ। इस समारोह में रंग बिरंगे सांस्कृतिक प्रदर्शन, नृत्य और विश्व प्रसिद्ध गायिका शकीरा की प्रस्तुति ने दर्शकों का उत्साह बढ़ाया। मेजबान मेक्सिको ने अपने अभियान की शानदार शुरुआत करते हुए दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। मेक्सिको की जीत के साथ स्टेडियम में जश्न का माहौल छा गया और विश्व कप 2026 का रोमांचक सफर आधिकारिक रूप से शुरू हुआ। नेशनल होलसेल मार्केट की सेवाओं का विकेंद्रीकरण अब गुडलैंड्स और फ्लॉक तक किया जाएगा। ये परियोजना एक पायलट आधार पर शुरू की जाएगी। क्यूपिप के कॉलेज में कथित बुलिंग और हमले के मामले पर जांच की जा रही है। और विदेश में भारत में उत्तर प्रदेश और बिहार में आंधी और वज्रपात से हुई 16 लोगों की मौत। 6:50 हो रहे हैं। ये बुलेटिन आप तक पहुंचाया जा रहा है फैजन के सहयोग से। जुड़े रहे हमारे साथ कुछ ही समय बाद शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: Dispensary Road, Midlands में 62 साल की 62-year-old श्री बाचू तिलक जो बाशिया से जाने जाते थे इंतकाल कर गए हैं। जनाजा जो है आज सुबह 9:30 इनके मकान डिस्पेंसरी रोड मिडलैंड से निकाल कर दफनाने के लिए मिडलैंड का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 9:30 AM। नंबर 4 अब्दुल कादिया स्ट्रीट पोटली में 84 साल की 84-year-old जनाब रसीद पराउती जो रसीद ताये से जाने जाते थे इंतकाल कर गई हैं। जनाजा आज रात 8:00 इनके बेटे महमूद पराउती के मकान नंबर 4 अब्दुल कादिया स्ट्रीट पोटली से निकाल कर दफनाने के लिए रिश्ते का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 8:00 PM। ओटवायाल काउंटी मास्कपावे में 81 साल की 81-year-old श्रीमती बिदवंती ओबिलक पैदाइश नाम जगरूप जो सुभावती से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। रथे आज दिन के 2:00 इनके बेटे दीपक सिंह ओबिलक के मकान गोटवायाल कौंडेमास्क पावे से उठाकर दाह संस्कार के लिए बोवालों कौंडेमास्क पावे की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:00 PM। सांसुसी रोड मोटाई ब्लॉन्च में 60 साल की 60-year-old श्री अजेंद्रनाथ गजाधर जो घोह से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2:00 इनके बेटे शकील गजाधर के मकान सांसुसी रोड मोटाई ब्लॉन्च से उठाकर दाह संस्कार के लिए मोटाई ब्लॉन्च की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:00 PM। रू बांबू मेबर्ग में 46 साल की 46-year-old कुमारी प्रिया चतुरी जो फीफी से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1:00 इनके मकान रू बांबू मेबर्ग से उठाकर दाह संस्कार के लिए रू तोंबू मेबर्ग की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1:00 PM। शमेराई सिते औजी फ्लाक में 66 साल के 66-year-old श्री निशान कुमार नरसिमुलू जो अशोक से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सपहर 3:00 इनके मकान शमेराई औजी फ्लाक सिते औजी फ्लाक से उठाकर पहले थोडोडुस के नोत्रडाम डे बोंसेको गिरजाघर ले जाया जाएगा। फिर अंतिम संस्कार के लिए खिशमाओ की स्मशान भूमि। फिनरल टुडे आतिफ रिप।

0: bien. Saint-Julien village में 8 साल की 8-year-old minor Piyusha Ramdu, minor Piyusha Ramdu, जो पीयूष से जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 12:30 बजे इनके पिता श्री सुभाष तुसाडू रामडू के मकान स्कूल लेन सेंट जूलियन विलाज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेंट जूलियन की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुडे एट 9:30 साई बाबा रोड बिलेरविया सेश में 60 साल के 60-year-old श्री देवदत्त रामकलावन, श्री देवदत्त रामकलावन जो बॉय शोफर टैक्सी से जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुबह 9 बजे के मकान साई बाबा गली बिलेरविया सेश से उठाकर दाह संस्कार के लिए बुशों की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे आते 9 AM थ्रियोले में 65 साल की 65-year-old श्रीमती जयंती गोप घनश्याम, श्रीमती जयंती गोप घनश्याम पैदाइशी नाम रामरचया जो साकुन से जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 11 बजे इनके मकान थ्रियोले से उठाकर दाह संस्कार के लिए तेमिनिस थ्रियोले की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM जुक्रे रोड नोत्रडेम में 77 साल की 77-year-old श्री जगदीप देबीदिन, श्री जगदीप देबीदिन जो परमानंद से जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 10 बजे की पत्नी श्रीमती भानुमती देबीदिन के मकान जुक्रे रोड नोत्रडेम से उठाकर दाह संस्कार के लिए थ्रियोले की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM ओटवायल प्लेन दे रोश में 90 साल के 90-year-old श्री जय नारायण रामजतन, श्री जय नारायण रामजतन जो जय से जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2:30 बजे इनके मकान ओटवायल प्लेन दे रोश से उठाकर दाह संस्कार के लिए पितों की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM और लकावेन नंबर 1 वाकवा में बीबी सारा ओली राम पैदाइश नाम को दिया जो बीबी से जानी जाती थी, इंतकाल कर गई हैं। जनाजा आज दिन के 1:15 बजे बल्कि जनाजा जो हैं कल दिन के 1:15 बजे इनके शौहर जनाब मोहम्मद तुलब ओलीराम के मकान लकावेन नंबर 1 वाकवा से निकाला गया और दफनाने के लिए फिनिक्स का कब्रिस्तान ले जाया गया। फिनरल यस्टरडे एट 1:15 PM शोकग्रस्त इन सभी परिवारों के प्रति हमारी दिली हमदर्दी है।
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: बस मस्त रहिए, खुश रहिए और क्या चाहिए। 6:57 टाइम टू से बाय बाय हमारे पीछे आ गई है। विकास अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको एंड हमारी जाने का टाइम आ गया है। स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।

0: बड़े बड़े हैप्पी हो गए हम यहाँ बैठे बैठे करने लगे भरतनाट्यम
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: हे नमस्ते और स्वागत है आप सभी का गुड मॉर्निंग हैप्पी हैप्पी फ्राइडे फ्राइडे आखिरकार वो दिन आ गया जिसका सबको इंतजार रहता है ये इज अ फ्राइडे वीकेंड बस एकदम पास है और नॉक नॉक कर रहा है इसे चाहिए कि सुबह फुल ऑन एनर्जेटिक हो पॉजिटिव हो और हो म्यूजिकल और दोस्तों फुटबॉल की बात करें तो ओहो हो यस वर्ल्ड कप इतने टाइम से इंतजार

0: छोड़ दे सबका, कब वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है और कब पहला मैच होगा, ओपनिंग सेरेमनी और डाई डाई इसका भी मजा है ना। एक कमाल का आगाज, धमाकेदार शुरुआत और होस्ट नेशन मेक्सिको, मेक्सिको ने ओपनिंग मैच में ही साउथ अफ्रीका 2-0 से हराकर टूर्नामेंट की शुरुआत कर दी। जहां जहां पर फुटबॉल से रिलेटेड न्यूज होने वाली, स्पोर्ट्स की बातें होने वाली, वहीं पर बॉलीवुड की कुछ खबरें भी। तो चाहे आप ऑफिस जा रहे हो या स्कूल रन पर हो या फिर अपनी मॉर्निंग में चाय के साथ रिलैक्स कर रहे हो, हम लेकर आए हैं बॉलीवुड के कुछ सुपरहिट गाने फ्राइडे फुल ऑन मस्ती और फुल ऑन पॉजिटिव वाइब्स के साथ। तो मैं रहूंगा आपके साथ, इट्स गोना कंटिन्यू टिल 9 म्यूजिक के साथ सनशाइन।
1: अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो, मॉर्निंग बीट आरएम2
2: रेडियो

0: वो कैसे चलता है? पौ, पौ, पौ। हो रहे आपकी गाड़ी से?
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: अरे क्या करें साहब, सुबह सुबह ये भागो दौड़ी के अंदर कभी कभी ये जो पोंपो है यानी कि जो घंटी बजाती है गाड़ी की, वो हो ही जाता है ट्रैफिक की सिचुएशन। लेकिन अब इतने सारे मैचेस और इतनी सारी मूवमेंट, इतनी सारी हलचल, इतनी सारी एक्साइटमेंट, वर्ल्ड कप, ओ हो राइट। वहीं पर बहुत सारे मैचेस, जहां पर फ्राइडे की बात करें तो कनाडा वर्सेस बोस्निया हर्जेगोविना और यूनाइटेड स्टेट्स एंड पैराग्वे, ये मैचेस होंगे। अपडेट सारे यहां पर मिलने वाली, बस भूलिए मत थोड़ी देर में होंगे स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ खबरें हमारे साथ, वर्ल्ड कप मैगजीन भी। और वहीं पर याद रहते कि आज पहुंचेगी हमारी टीम और पहुंचने वाली आपके बहुत करीब, आपके पास गोजल मेट्रो स्टेशन पहुंचेगी और ये होगा फ्रॉम 2 PM टिल 5 PM। वहां पर जाकर एमबीसी प्ले को डाउनलोड कर सकते हैं और जितने भी मैचेस हैं उन सबको देख सकते हैं बहुत ही आराम से, इन योर स्पेस एट योर कंफर्ट। भूलिए मत एमबीसी प्ले 1.0, जहां पर आपको मिलती है सारी की सारी खबरें, या टीवी की बात करें, रेडियो की बात करें, या फिर अभी फिलहाल वर्ल्ड कप की। तो बस भूलिए मत आज 2 to 5 PM हमारी जो टीम होगी पहुंचेगी एट गोजल मेट्रो स्टेशन। तो चलिए चलाते हैं गाने कुछ ऐसे जो पसंद करता है पूरा नेशन।
1: मॉर्निंग बीट, अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो।
2: RM2 रेडियो मस्ती इन द मिक्स।

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Mustie. जब मॉर्निंग मॉर्निंग का टाइम और ऐसे में सुबह सुबह किसी को मिल लो तो अच्छा लगता नहीं। अभी हमारे साथ तो हैं, कौन है भैया? हेलो
2: हेलो।
1: हाँ जी किशन साहब।
2: हाँ जी
1: सर, वो सुबह सुबह कोई पूछ रहा था कि वो किशन तो है कन्हैया कहाँ पर है, क्या कहूँ उसको?
2: किशन है कन्हैया नहीं
1: है। अच्छा किशन है नहीं है। सर आपको किसी ने कहा था फोन करने के लिए, ऐसे हैं कई लोग परिवार में बोला कि किशन साहब को फोन करो आज सुबह, कोई पार्टी वार्टी देने वाले हैं नहीं है क्या आज?
2: पता नहीं जिसने आपको फोन करने के लिए कहा उसी को पता होगा।
1: हाँ पता नहीं, ये तो परी है और विदुला, जानते हैं इनको?
2: कुछ सुना सुना लग रहा है।
3: यू यू
2: थैंक यू।
1: अरे सर हैप्पी बर्थडे टू यू और बहुत सारी विशेज हमारी पूरी टीम की तरफ से, और स्पेशल बोला आपकी बेटी परी ने और वाइफ विदुला ने, ये जो नाम आपको सुने सुने से लग रहे हैं। अब ऐसा है सर, इसको अनसुना मत करना नहीं तो सुन नहीं पाएंगे पूरी जिंदगी भर। अरे सर किशन साहब, और कैसे हैं आप?
2: बहुत बढ़िया।
1: अरे वाह, आज के कुछ प्लान्स क्या प्लान कर रहे हैं? कुछ स्पेशल फ्राइडे का दिन आ गया।
2: अभी तो मैं काम पे जा रहा हूं।
1: हां ओके ओके।
2: शाम को लौट के समय फैमिली के साथ कहीं पर डिनर उधर जाएंगे।
1: अरे क्या बात है, मेरे ख्याल से इससे खूबसूरत बात और कोई नहीं कि फैमिली के साथ जिन्होंने सोचा कि सुबह से आपको रेडियो के जरिए विश करते हैं, ये जो खुशियां हैं इनको बटोर लो, जिंदगी को जी लो। किशन साहब कांग्रेचुलेशंस हमारी पूरी टीम की तरफ से, और आपको बता दें कि लोलो हाइपर मार्केट की तरफ से आपको मिलता है 500 रुपए के वाउचर। आज या कल आकर जल्दी जल्दी से फटाफट ले लीजिए वाउचर और दिन को बनाइए बहुत स्पेशल।
2: Thank you.
1: Thank you so much, Kishan ji. Wonderful day ahead. Happy birthday to you.
0: A good beat for your morning show. Morning Beat. RM2
1: Radio.

0: आइए जानते हैं NBC Play पर न्यू वर्ल्ड स्पोर्ट्स पैक में सब्सक्राइब करने का तरीका। स्टेप वन, सब्सक्राइबर को पहले NBC Play ऐप खोलना होगा और जाना होगा टीवी सेक्शन में। अब जब किसी भी न्यू वर्ल्ड चैनल पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा टू अ सिक्योर MIPS पेमेंट पोर्टल। स्टेप टू, अब आपके सामने होंगी दो पेमेंट ऑप्शंस। एक तरीका मोबाइल बैंकिंग एप्स के जरिए पेमेंट करने का, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। सो आपको सिलेक्ट करना होगा अपना प्रेफर्ड मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। अब इन पेमेंट एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर आपको एंटर करना होगा। ऐसा करने के बाद उस बैंकिंग एप्लीकेशन के द्वारा एक सिक्योर पुश नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पर दिखेगी। यूजर को उस नोटिफिकेशन को खोलना है, ट्रांजैक्शन और उसकी डिटेल्स को रिव्यू करना है और सिलेक्ट करना है एक्सेप्ट एंड पे। और वहीं पर अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का ऑप्शन चुनते हैं, सो पहले मांगी हुई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स आपको भरनी होंगी और उसके बाद आपके बैंक के द्वारा आपको मिलेगा एक सिक्योर्ड वन टाइम पासवर्ड, यानी कि OTP SMS या ईमेल द्वारा। ये OTP आपको अपने स्क्रीन पर एंटर करना होगा टू ऑथराइज द ट्रांजैक्शन। तीसरा और अंतिम स्टेप, एक बार यूजर ने पेमेंट को ऑथराइज कर दिया अपने बैंकिंग ऐप या OTP के द्वारा, तो उनको अपना स्क्रीन नहीं बंद करना बल्कि इंतजार करना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है पूरी तरह कंप्लीट हो जाए ऑन द NBC Play एप्लीकेशन। अब बस सक्सेसफुल पेमेंट कंफर्मेशन होते ही सिस्टम ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर देगा NBC Play होम पेज पर और अनलॉक कर देगा इमीडिएट एक्सेस टू द प्रीमियम स्पोर्ट्स स्ट्रीम्स। ज्यादा जानकारी या मदद के लिए सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच में फोन कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन सपोर्ट को 433-3135 या 433-2871 या 433-3145 या 433-2905 या 5251-6363 या फिर ऑन 5944-6800।
1: RM2
2: Radio Musti.
3: La vie, c'est ou PC sentir, c'est le marque de c'est Nol Shop. Refil ban produits ménagers, révinou bien moins, c'est et complice ou péranen grand, c'est vis la natire. Amenou galon, vin refil ban produits ménagers éclisienne, donne nous 4 Nol Shops. Triolet, paille, petite rivière et floréal.
4: Économique, écologique, passez au refil, c'est logique.
5: Cernol, le signe de confiance.
1: RM2
2: Radio Musti.

0: Sports Magazine is brought to you by Quality Deco, the Flow Expert.
1: Get ready for the biggest World Cup ever!
2: 2026 FIFA World Cup.
1: पहली बार होगी 48 टीम्स, 104 मैचेस. रेडियो मस्ती की टीम के साथ
2: चलिए
1: यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मेक्सिको.
2: रेडियो मस्ती के साथ
1: वर्ल्ड कप मैगजीन.
0: लॉट्स ऑफ एक्शन और हर कोई इंतजार में था कि क्या होने वाला है. ओपनिंग सेरेमनी से लेकर ओपनिंग मैच और इतना सारा एक्शन ऑल ओवर द वर्ल्ड देख रहे हैं इस ग्रैंड स्पोर्ट्स स्पेक्टेकल को. और वहीं पर जो स्टूडियो की बात हो रही है तो वो तो कमाल थी विद फुल ब्लास्टिंग वॉल्यूम के साथ मैचेस. और वहीं पर स्टेडियम में भी कुछ अलग ही कहानी.
3: Alvarado's crossing. It's a goal he was looking for. It's Real Madrid.

मेक्सिको में जब गोल बनता है तो ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं। बिएनवेनिडा आ मेक्सिको, वेलकम टू मेक्सिको। 2026 वर्ल्ड कप चल पड़ा, रंगारंग ओपनिंग सेरेमनी लेजेंडरी अज़्टेका स्टेडियम में। मेक्सिको सिटी में चमक दमक और स्टार परफॉर्मेंस, टॉप परफॉर्मेंस मेक्सिको की फुटबॉल टीम की ओर से भी। ओपनिंग मैच में 2-0 की जीत साउथ अफ्रीका के खिलाफ। अपने 80,000 प्लस फैंस को निराश नहीं किया टीम मेक्सिको ने। फर्स्ट हाफ में जुलियन क्यूनेस का गोल, फिर सेकंड हाफ में राउल यिमेनेज का गोल। वर्ल्ड कप फाइनल्स में ये यिमेनेज का पहला गोल है। 3 रेड कार्ड भी दिए गए इस मैच में, 2 साउथ अफ्रीका के लिए, 1 मेक्सिको के लिए। ब्राजील से रेफरी विल्टन सम्पायो ने पूरी सख्ती के साथ मैच ऑफिशिएट किया। एक ही मैच में 3 रेड कार्ड, जबकि पिछले वर्ल्ड कप में कतर 2022 में टोटल 4 रेड कार्ड दिए गए थे। मतलब इस साल रेफरी से बच के रहना होगा खिलाड़ियों को। राउल यिमेनेज अपनी टीम का हीरो बना। ये वही खिलाड़ी हैं जो 2020 में फुटबॉल मैदान में मर जाता फ्रैक्चर्ड स्कल के साथ। वुल्व्स का स्ट्राइकर वापस आया, 6 साल बाद हीरो बना। इमोशनल घड़ी रही यिमेनेज के लिए, अपनी वो आंसू नहीं रोक पाया। परफेक्ट स्टार्ट मेक्सिको के लिए जो अपने वर्ल्ड कप में बहुत दूर जाना चाहता है। वैसे 6 बजे से दूसरा मैच शुरू हुआ है साउथ कोरिया और चेक रिपब्लिक के बीच। सेकेंड हाफ में 1-1 का स्कोर

0: चल रहा था, अभी आपको थोड़ी देर बाद फाइनल रिजल्ट देंगे। आज ग्रुप बी की बारी, होस्ट कंट्री कनाडा वर्सेस बोस्निया हर्जेगोविना, टाइम रात के 11 बजे, किक ऑफ लाइव एमबीसी टीवी पर। ग्रुप बी का दूसरा मैच कतार वर्सेस स्विट्जरलैंड कल रात 11 बजे और ब्राजील की एंट्री होगी संडे सुबह 2 बजे मोरक्को के खिलाफ। ये मैच भी एमबीसी टीवी पर लाइव प्रसारित किया जाएगा। ग्रुप स्टेज के 17 मैच एमबीसी टीवी पर लाइव दिखाए जाएंगे और एमबीसी ऐप डाउनलोड करके ₹300 पर सभी मैच देख पाएंगे। इसके लिए एमबीसी के खास डेस्क पर आप संपर्क कर सकते हैं। फोन के द्वारा भी आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या टीवी पर सभी मैच देख पाएंगे। आप डाउनलोड करने के बाद, पेमेंट के बाद सभी मैच आपके पास। वर्ल्ड कप एक तरफ, ट्रांसफर बाजार में भी कारोबार होने लगे हैं। द स्पेशल वन योजे मोरिनो ऑफिशियली रियल मैड्रिड का मैनेजर बन गया है। 3 साल का कंट्रैक्ट उसको वापस लाने के लिए रियल मैड्रिड को बेनफिका को 13 million pounds देने पर एक कॉम्पेंसेशन के रूप में। 2010 में वो आया था योजे मोरिनो रियल मैड्रिड में, ला लीगा टाइटल, कोपा डेल रे और स्पैनिश सुपर कप जीत पाया। अब उसे वापस लाया गया है रियल मैड्रिड में चैंपियंस लीग ग्लोरी लाने के लिए। सोमाली का रेफरी ओमान आतन, जिसे यूनाइटेड स्टेट्स में एंट्री नहीं मिली जिससे कि वो वर्ल्ड कप में ऑफिशिएट नहीं कर पाएगा, यूईएफए सुपर कप का रेफरी नॉमिनेट किया गया है। ये होगा पेरिस सेंट जर्मेन और एस्टन विला के बीच। यूईएफए ने ये फैसला लिया क्योंकि ओमार आतन बहुत काबिल रेफरी हैं, अफ्रीका का लीडिंग रेफरी हैं। नॉटिंघम फॉरेस्ट का स्टार खिलाड़ी एलियट एंडरसन के लिए मैनचेस्टर सिटी ने इस बार 120 million pounds का ऑफर भेजा है, पर इसे भी रिजेक्ट कर दिया गया, रिजेक्टेड आउटराइट। एंडरसन इंग्लैंड की टीम के साथ वर्ल्ड कप में खेलने गया है, पर सिटी और नॉटिंघम फॉरेस्ट के बीच इंटेंस मालामाल डील हो रही है। 4 साल पहले एंडरसन लीग 2 में था ब्रिस्टल सिटी में, अब इंग्लैंड का सबसे कीमती खिलाड़ी बनने जा रहा है। मैनचेस्टर सिटी के अलावा मैनचेस्टर यूनाइटेड भी एंडरसन पर फिदा है, पर जितने पैसे नॉटिंघम फॉरेस्ट मांग रहा है यूनाइटेड रेस से हटने लगा है। न्यूकासल यूनाइटेड स्पेन के विक्टर मुनोज को साइन करना चाहता है। मुनोज ओसासुना का इंटरनेशनल खिलाड़ी है। मैनचेस्टर यूनाइटेड की नजर न्यूकासल यूनाइटेड के डिफेंडर लेविस हॉल पर है। लेविस हॉल जाना चाहता है और बेर्नार्डो सिल्वा के लिए एल क्लासिको रियल मैड्रिड और बार्सिलोना दोनों उसको साइन करना चाहते हैं। एथलेटिक्स यूएसए का याकोब थोप 110 मीटर हर्डल्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर गया। क्रिकेट में बांग्लादेश के इतिहास ने इतिहास रचा, ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराकर सीरीज जीत ली। अफगानिस्तान ए ने इंडिया ए को हराया और वीमेंस टी20 वर्ल्ड कप आज से शुरू इंग्लैंड में। इनॉग्रल मैच आज इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच। टीम इंडिया का पहला मैच संडे को होगा पाकिस्तान के खिलाफ। सो दैट्स इट द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। फिर मिलेंगे थोड़ी देर बाद 8:30 विद द लेटेस्ट फ्रॉम द वर्ल्ड कप स्पेशल मैगजीन। टिल देन एंजॉय द म्यूजिक एंड एंजॉय द वर्ल्ड कप विद एमबीसी रेडियो, एमबीसी टीवी। बाय बाय।
1: चलिए म्यूजिक जहाँ चल रहा है वहीं पर आपको अपडेट दे दें कि अभी साउथ कोरिया और चेकिया के बीच में जो मैच चल रहा है ग्रुप स्टेज ग्रुप ए में, और ये चल रहा है इन द फेवर ऑफ साउथ कोरिया। साउथ कोरिया लीड करिए 2-1 से 89 मिनट्स, यानी कि अब एडेड टाइम में कुछ हो सकता है। देखते हैं क्या होता है। वी गोना गिव यू अपडेटेड। स्पोर्ट्स है, म्यूजिक है, सब कुछ है यहाँ। ये है संगीत का जहाँ।
2: मेगा प्रोमो को क्वालिटी देखो, टाइल्स 30x30, मेगा डील लो टाइल्स 60x60, सीपे सेल्स लो ग्रानिट क्वार्ट्ज, प्री कासे लो लावो, ला लिनिया मॉडर्न।

नजर है साउथ कोरिया और शेक्या के बीच में मैच, और उसके बीच में अब एट अ टाइम एक्स्ट्रा टाइम खत्म होने वाला है और साउथ कोरिया लीडिंग 2-1। खत्म, साउथ कोरिया की जीत एंड चेकिया वन पे रह गया और साउथ कोरिया 2 से आगे निकल गया। सारे अपडेट्स के लिए और म्यूजिक के लिए जुड़े रहिए साथ में, बस थोड़ी देर में 8 बजे के समाचार। मॉर्निंग बीट कंटिन्यूज़।

सब लोगों के नमस्ते भोजपुरी समाचार में आप लोग के स्वागत बाते फीफा विश्व कप 2026 के आगाज मेक्सिको सिटी में रंगारंग उद्घाटन समारोह संगे होल। इस समारोह में रंग बिरंगा सांस्कृतिक प्रदर्शन नृत्य और विश्व प्रसिद्ध गायिका शकीरा के प्रस्तुति दर्शक लोग के उत्साह बढ़ा दिलाक। हजारन फुटबॉल प्रशंसक ऐतिहासिक आस्तिका स्टेडियम में पहुँचलन जा जहाँ 40 बरिस बाद अपन देश में विश्व कप के वापसी के लिए के जबरदस्त उत्साह देखे के मिला। हालांकि स्टेडियम के बाहर कुछ स्थान पर छिटपुट हिंसक झड़पें भी होल। कट्टरपंथी प्रदर्शनकारी गुस्स समूह आयोजन के बाधित करे के कोशिश करलक जेकर जवाब में सुरक्षा बल करा कार्रवाई करलक। एक बावजूद अधिकांश समय फुटबॉल ही आकर्षण के केंद्र में बनल रहल और मेजबान मेक्सिको अपन अभियान के शानदार शुरुआत करलक। दक्षिण अफ्रीका के 2-0 से हरैलक। मेक्सिको के जीत संगे स्टेडियम में जश्न के माहौल छागल और विश्व कप 2026 के रोमांचक सफर आधिकारिक रूप से शुरू हो गल। मेक्सिको सिटी के एस्टेका स्टेडियम में खेलल गल इ मुकाबला में जूलियन क्विनियोनेस 9वां मिनट में पहला गोल करलक जबकि राहुल जिमनेज 67वां मिनट में दूसर का गोल दगलक। ई ओकर विश्व कप करियर के पहला गोल रहल। दक्षिण अफ्रीका के दुगो लाल कार्ड मिलल जेकर से टीम के मैच में वापसी करे में कठिनाई होल। लगभग 80,000 दर्शक के मौजूदगी में मेक्सिको 3 अंक हासिल करके ग्रुप स्टेज के सफल आगाज करलक। और वी जन हालिया मैच खेलल गलबा अभी दक्षिण कोरिया और चेक रिपब्लिक के बीच उकर में दक्षिण कोरिया 2-1 से चेक रिपब्लिक के मात दिलक उकरा हरा दिलक। नेशनल होलसेल मार्केट के सेवा के विकेंद्रीकरण अब गुडलैंड और फ्लैग तक तय करल जाए। ये परियोजना को पायलट आधार पर शुरू करल जाए। एकर उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखला और परिवहन लागत की घटाई की है जेकर से उपभोक्ता खातिर फल और सब्जी की कीमत भी कमती हो सके। यही संदर्भ में उत्तर और पूर्वी क्षेत्र के किसान और नीलामीकर्ता संगे काल गुडलैंड्स के फार्मर सेंटर सर्विस सेंटर में एगो बैठक लगावल गल। मॉरिशस बॉ काउंसिल अटॉर्नी जनरल दफ्तर में कार्यरत अपने गो सदस्य के प्रति समर्थन व्यक्त कर लेबा। काल जारी करल गल गो प्रेस विज्ञप्ति में जिकर पर एक सचिव यतिन वर्मा के हस्ताक्षर बाते काउंसिल बुल्ला की ओ सोशल मीडिया पर संबंधित वकील के खिलाफ प्रसारित हो रहल टिप्पणी और आरोप के जानकारी लेलक। ओ मानेला कि पेशेवर के 17 मई के कौटोगल में एगो समूह और गांव के निवासी के बीच होल झड़प से अनुचित रूप से जोड़ल गलबा। संस्था बुल्लक कि कोनो भी व्यक्ति के प्रतिष्ठा के अपुष्ट आरोप और अटकल के आधार पर नुकसान नहीं पहुँचाए के चाही। बॉ काउंसिल ई भी दोहरैलक कि प्रत्येक नागरिक के अपन प्रतिष्ठा और गरिमा के सम्मान के मौलिक अधिकार है। काउंसिल बिना सत्यापित जानकारी के आधार पर फैलाए जाए होला आरोप और सार्वजनिक टिप्पणी पर खेद व्यक्त करलक। साथ ही उस जिम्मेदार संतुलित और तथ्य पर आधारित सार्वजनिक संवाद की आवश्यकता पर जोर दिलक। क्यूपिप के गो कॉलेज में कथित बुलिंग और हमला के मामला पर जांच करल जाबा। मामला की सूचना 10 जून के फैमिली प्रोटेक्शन ब्राइगेट की दीवल गल। स्थापित प्रक्रिया के अनुसार फिनिक्स स्थित

0: अपनी सपोर्ट सर्विस स्पिरिट की जिम्मेदारी संभालक। गुरुवार के दोपहर के अपन बयान दर्ज करलक। मामला के फाइल आगे के जांच खातिर संबद्ध पुलिस स्टेशन भेजल गल। एकर अलावा कॉलेज के प्रबंधन और परिवार संरक्षण ब्राइगेट के बीच होल बैठक के बाद एगो जागरूकता कार्यक्रम शुरू करल गल बा, ताकि स्कूल में उत्पीड़न की घटना के रोकल जा सके और विद्यार्थी की सुरक्षा के और भी मजबूत करल जा सके। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की दिशा में यूनिवर्सिटी मॉरिशस एगो और महत्वपूर्ण कदम उठावत बा। मंत्रिपरिषद यूनिवर्सिटी मॉरिशस और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के बीच एगो MOU पर हस्ताक्षर करे के मंजूरी दे दिले बा। इस साझेदारी इंडस्ट्री एक्सचेंज नेटवर्क कार्यक्रम के अंतर्गत करल जा बा और एकर उद्देश्य AI तथा कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार के बढ़ावा देवे की है। उच्च शिक्षा मंत्री कविराज सुको बुल्लन की इस सहयोग के तहत एगो खास अनुसंधान केंद्र स्थापित करे के भी योजना बाती। दूसरे देश के समाचार में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा कर ले हुवन कि ईरान संगे युद्ध समाप्त करे खातिर एगो प्रारंभिक समझौता करी बाती। उबुल्लन की बातचीत में प्रगति होला के कारण वो ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमला रद्द कर दिले हुवन। हालांकि ईरान ट्रंप के इस दावा के पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर ले बाते। ईरानी अधिकारी बोले हुवन जा कि बातचीत अभी भी जारी बा और अभी तक कोनो अंतिम समझौता नहीं होल बाते। कुछ अहम मुद्दा पर बातचीत बाकी बा और कोनो भी समझौता के औपचारिक मंजूरी मिले के अभी शेष बाते। और उत्तर भारत में काल अचानक मौसम करवत लेलक। उत्तर प्रदेश और बिहार में तेज आंधी और वज्रपात से 16 जना के मौत हो गल बाती। एक संगे भोजपुरी समाचार समाप्त भल। आप लोग के ध्यान खातिर बहुत ही धन्यवाद।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: A good beat for your morning show. Come on. RM2.
1: Radio Musti. गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और वेलकम है आप सभी के अंदर सेकंड आवर. यस, ये मॉर्निंग का शो, फ्राइडे का शो और ये मॉर्निंग बीट. अगर आप इस वक्त रोड पर हैं तो हम जानते हैं कि ट्रैफिक अपने पीक पर है. कार्स की लंबी लाइन, सिग्नल्स का इंतजार और ऑफिस पहुंचने की रेस, करें तो क्या करें. हाँ, लेकिन टेंशन बिल्कुल मत लीजिए क्योंकि हम हैं ना आपके साथ बॉलीवुड के बेस्ट गाने लेकर मस्त वाइब्स, ताकि आपका सफर विदाउट एनी सफरिंग चलता रहे. फ्राइडे का मूड ऑलरेडी सेट है, वीकेंड बस कुछ ही घंटों की दूरी पर है, तो स्माइल कीजिए, रिलैक्स कीजिए और एंजॉय कीजिए अपने फेवरेट बॉलीवुड गाने. चलिए जहाँ पर कुछ बात करेंगे मूवी रिलीजेस की, क्योंकि आज फ्राइडे है तो बड़े पर्दे पर बड़ी बड़ी पिक्चर आने वाली, बड़े प्रोडक्शन हाउसेस की तरफ से वो सब होगा. लेकिन अगले पल जानने वाले हैं कि वेदर की अपडेट क्या होने वाली, यानी कि धूप कितनी खिली होगी, भाई हवा का मूड कैसा होगा और अम्ब्रेला की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी. चलिए जान लेते हैं मौसम का हाल.
0: इट्स द वेदर ब्रॉडकास्ट विद विनर्स.
2: ओनली टू विनर्स.
3: हमारे इलाके पर हल्की हवा पाई जा रही है. पूर्व की ओर से आने वाले बादल हमारे मौसम को प्रभावित करेंगे. अनुमान है कि आज तड़के मौसम सुहाना रहेगा, इसके बाद बादल घिराएंगे पूर्व और सेंट्रल प्लाटू पर, जहां तहां बारिश हो सकती है. दोपहर में कुछ घरी के लिए दक्षिण पश्चिम, दक्षिण एवं सेंट्रल प्लाटू पर बादल घिराएंगे और रह रहकर बारिश हो सकती है. अन्य इलाकों में हल्के बादल छाए रहेंगे. रात के दौरान मौसम सुहाना रहेगा, लेकिन देर रात को पूर्व, उत्तर और सेंट्रल प्लाटू पर बादल घिराएंगे और बारिश हो सकती है. तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम 17 से 19, अधिकतम 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच. साहली इलाकों में न्यूनतम तापमान 21 से 23, अधिकतम 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. उत्तर पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हल्की और अस्थिर हवा चलेगी. प्रवाल रेखा से परे समंदर चंचल रहेगा, लहरें 2 मीटर तक हो सकती हैं. आज के लिए सूर्योदय 6:41 पर, सूर्यास्त होगा 5:37 पर.
0: Your weather forecast on RM2.
1: Radio Musti.
4: C'est le moment que tout le monde attendait. La fièvre du foot débarque chez Winners avec des offres à ne pas manquer. Profitez d'offres exceptionnelles sur vos produits préférés et retrouvez tous vos indispensables pour vivre le match à petit prix chez Winners. Toute la gamme de chips Bretz sauf truffle à 97,95 € et le paquet de 400 grammes de hot chocolate Farmland à 179,95 €. Le coup d'envoi est lancé. Rendez-vous dès maintenant dans votre magasin Winners pour profiter des offres et animations du moment.
5: On est tous Winners!
0: RM2
1: Radio Mus

0: RM2 Radio Musti.
1: Avant le défi, de longs shifts. Commence par une bonne décision. Nescafé.
2: जिंदगी में हर दिन एक नया चैप्टर होता है. कल की गलतियों का बोझ अपने सर पर मत रखिए, सीखिए और आगे बढ़ते जाइए. अरे जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन जो आने वाला है उसे बेहतर जरूर बना सकते हैं. रास्ते में मुश्किलें आएंगी, लेकिन ये मुश्किलें आपको और मजबूत बनाएंगी. बस ये सोच और ये अप्रोच लेकर चलते रहो और अपनी तुलना किसी और से नहीं बल्कि कल से अपने आप से कीजिए. छोटे छोटे प्रयास, कुछ मेहनत, परिश्रम बड़े बदलाव की शुरुआत होती है. हर सुबह अपने से वादा कीजिए कि आज शिकायत कम और कोशिश ज्यादा करेंगे. पॉजिटिव सोच सबसे बड़ी ताकत है, तो मुस्कुराते रहिए क्योंकि मुस्कान कई समस्याओं का सबसे आसान समाधान होता है.
1: Avant le défi, de longs shifts. Commence par une bonne décision. Nescafé.
0: RM2 Radio Musti.

0: अच्छा सर, की ट्रैफिक सिचुएशन है कि काफ़ी हैवी ट्रैफिक है, बहुत सारी गाड़ियां हैं, लेकिन कोई एक्सीडेंट की रिपोर्ट नहीं है। ट्रैफिक ब्रांच से बात हो गई, मुलाकात हो गई आपसे भी। 28 past 8 in the morning, थोड़ी देर में होगा वर्ल्ड कप स्पेशल मैगजीन।
1: You're listening to Radio Masti.

0: Get ready for the biggest World Cup ever!
1: 2026 FIFA World Cup.
0: पहली बार होगी 48 टीम्स, 104 मैचेस। रेडियो मस्ती की टीम के साथ
1: चलिए
0: यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मेक्सिको।
1: रेडियो मस्ती के साथ
0: वर्ल्ड कप मैगजीन,
2: स्पेशल वर्ल्ड कप मैगजीन, वर्ल्ड कप स्पेशल। बेनवेनिडा अ मेक्सिको, मेक्सिको की टीम के लिए परफेक्ट स्टार्ट, 2-0 की जीत। इस वर्ल्ड कप का पहला गोल स्कोर किया मेक्सिको के खिलाड़ी जुलियन क्विनोनेस ने। पहला रेड कार्ड साउथ अफ्रीका के याया सितोले को दिया गया। रेफरीज टफ हो रहे हैं, पहले ही मैच में 3 रेड कार्ड, जबकि कतर 2022 में पूरे टूर्नामेंट में केवल 4 रेड कार्ड निकाले गए थे। साउथ कोरिया की ओर से जबरदस्त कमबैक, सब कुछ सेकंड हाफ में हुआ। चेक रिपब्लिक का गोल क्रेस्की का रहा, फिर साउथ कोरिया के लिए वन इन बियोम और ओ क्योन ग्यू एक एक गोल स्कोर कर पाए। साउथ कोरिया की जीत, नाम पर नहीं जा कोरिया नहीं, मेहनती है कोरियन खिलाड़ी। आज कनाडा की टीम की एंट्री होगी बोस्निया हर्जेगोविना के खिलाफ, टोरंटो में मैच खेला जाएगा आज रात 11 बजे मॉरिशन टाइम। कनाडा की टीम के लिए वर्ल्ड कप हिस्ट्री में बहुत खास नहीं है, अभी तक ग्रुप स्टेज से आगे नहीं जा पाई है ये टीम। ले रूज द रेड्स इस बार अपने वर्ल्ड कप में बहुत आगे जाना चाहते हैं। पहला मिशन होगा ग्रुप स्टेज पार करना। स्क्वाड में यूरोप के बड़े बड़े बड़े क्लबों के खिलाड़ी हैं। कप्तान अल्फोंसो डेविस टीम का बेस्ट खिलाड़ी है, पर वो नहीं खेलेगा। कनाडा का पहला वर्ल्ड कप गोल उसी ने स्कोर किया था कतर 2022 में। रेफ्यूजी कैंप से कनाडा का कप्तान बना, बायर्न म्यूनिख में पहला यूएस खिलाड़ी बना यूरोपियन चैंपियंस लीग में खेलने वाला। 15 इंटरनेशनल गोल, पर आज के मैच में वो नहीं खेल पाएगा। टीम में जोनाथन डेविड भी है, कनाडा का ऑल टाइम गोल स्कोरर, यूवेंटुस का खिलाड़ी। ताजन बुकानन भी है। अल्फोंसो डेविस के स्थान पर स्टीफन उस्तकायो कप्तान होगा। यूवेंटुस का स्ट्राइकर जोनाथन डेविड भी होगा। बोस्निया एंड हर्जेगोविना द ड्रैगन्स वेल्स और इटली को हराकर क्वालिफाई हुए। उनका कॉम्पैक्ट डिफेंसिव 4-2-3-1 स्ट्रक्चर है। अप फ्रंट 40 साल का एडिन जेको अपनी वेटरन लीडरशिप के साथ। प्रेडिक्शंस कनाडा की ओर जा रहे हैं, जो 40,000 फैंस के सपोर्ट के साथ खेलेगा। सो आज रात 11 बजे होगा मैच कनाडा और बोस्निया एंड हर्जेगोविना के बीच। और अंत में समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। वैसे फुटबॉल शूज ब्लैक और व्हाइट हुआ करते थे, अब कुछ रंग बदलने लगे हैं। इस वर्ल्ड कप में पिंक कलर फुटबॉल शूज का फैशन है। रीजन ये है कि टॉप सेलिंग ग्लोबल ब्रांड नाइक, एडिडास और पुमा सब ने सिमिलर स्टाइल बूट्स प्रोड्यूस किए हैं। सो मेक्सिको साउथ अफ्रीका वाले मैच में पिंक फुटबॉल शूज अधिक रहे। चलिए आप भी पिंक शूज पहनिए फुटबॉल खेलने के लिए। और अगर आपके मेल कोलीग्स पिंक जूतों के साथ आज काम पे आते हैं तो नो जोक, वर्ल्ड कप है, फैशन है, चलता है। सो दैट वाज द लेटेस्ट फ्रॉम द वर्ल्ड कप।

तभी सोचूंगी वेदा पिंक शूज में क्यों घूम रही है। चलने दीजिए, रैलिस जेंटलमैन वर्ल्ड कप मैगजीन सारी अपडेट्स लेकर हमारे साथ शामिल हो जाएगी। और साथ में ग्रुप है मेक्सिको सिटिंग ऑन द टॉप, और उसके बाद साउथ कोरिया जिसकी जीत हुई 2-1 से।

जैसे सुनवाया कि हैवी ट्रैफिक, गाड़ियां काफी है लेकिन कोई एक्सीडेंट इंसिडेंट की रिपोर्ट नहीं है। इवन सिटी सेंटर्स की तरफ, कैथबोन की तरफ, क्यूपीएफ की तरफ, अच्छा कैथबोन की तरफ बसेस, उसके पीछे लंबी लाइन, थोड़ा सा पेशेंस, काम। अरे सीट पर बैठे बैठे थोड़ा सा डांस, थोड़ी सी मूवमेंट।

जय, मैं भी डांस करना चाहता हूँ, रोमांस करना चाहता हूँ। हाँ, लेकिन मौका नहीं मिलता ना, कभी कभी मौका मिलता है जब ट्रैफिक में फंसे और यही सिचुएशन हो रही है। ट्रियानो, वैसे बहुत सारे लोग हैं जो शॉर्टकट लेकर लॉन्ग कट में फंस गए, मतलब कि फंस गए हैं, और वहीं पर निर्मली फंसी हुई है। उसने कहा कि बहुत सारी गाड़ियाँ आगे, क्या करें। ओ ओ

0: टू प्रीति जो आजकल काफी जापानीज लैंग्वेज हो या खाना पीना उसमें बहुत इंटरेस्ट दिखा रही हैं। हाँ लेकिन हिंदी बोलो इंग्लिश तो बात समझ में आए। ब्लॉक एंड ये कॉकटेल टूज़े
1: पंजाबी
0: है।

भाई बॉलीवुड मूवीज तो इसी पे चलती है, यानी गाने वाने कमाल हो जाएं और हिट हो जाएं तो पहले से ही मूवी की पब्लिसिटी हो जाती है। ये अंग्रेजी पिक्चरों के अंदर गाने वाने नहीं होते ना हमारे जैसे, वो पेड़ के पीछे आगे पीछे नाचना, ड्रीम सिक्वेंसेज, हाँ ये तो लोचा है।

0: Good Beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti. ये सच बात है कि हमारे बड़े बड़े स्टार्स क्या डांस वांस के लिए जाने जाते हैं, और अगर ये गाने नहीं होते तो उनकी अदाएं भी सामने नहीं आती. नहीं डांस करना रे, नहीं वे तुम्हारे का हर बार डांस निकल ही जाता है. अच्छा अभी आपको बताएं कि टेक्नोलॉजी की दुनिया बहुत ही कमाल की चल रही है. अगर बात करें तो इसमें रेस चल रही है बड़े बड़े टेक जायंट्स की, और वहीं पर एक इवेंट के अंदर 2026 की बात कर रहे हैं, सीरी AI यानी कि एक स्मार्टर और ज्यादा कॉन्वर्सेशनल डिजिटल असिस्टेंट जो आपके स्क्रीन कॉन्टेंट, फोटोज और मैसेजेस को समझ कर और इंटेलिजेंट रिस्पॉन्सेज दे सकता है. और वहीं पर गूगल भी इस रेस में आगे ही आगे है. रिपोर्ट्स के माने तो गूगल अपनी नेक्स्ट जनरेशन AI चिप पर काम कर रहा है और सैमसंग के साथ मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप की बातचीत. तो आने वाले टाइम में आपका फोन खाली रिंगटोन नहीं देगा, सब बता देगा आपकी हाल कैसे हैं, आप खाना क्या चाहते हैं, आप मूड, आपका फील कैसा है, सब कुछ. और इसी हिसाब से आपको बहुत सारे सजेशंस आने वाले टाइम में जाने क्या क्या. अनदर स्नीक पीक इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी.
0: A good beat for your morning show. Morning Beat, RM2
1: Radio Musti. नमस्कार देवी सजनो. ये जो दुनिया है ना, ये गोल गोल है.

0: अभी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, लेकिन ये पप्पू वाले साहब क्या करें इसका, हमेशा कोई ना कोई चक्कर। मैं तो सोचता हूँ कि सबको होने लगी इसकी फिक्र।
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: भाई साहब क्या करें, वो अपनी बीवी के साथ खटपट चलती रहती है पप्पू की। और अब हुआ है कि पप्पू को काफ़ी डांट सुनने को मिली और फाइनली उसने कहा कि मनाने के लिए घर का काम शुरू कर देता हूँ। तो बीवी ने बोला ऐसा कि देखो अब उठ गए हैं, अब ये जो घर की साफ सफाई ठीक है, लेकिन पहले बिस्तर बना लो, बेड बना लो सही तरह। उसने कहा हाँ ठीक है ठीक है। अब पप्पू का क्या है, भूल गया। बीवी वापस लौट कर आई, हाँ तुमने अभी तक बेड नहीं किया, सही तरह बनाया नहीं। पप्पू ने कहा नहीं ऐसा है कि बना लिया, लेकिन जो कपड़े तुम देख रहे हो ना इधर उधर पड़े हैं, वो तो मैंने इसलिए रखे कि मैं वो बिफोर एंड आफ्टर वाली फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकूं।

थोड़ी देर में आने वाली नर्मनी आपको साथ देने के लिए अंदाज कर मोस्ट मॉर्निंग शो फ्राइडे का दिन थैंक गॉड इट्स फ्राइडे ये इज अ फ्राइडे और बात करें कुछ और मूवी रिलीजेस की बहुत सारी मूवीज डिटेल्स थोड़ी देर में लेट्स कंटिन्यू विद द मस्ती

0: आइए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार करुणा जी के साथ। नमस्कार करुणा।
1: नमस्कार वेदिता, सभी को नमस्कार। फीफा विश्व कप 2026 का आगाज मैक्सिको सिटी में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हुआ। इस समारोह में रंग बिरंगे सांस्कृतिक प्रदर्शन, नृत्य और विश्व प्रसिद्ध गायिका शकीरा की प्रस्तुति ने दर्शकों का उत्साह बढ़ा दिया। हजारों फुटबॉल प्रशंसक ऐतिहासिक एस्टेका स्टेडियम में पहुंचे, जहां 40 वर्षों बाद अपने देश में विश्व कप की वापसी को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। हालांकि स्टेडियम के बाहर कुछ स्थानों पर छिटपुट हिंसक झड़पें भी हुई। कट्टरपंथी प्रदर्शनकारियों ने एक समूह ने आयोजन को बाधित करने की कोशिश की, जिसके जवाब में सुरक्षा बलों ने कड़ी कार्रवाई की। इसके बावजूद अधिकांश समय फुटबॉल ही आकर्षण के केंद्र में बना रहा। मेजबान मेक्सिको ने अपने अभियान की शानदार शुरुआत करते हुए दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। मेक्सिको की जीत के साथ स्टेडियम में जश्न का माहौल छा गया और विश्व कप 2026 का रोमांचक सफर आधिकारिक रूप से शुरू हो गया। मेक्सिको सिटी के एस्टेका स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में जूलियन क्विन्योनेस ने 9वें मिनट में पहला गोल किया, जबकि रावल जिमनेज 67वें मिनट में दूसरा गोल किया। उन्होंने ये उनके विश्व कप करियर का पहला गोल रहा। लगभग 80,000 दर्शकों की मौजूदगी में मेक्सिको ने 3 अंक हासिल कर ग्रुप स्टेज का सफल आगाज किया। फीफा विश्व कप 2026 के तहत दक्षिण कोरिया ने चेक गणराज्य को 2-1 से हराकर शानदार शुरुआत की। चेक गणराज्य ने पहले बढ़त बनाई, लेकिन दक्षिण कोरिया ने दूसरे हाफ में जोरदार वापसी करते हुए 2 गोल डाककर मैच अपने नाम कर लिया। इससे जीत के साथ दक्षिण कोरिया ने ग्रुप स्टेज में महत्वपूर्ण 3 अंक हासिल किए। और आपको बताते चले कि आज रात ग्रुप बी के तहत कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना के बीच मुकाबला होगा, जिसका सीधा प्रसारण आप हमारे स्पोर्ट्स चैनल MBC11 पर देख पाएंगे। खबरों में आगे, नेशनल होलसेल मार्केट की सेवाओं का विकेंद्रीकरण अब गुडलैंड्स और फ्लैग तक किया जाएगा। इस परियोजना को एक पायलट आधार पर चलाया जाएगा, जिसका उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखला और परिवहन लागत को घटाना है, जिससे कि उपभोक्ताओं के लिए फलों और सब्जियों की कीमतें भी कम हो सके। और रुख करते हैं विदेशी खबरों की ओर। उत्तर भारत में गुरुवार को अचानक मौसम ने करवट ली। उत्तर प्रदेश और बिहार में तेज आंधी तथा वज्रपात से 16 लोगों की मौत हो गई। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ युद्ध समाप्त होने के लिए एक प्रारंभिक समझौता करीब है। उन्होंने कहा कि बातचीत में प्रगति होने के कारण उन्होंने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमले रद्द कर दिए हैं। वहीं ईरान ने ट्रंप के इस दावे को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया और कहा कि अभी बातचीत जारी है, किसी समझौते को औपचारिक मंजूरी मिलना अभी शेष है। तो इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
3: You're listening to Musty Mornings.
4: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है।
3: Stay tuned, stay musty.
5: Musty Morning Show.
3: Radio.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
0: Good morning, and yes, the musty continues in this hour as well, and it will go on a din bhar. वैसे आज आसमान ने लगता है फैशन शो लगा दिया है. क्लाउड्स ने पूरे स्काई पर अपना रूप जमा लिया है. कहीं कॉटन कैंडी जैसे फ्लफी क्लाउड्स, कहीं बड़े बड़े ग्रे क्लाउड्स और कहीं ऐसे पैटर्न्स हैं जैसे किसी आर्टिस्ट ने ब्रश पेंट कर दिया हो. कभी सोचा है हर क्लाउड की अपनी प्लस पर्सनैलिटी होती है, बस नज़र उठा कर देखना चाहिए. एंड आज तो ऊपर से नेचा का फ्री एंटरटेनमेंट देखने को मिल रहा है. अगर आप ऑफिस से जा रहे हैं अभी या फिर घर पर हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो एक मिनट निकाल कर स्काई को देखिएगा ज़रूर. शायद किसी क्लाउड में आपको दिल नज़र आए, या किसी में बनी रैबिट या फिर कोई फिल्मी हीरो. तो फिर से वापस ले चलते हैं आपको बॉलीवुड म्यूज़िक में रुवाने के लिए. आप बस आगे का रास्ता संभालो. अगर आप ड्राइव कर रहे हो, द रेस्ट हम पर छोड़ दीजिए.
2: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: सजनों बिना आए नहीं बल्कि रेडियो बिना आए ना मजा, क्योंकि आप मिस करोगे इफ यू नॉट कनेक्टेड. इट्स यू और आरएमजू रेडियो मस्ती. एंड लेट मी टेल यू लेटेस्ट बॉलीवुड अपडेट्स, अच्छे मजेदार गाने ओनली वन स्टॉप स्टेशन पर. एंड अच्छा, लेटेस्ट गर्मा गर्म अपडेट्स की बात करें तो आलिया भट्ट की अपकमिंग एक्शन फिल्म आल्फा का टीजर रिलीज हो चुका है और फैंस के साथ साथ लेट मी टेल यू बॉलीवुड स्टार्स भी काफी एक्साइटेड है, इंक्लूडिंग कैटरीना कैफ, प्रियंका चोपड़ा और विक्की कौशल. इन तीनों ने आलिया भट्ट की एक्शन अवतार की जमकर तारीफ की है. क्या बात, वाह वाह ही करना, तो उनसे सीखें जो अपने को स्टार्स को सपोर्ट करती हैं. एंड ऐसे ही वी कीप दैट वाइब ऑन गोइंग, क्योंकि ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे. अगर आपके यहाँ भी कोई अच्छा कर रहा है काम में तो थोड़ा सा पुश आपकी तरफ से भी, इट कैन मीन अ लॉट यू नो, सो ट्राई टू बी काइंड. एंड ऐसे ही इस फ्राइडे को बनाते हैं फ्राइडे, जैसे कि विकास ने बोला. सो लेट्स डाइव राइट बैक विद अनदर ट्रैक जो काफ़ी बज क्रिएट कर रहा है.
0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.

0: listening to Masti Mornings.
1: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है.
0: Stay tuned, stay musty.
2: Masti Morning Show.
0: Radio.

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: यस दोस्तों, अभी वक्त हो चला है जाने के लिए कि आज के सितारे आपके लिए कौन सा मैसेज लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का राशिफल, जहां हम बताने वाले हैं आपका लकी कलर, लकी नंबर और आज का मूड मीटर। तो शुरुआत करते हैं वेदर।
2: एरीज मेष राशि,
1: आज आप फुल एनर्जी मोड में रहेंगे। जो काम काफी दिनों से पेंडिंग था उसे निपटाने का आज परफेक्ट टाइम है। लकी कलर आज आपका है रेड और नंबर है 9।
2: टॉरस वृषभ राशि,
1: आज कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, छोटी सी अपॉर्चुनिटी आपके दिन को स्पेशल बना सकती है। लकी कलर है ग्रीन और नंबर है 6।
2: जेमिनी मिथुन राशि,
1: कम्युनिकेशन आज आपका सुपर पावर है। जो बात दिल में है उसे आप कॉन्फिडेंटली कह दीजिए। लकी कलर आपका है येलो और नंबर है 5।
2: कैंसर कर्क राशि,
1: फैमिली और दोस्तों के साथ वक्त बिताने से मूड फ्रेशी फ्रेश हो जाएगा, इमोशनल बैलेंस भी बना रहेगा। लकी कलर आज आपका है व्हाइट और नंबर है 2।
2: लियो सिंह राशि,
1: आज स्पॉटलाइट आप पर ही हो सकती है, बस कॉन्फिडेंस को एटीट्यूड में कन्वर्ट मत होने दीजिएगा। लकी कलर आपका है गोल्डन और नंबर है 1।
2: वर्गो कन्या राशि,
1: प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन से आज आप सबको इम्प्रेस कर सकते हैं। छोटी छोटी डिटेल्स पर आपको ध्यान रखना है। लकी कलर आपका है नेवी ब्लू और नंबर है 7।
2: लिब्रा तुला राशि,
1: बैलेंस ही आज आपकी चाबी है। काम और रिलैक्सेशन दोनों को इक्वल महत्व दीजिए। लकी कलर आपका है पिंक और नंबर है 8।
2: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,
1: आज आपकी इंट्यूशन पहले से ज्यादा काफी स्ट्रांग रहेगी। दिल की आवाज को इग्नोर मत कीजिएगा। लकी कलर आपका है मरून और नंबर है 4।
2: सजिटेरियस धनु राशि,
1: एडवेंचर, नई चीजें सीखने का मूड बन सकता है। आज कुछ नया ट्राई कीजिए। लकी कलर आपका है पर्पल और नंबर है 3।
2: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
1: हार्ड वर्क के रिजल्ट्स मिलने के चांसेस बहुत है। पेशेंस रखना, मेहनत रंग लाने वाली है। लकी कलर आपका है ब्राउन और नंबर है 10।
2: एक्वेरियस कुंभ राशि,
1: क्रिएटिव आइडियाज आज दिमाग में बारिश की तरह आएंगे, उन्हें नोट करना मत भूलिएगा। लकी कलर है स्काई ब्लू और नंबर है आपका 11।
2: पाइसेस मीन राशि,
1: आज पॉजिटिविटी आपके आसपास रहने वाली है। किसी की मदद करके दिल को सुकून मिल सकता है। लकी कलर आपका है समुद्री हरा और नंबर आपका है 12।
0: योर डेली हॉरोस्कोप RM2 रेडियो मस्ती।

आइए जानते हैं एमबीसी प्ले पर न्यू वर्ल्ड स्पोर्ट्स पैक में सब्सक्राइब करने का तरीका। स्टेप वन, सब्सक्राइबर को पहले एमबीसी प्ले ऐप खोलना होगा और जाना होगा टीवी सेक्शन में। अब जब किसी भी न्यू वर्ल्ड चैनल पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा टू अ सिक्योर मिप्स पेमेंट पोर्टल। स्टेप टू, अब आपके सामने होंगी दो पेमेंट ऑप्शंस। एक तरीका मोबाइल बैंकिंग एप्स के जरिए पेमेंट करने का, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। सो आपको सिलेक्ट करना होगा अपना प्रेफर्ड मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। अब इन पेमेंट एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर आपको एंटर करना होगा। ऐसा करने के बाद उस बैंकिंग एप्लीकेशन के द्वारा एक सिक्योर पुश नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पर दिखेगी। यूजर को उस नोटिफिकेशन को खोलना है, ट्रांजैक्शन और उसकी डिटेल्स को रिव्यू करना है और सिलेक्ट करना है एक्सेप्ट एंड पे। और वहीं पर अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का ऑप्शन चुनते हैं तो पहले मांगी हुई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स आपको भरनी होंगी और उसके बाद आपके बैंक के द्वारा आपको मिलेगा एक सिक्योर्ड वन टाइम पासवर्ड, यानी कि ओटीपी एसएमएस या ईमेल द्वारा। ये ओटीपी आपको अपने स्क्रीन पर एंटर करना होगा टू ऑथराइज द ट्रांजैक्शन। तीसरा और अंतिम स्टेप, एक बार यूजर ने पेमेंट को ऑथराइज कर दिया अपने बैंकिंग ऐप या ओटीपी के द्वारा तो उनको अपना स्क्रीन नहीं बंद करना।

0: बल्कि इंतजार करना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है पूरी तरह कंप्लीट हो जाए ऑन द एमबीसी प्ले एप्लीकेशन। अब बस सक्सेसफुल पेमेंट कंफर्मेशन होते ही सिस्टम ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर देगा एमबीसी प्ले होम पेज पर और अनलॉक कर देगा इमीडिएट एक्सेस टू द प्रीमियम स्पोर्ट्स स्ट्रीम्स। ज्यादा जानकारी या मदद के लिए सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच में फोन कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन सपोर्ट को 433-3135 या 433-2871 या 433-3145 या 433-2905 या 5251-6363 या फिर ऑन 5944-6800।
1: Welcome to RM2
2: Musty Mornings Radio Musty.

0: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।
1: दोस्तों, एक तरफ जेन जी रील्स बना रही है और दूसरी तरफ 90s के फैंस अभी भी टम्मा टम्मा पर ग्रूव कर रहे हैं। शायद इसलिए कहते हैं कि अच्छे अच्छे गाने कभी रिटायर नहीं होते हैं, बस कमबैक करते रहते हैं। एंड वैसे बैक टू मेमोरी लेन, 1990 में जब टम्मा टम्मा गाना ने डांस फ्लोर्स हिला दिए थे, तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि ये गाना इतने सालों बाद भी लोगों को नचाएगा। और अब धुरंधर द रिवेंज में इस आइकॉनिक ट्रैक को फिर से एक नई अंदाज में पेश किया गया है। एंड फिल्म में ये गाना एक इम्पोर्टेंट सीक्वेंस में यूज हुआ है और फैंस नॉस्टैल्जिया से भर गए हैं। कहते हैं ट्रेंड्स आते जाते रहते हैं, लेकिन कुछ गाने एवरग्रीन होते हैं और टम्मा टम्मा उनमें से ही एक है। तभी के लिए वापस इस जमाने फिर से एंट्री मारते हैं एक नए गाने के साथ, चांद मेरा दिल मूवी से लिया गया स्पेशली फॉर यू आपके इस फ्राइडे को फन डे बनाने के लिए।
2: RM2 रेडियो मस्ती।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: स्वीटहार्ट बोले चांद मेरा दिल, क्या मस्त रोमांटिक गाने लेकर आ रहे हैं हमारे बॉलीवुड सिंगर्स। पहला आवर खत्म होने को है लेकिन गाने फायरी ही लाते रहेंगे टू मेक अप दिस फ्राइडे मूड ऑफ योर्स द बेस्ट। तो मिलते हैं जल्द ही संक्षिप्त समाचार के बाद। अभी के लिए वी एंजॉय द गुड म्यूजिक दैट्स हैपनिंग ऑन आर एम टू रेडियो मस्ती।
0: Listening to

0: welcome to Radio Musti.
1: The time is brought to you by McDonald's.
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee. Share the taste. Share happiness.
0: Radio Musti.
3: North. South.
0: 103.5.
3: East. West.
0: 96.4.
3: Center.
0: 99.4.
4: RM2, Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Good morning, सुबह के 10 बजे है. चलिए अभी के लिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार. आपसे करुणा जी नमस्कार.
6: नमस्कार नीलमणि, सभी को नमस्कार. फीफा विश्व कप 2026 का आगाज मेक्सिको सिटी में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हुआ. इसके लिए हजारों फुटबॉल प्रेमी ऐतिहासिक एस्टेका स्टेडियम पहुंचे.

0: हालांकि स्टेडियम के बाहर कुछ स्थानों पर छिटपुट हिंसक झड़पें भी हुई, इसके बावजूद अधिकांश समय फुटबॉल ही आकर्षण का केंद्र में बना रहा। मेजबान मेक्सिको ने अपने अभियान की शानदार शुरुआत करते हुए दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। मेक्सिको की जीत के साथ स्टेडियम में जश्न का माहौल छा गया और विश्व कप 2026 का रोमांचक सफर आधिकारिक रूप से शुरू हुआ। लगभग 80,000 दर्शकों की मौजूदगी में मेक्सिको ने 3 अंक हासिल कर ग्रुप स्टेज का सफल आगाज किया। फीफा विश्व कप 2026 में दक्षिण कोरिया ने चेक गणराज्य को 2-1 से हराकर आज सुबह शानदार शुरुआत की। चेक गणराज्य ने पहले बढ़त बनाई, लेकिन दक्षिण कोरिया ने दूसरे हाफ में जोरदार वापसी करते हुए 2 गोल दागकर मैच अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ दक्षिण कोरिया ने ग्रुप चरण में महत्वपूर्ण 3 अंक हासिल किए। और आज रात ग्रुप बी के तहत कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना के बीच मुकाबला होगा, लेकिन इससे पहले कनाडा के टोरंटो स्टेडियम में उद्घाटन समारोह होगा। इसका सीधा प्रसारण याद रहे कि MBC 11 में किया जाएगा। इसी से पहले हमारे स्पोर्ट्स डेस्क द्वारा एक खास कार्यक्रम पेश किया जाएगा। अन्य खबरों में, क्यूपिप के कॉलेज में कथित बुलिंग और हमले के मामले पर जांच की जा रही है। मामले की सूचना फैमिली प्रोटेक्शन ब्रिगेड को दी गई है। मामले की फाइल आगे की जांच के लिए संबद्ध पुलिस स्टेशन भेज दी गई है। इसके अलावा कॉलेज के प्रबंधन और परिवार संरक्षण ब्रिगेड के बीच हुई बैठक के बाद एक जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया गया ताकि स्कूलों में उत्पीड़न की घटनाओं को रोका जा सके और विद्यार्थियों की सुरक्षा को और भी मजबूत किया जा सके। और विदेश में, उत्तर भारत में गुरुवार को अचानक मौसम ने करवट ली। उत्तर प्रदेश और बिहार में तेज आंधी और वज्रपात से 16 लोगों की मौत हो गई। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद, नमस्कार।
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
0: And yes, so we are back दूसरे आवर में आपकी मस्ती मॉर्निंग शो में विद नमनी 12 बजे तक आपके लिए लेटेस्ट न्यूज टिप्स ऑन गोइंग रहेंगे. आप बस कदम से कदम मिलाते रहिए और RM2 रेडियो मस्ती से कनेक्टेड रहिए.
1: RM2 रेडियो मस्ती.

0: Fashion tips powered by Halkori Fashion, house of ready-made garments.
1: हैप्पी फ्राइडे मेरे फैशन लवर्स, आज का टिप है ड्रेस फॉर यू मूड, लेकिन एक्सेसराइज कीजिए अपने कॉन्फिडेंस के लिए। कभी कभी एक सिंपल आउटफिट भी स्टाइलिश लग सकता है अगर उसके साथ एक नाइस वॉच, क्लासी इयररिंग्स, एक कूल पेयर ऑफ सनग्लासेस या फिर स्टेटमेंट बैग हो। और क्योंकि आज फ्राइडे है, थोड़ा सा कलर ऐड करने से मत डरिए। आज स्काई ब्लू, कॉरल, मस्टर्ड या फिर पेस्टल शेड्स आपके लुक को फ्रेश और वीकेंड रेडी बना सकता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ट्रेंड फॉलो करना अच्छा है, लेकिन अपना स्टाइल क्रिएट करना और भी अच्छा होता है। फैशन तभी बेस्ट लगता है जब आप उसमें कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट हो। तो आज मिरर में, शीशे में देखिए जरूर और खुद से कहिए कि आई एम नॉट ओवरली ड्रेस्ड, आई एम जस्ट वेल प्रिपेयर्ड।
0: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय हल्क।

0: Welcome to RM2.
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।
2: फोन की स्क्रीन पर नोटिफिकेशंस आ रहे हैं नॉनस्टॉप और उसमें कुछ खास मैसेजेस आपके भेजे हुए, तो चलिए पढ़ते हैं आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस हुए।

0: हैव यश लंदन से एंजॉय कर रहे हैं शो को, डेडिकेट करना चाहते हैं लवली सॉन्ग अपनी फैमिली और दोस्त के लिए। ऑल्सो हैव हमारे बड़ी यलिश जो कनेक्टेड है सुरीनाम से, एंड सुया जी भी कनेक्टेड है न्यू होव से। थैंक यू कनेक्टेड रहने के लिए, सो कीप देम मैसेजेस कमिंग ऑन। शायद अगले नाम जो पढ़ने वाले हैं वो आपका हो, तब तक एंजॉय कीजिए जबरदस्त गाने आपके आरएमजू रेडियो मस्ती पर।
1: नीले नीले अंबर पर चांद जब आए प्यार बरसा।
2: पुराने गाने सिर्फ सुर और अल्फाज नहीं होते।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

आइए जानते हैं एमबीसी प्ले पर न्यू वर्ल्ड स्पोर्ट्स पैक में सब्सक्राइब करने का तरीका। स्टेप वन, सब्सक्राइबर को पहले एमबीसी प्ले ऐप खोलना होगा और जाना होगा टीवी सेक्शन में। अब जब किसी भी न्यू वर्ल्ड चैनल पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा टू अ सिक्योर मिप्स पेमेंट पोर्टल। स्टेप टू, अब आपके सामने होंगी दो पेमेंट ऑप्शंस। एक तरीका मोबाइल बैंकिंग एप्स के जरिए पेमेंट करने का, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। सो आपको सिलेक्ट करना होगा अपना प्रेफर्ड मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। अब इन पेमेंट एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर आपको एंटर करना होगा। ऐसा करने के बाद उस बैंकिंग एप्लीकेशन के द्वारा एक सिक्योर पुश नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पर दिखेगी। यूजर को उस नोटिफिकेशन को खोलना है, ट्रांजैक्शन और उसकी डिटेल्स को रिव्यू करना है और सिलेक्ट करना है एक्सेप्ट एंड पे। और वहीं पर अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का ऑप्शन चुनते हैं तो पहले मांगी हुई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स आपको भरनी होंगी और उसके बाद आपके बैंक के द्वारा आपको मिलेगा एक सिक्योर्ड वन टाइम पासवर्ड, यानी कि ओटीपी एसएमएस या ईमेल द्वारा। ये ओटीपी आपको अपने स्क्रीन पर एंटर करना होगा टू ऑथराइज द ट्रांजैक्शन। तीसरा और अंतिम स्टेप, एक बार यूजर ने पेमेंट को ऑथराइज कर दिया अपने बैंकिंग ऐप या ओटीपी के द्वारा, तो उनको अपना स्क्रीन नहीं बंद करना बल्कि इंतजार करना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है पूरी तरह कंप्लीट हो जाए ऑन द एमबीसी प्ले एप्लीकेशन। अब बस सक्सेसफुल पेमेंट कंफर्मेशन होते ही सिस्टम ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर देगा एमबीसी प्ले होम पेज पर और अनलॉक कर देगा इमीडिएट एक्सेस टू द प्रीमियम स्पोर्ट्स स्ट्रीम्स। ज्यादा

0: जानकारी या मदद के लिए सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच में फोन कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन सपोर्ट को 433-3135 या 433-2871 या 433-3145 या 433-2905 या 5251-6363 या फिर ऑन 5944-6800.
1: You're listening to Radio Mastiff.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: मॉर्निंग मॉर्निंग में हम हमेशा अडॉप्ट करना चाहते हैं बेस्ट सॉल्यूशन से, लेकिन जागने के बाद हम स्टेप्स ही भूल जाते हैं कि क्या करना था। टिकटॉक पर हर तरह के स्किन केयर रूटीन मिलते हैं, लेकिन वी एक्चुअली हैव टू चूज द वन जो हमारे लिए एप्रोप्रिएट हो। एक टिप है जो आप यूज़ कर सकते हो बिना भूले, एंड वो है चेहरे पर बर्फ लगाना। एंड ये मदद करती है आपके चेहरे को डीप ऑफ करने के लिए। आपका चेहरा ज़्यादा टोन्ड फील कर सकता है, तो अगर आपने ध्यान लिया था कि स्किन केयर रूटीन न करना है तो बर्फ के साथ ही शुरुआत कर सकते हैं। और बाकी टिप्स आपके लिए लाते रहेंगे आरएमजू रेडियो मस्ती पर। आप बस जुड़े रहिए हमारे साथ।
0: वेलकम टू आरएम2
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: और एम टू
1: रेडियो मस्ती
2: मेगा प्रोमो को क्वालिटी देखो टाइल्स 30x30 मेगा डील लो टाइल्स 60x60 सीपीए सेल्स लो ग्रानिट एक क्वार्ट्ज प्री कासे लो लावो ला लिनिया मॉडर्न प्री शॉक लो

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: दिन के 11 बजे है। चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार एक बार फिर करुणा जी से। नमस्कार।
4: नमस्कार नीलमणि, सभी को नमस्कार। फुटबॉल महोत्सव फीफा कप 2026 का सिलसिला जारी है। आज रात कनाडा के टोरंटो स्टेडियम में दूसरा उद्घाटन समारोह होगा, जिसके बाद ग्रुप बी के तहत कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना के बीच मुकाबला होगा। इसका सीधा प्रसारण MBC 11 पर किया जाएगा। याद रहे कि कल एस्टेका स्टेडियम में मेज़बान मेक्सिको ने अपने अभियान की शानदार शुरुआत करते हुए दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। इस तरह मेक्सिको ने 3 अंक हासिल कर ग्रुप स्टेज का सफल आगाज किया। ग्रुप ए के तहत ही आज सुबह दक्षिण कोरिया ने चेक गणराज्य को 2-1 से हराकर शानदार शुरुआत की। इस जीत के साथ दक्षिण कोरिया ने ग्रुप स्टेज में महत्वपूर्ण 3 अंक हासिल किए। तो फुटबॉल महाकुंभ फीफा कप 2026 की खबरों के लिए जुड़े रहिए MBC के साथ। नेशनल होलसेल मार्केट की सेवाओं का विकेंद्रीकरण अब गुडलैंड्स और फ्लैग तक किया

0: जाएगा। ये परियोजना एक पायलट आधार पर शुरू की जाएगी। इसका उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखला और परिवहन लागत को घटाना है, जिससे कि उपभोक्ताओं के लिए फलों और सब्जियों की कीमतें कम हो सके। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की दिशा में यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस एक महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। मंत्रिपरिषद ने मॉरिशस विश्वविद्यालय और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है। ये साझेदारी इंडस्ट्री एक्सचेंज नेटवर्क कार्यक्रम के अंतर्गत की जा रही है और इसका उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई तथा कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर कविराज सुको ने बताया कि सहयोग के तहत एक विशेष अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की भी योजना है। विदेश में ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय में दो वरिष्ठ मंत्रियों के इस्तीफों के बाद प्रधानमंत्री कैर स्टार्मर की सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। दोनों नेताओं ने सरकार की रक्षा व्यय योजना को लेकर इस्तीफा दिया। खबरों के अनुसार विवाद का मुख्य कारण सेना के लिए प्रस्तावित वित्तीय संसाधनों और दीर्घकालिक रक्षा निवेश योजना को लेकर मतभेद हैं। इस बीच सुरक्षा मंत्री रहे डॉन जोविस को नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। इसके साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय बाद शोक समाचार। कौलीला थ्रियोले में 54 साल की 54-year-old श्रीमती विमला रामलोचन पैदाइश नाम लखू जो विमला से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुपहर 3 बजे इनके पति श्री अजय रामलोचन के मकान कौलीला थ्रियोले से उठाकर दाह संस्कार के लिए तेमिनिस थ्रियोले की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। शोकग्रस्त इस परिवार के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति।
1: NBC Radio.TV. Welcome to RM2.
2: Musty Mornings. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: ऐसे ही पल के झपकते ही पहुंच गए हैं हम भी मस्ती मॉर्निंग के तीसरे आओ में. वेलकम बैक मेरे प्यारे लिसनर्स, इट्स नर्मनी और आप कनेक्टेड है RM2 वीडियो मस्ती के साथ. मस्ती को जारी रखते हैं नए ट्रेंडिंग सॉन्ग्स के साथ. अगर अभी माशुका नहीं है आपके बगल में, विजुलाइज ही सही करते हैं इस नेक्स्ट सॉन्ग के साथ.
0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
0: 11:20 मिनट हुए हैं और आप वीकेंड का वेट करते करते फ्राइडे को वेस्ट मत करिए यार. आज सिर्फ 10 मिनट निकालिए और अपनी नेक्स्ट वीक की प्लानिंग जो है उसे लिखना शुरू कर दीजिए. स्मॉल सा टू डू लिस्ट बना लीजिए, रूम का एक कोना ही साफ कर दीजिए या फिर अपने फ़ोन से जो अननेसेसरी फोटोज़ हैं उन्हें डिलीट कर दीजिए. बिलीव इट और नॉट, छोटी छोटी ऑर्गेनाइजिंग हैबिट्स हमारे स्ट्रेस को कम करती हैं और वीकेंड और ज़्यादा एंजॉयबल बना देती है. और हाँ, आज को थोड़ा सा रिवॉर्ड भी दीजिएगा, हो सकता है एक एक्स्ट्रा कप ऑफ कॉफ़ी या फिर चाय, अपनी जो फेवरेट स्नैक है उसे खाओ या फिर अपने फेवरेट गाने को फुल वॉल्यूम पर सुनिए. इट्स ऑल अबाउट द लिटिल थिंग्स यू नो मेरे प्यारे दोस्त. सो मेक श्योर कि आप हैप्पी हैं, खुश हैं लाइफ में और ऐसे ही स्टे ट्यून्ड टू आरएम2 रेडियो मस्ती.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
0: And yes, it's your RM2 Radio Musty. And आज का सिंपल लाइफ हैक है कि अगर कोई काम दो मिनट में हो सकता है तो उसे कल के लिए मत छोड़िए, वरना कल के पास भी अपने बहुत सारे पेंडिंग काम होते हैं. और अगर अभी दिल में गिटार नहीं बल्कि भूख के मारे शोर हो रही है तो इंतजार ना कराए उनको, कुछ खा लीजिए यार. पानी भी इससे पाप करते रहो, भूखे पेट कभी काम नहीं करना चाहिए, ये तो बॉस को भी पता है. सो लव यू जिंदगी और पेट को भी संतुष्ट रखिए. आपको बोलेंगे बन आप चीज.
2: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: वैसे हर दिन परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन हर दिन में कुछ ना कुछ परफेक्ट तो जरूर होता है। कभी एक स्माइल, कभी एक गाना, कभी एक मैसेज। तो आज उस छोटी सी खुशी को जरूर नोटिस कीजिएगा। एंड पल पल दिल के पास गाना आपके लिए पेश करती हैं, आपके इस फ्राइडे को और भी स्पेशल बनाने के लिए।
0: You're listening to Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: फ्राइडे का फॉर्मूला सिंपल है, काम को रैप अप करो, मूड को लेवल अप करो और वीकेंड को वार्म अप. इसी लाइन के साथ टाइम हो चला है फॉर मी टू साइन ऑफ. होप यू हैड ए ग्रेट ग्रेट मस्ती मॉर्निंग. कल मिलते हैं सुबह को. टिल देन कीप शाइनिंग, स्माइलिंग एंड वाइबिंग आपके ही आर एम जू रेडियो मस्ती के साथ.
0: वेलकम टू आर एम
1: टू मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती.

0: welcome to Radio Masti.
1: The time is brought to you by McDonald's.
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee. Share the taste. Share happiness.
0: Radio Masti.
3: North. South.
0: 103.5.
3: East. West.
0: 96.4.
3: Center.
0: 99.4.
4: RM2, Radio Musty.
0: Radio Musty.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty. Feel the Musty. The Musty.
5: Check your time. It's exactly noon. Aaiye sunte hain samachar karuna ke saath. Namaskar.
6: नमस्कार गिनी शाह सभी को नमस्कार। मिडलैंड्स के शासीडो विलाओं में 40 वर्षीय के व्यक्ति को मृत पाया गया। जोनाथन कुयान की लाश गुरुवार रात लगभग 10:45 पुलिस द्वारा बरामद की गई, जो कि खून से लथपथ थी। रोजिल निवासी और पेशे से अकाउंटेंट जोनाथन कुयान के सीने में गोली लगने की चोट पाई गई। मौके पर पहुंचे सामी ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना की परिस्थितियों का पता लगाने के लिए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जांच को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की उम्मीद है। फुटबॉल का महोत्सव फीफा कप 2026 का सिलसिला जारी है। आज रात कनाडा के टोरंटो स्टेडियम में दूसरा उद्घाटन समारोह लगाया जाएगा, जिसके बाद ग्रुप बी के तहत

0: कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना के बीच मुकाबला होगा। इसका सीधा प्रसारण आप एमबीसी 11 पर देख पाएंगे। याद रहे कि कल अस्टेका स्टेडियम में मेजबान मेक्सिको ने अपने अभियान की शानदार शुरुआत करते हुए दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। इस तरह मेक्सिको ने 3 अंक हासिल कर ग्रुप स्टेज का सफल आगाज किया। ग्रुप ए के तहत ही आज सुबह दक्षिण कोरिया ने चेक गणराज्य को 2-1 से हराकर शानदार शुरुआत की। इस जीत के साथ दक्षिण कोरिया ने ग्रुप स्टेज में महत्वपूर्ण 3 अंक हासिल किए। तो फुटबॉल महाकुंभ फीफा विश्व कप 2026 की खबरों के लिए जुड़े रहिए एमबीसी के साथ। रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष एक बार फिर तेज हो गया है, जिसमें दोनों ओर से हुए हमलों में 3 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हुए हैं। इनमें 5 साल के एक बच्चा भी शामिल हैं। यूक्रेन ने रूस के ब्रायंस्क और स्टारोडुब इलाकों पर हमला किया, जबकि रूस ने सुमी और माइकोलाइव में ड्रोन हमले किए, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में भारी तबाही हुई। और ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय में 2 वरिष्ठ मंत्रियों के इस्तीफे के बाद प्रधानमंत्री कर्स्टॉमर की सरकार के लिए ये एक बड़ा झटका साबित हुआ। दोनों नेताओं ने सरकार की रक्षा व्यय योजना को लेकर इस्तीफा दिया। खबरों के अनुसार विवाद का मुख्य कारण सेना के लिए प्रस्तावित वित्तीय संसाधनों और दीर्घकालिक रक्षा निवेश योजना को लेकर मतभेद हैं। इस बीच सुरक्षा मंत्री रहे डैन जॉविस को नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया। इसके साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय बाद शोक समाचार। कौलीला ट्रियोले में 54 साल की 54-year-old श्रीमती विमला रामलोचन, पैदाइश नाम लखू, जो विमला से जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुपहर 3 बजे इनके पति श्री अजय रामलोचन के मकान कौलीला ट्रियोले से उठाकर दाह संस्कार के लिए त्यामिनिस ट्रियोले की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। शोकग्रस्त इस परिवार के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. Retro Rhythm.
2: RM2, Radio Musti.
3: आशा जी को साफ सफाई रखने का मेनिया है, जुनून है, और तुम्हें अब क्या कहूँ, सब सुन लेंगे। उनके जन्मदिन पर आपने चांदी के से कागज में एक झाड़ू पेश किया था उन्हें। आशा जी को देखते ही बोल पड़ते थे, लो अब ये काम कराएंगे मुझसे। आशा जी का जवाब क्या था याद है?

0: Retro Rhythm.
1: गाइज़ चेकियो टाइम स्टूडियो की घड़ी में 12:07 हो चुके हैं। गिनिशा हाजिर है बहुत ही खूबसूरत कानों के खजाने के साथ आपका साथ देने के लिए इन योर रेट्रो रिदम। फ्राइडे है 12 जून 2024। सो विशिंग ऑल ऑफ योर वेरी गुड आफ्टरनून। नमस्कार और गिनिशा का प्रणाम। सो नमस्कार मॉरिशस, और एक जबरदस्त फ्राइडे आफ्टरनून में आप सभी लोगों का हम बड़े प्यार से स्वागत करना चाहेंगे इस खूबसूरत से शो में, जहाँ पे हम लेकर आए हैं कुछ गिने चुने पुराने नगमे जो सीधे जाकर बस दिल को लग जाए। एंड आई रियली होप दैट वी आर गोइंग टू हैव अ ग्रेट टाइम इस दो घंटे की सफर में। मैजिकल नंबर तो आपको पता ही है 5499-1294 पर। एंड एक्चुअली इट्स लंच टाइम, सो बोन अपेटी यानी कि शुभ आहार टू ऑल माय डियर एंड लवली पीपल आउट देयर जो साथ दे रहे हैं ऑन आवर इंटर रेडियो मस्ती।
0: यू आर लिसनिंग टू रेडियो मस्ती

That's in the beautiful, lovely voice of Alisha Chennai. Jahan Dosto Tarzan, Oh My Tarzan. What a beautiful song. Taken from the movie Tarzan, jo 1982 mein release hui thi and featuring Kimi Kadkar. Jahan, such a lovely movie. And this song ho, MJ bringing back so many lovely souvenirs. I really hope that you guys are having a good time. That's your retro rhythm with me, Ginisha, on RMT Radio Masti, dedicating each and every track to everyone jo saath de rahe hai. Friday ka midday hai, dosto. Weekend bas kuch hi ghanton dur hai. To काम का प्रेशर थोड़ा साइड में रखिए और बस अपना ये लंच एंजॉय कर लीजिए और उठाइए नॉस्टैल्जिया के ये सफ़र का फुल ऑन मज़ा. तो चलिए, आप बस यूं ही हमारा साथ देते रहना. ये है रेट्रो रिदम, जहां हर गाना एक याद है, हर याद एक कहानी है और हर कहानी आपकी है. देयर वी गो, दिस सॉन्ग इज़ आउट टू यू.

0: Retro Rhythm. Such a lovely song. जी हाँ या या यूपी यूपी या या ऐसा लगता है कि हम पिकनिक पे जा रहे हैं और सब मिलकर ये गाना गुनगुना रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले की आवाज़ों में. जी हाँ छोटी सी मुलाकात कितनी बड़ी बन जाती है बाद में आपको तो पता ही है कि छोटी सी मुलाकात आपकी ज़िंदगी बना देती है. रेडियो मस्ती के साथ जुड़े रहे क्योंकि आज का सफ़र सिर्फ गानों का नहीं है दोस्तों, यादों का भी है. वैसे कभी कॉलेज की कैंटीन, कभी पहला प्यार, तो कभी फैमिली पिकनिक और कभी संडे आफ्टरनून का रेडियो. पुरानी बॉलीवुड गाने हमें सीधा उन लम्हों में लेके जाते हैं, है ना. बस उन्हीं खूबसूरत यादों को हम याद करते करते मुस्कुराने सा लग जाता है. और दोस्तों वीकेंड के प्लान्स वैसे क्या हैं, आपने ऑलरेडी तो सोच लिया होगा ना. शायद यू माइट बी हियर गोइंग फॉर फैमिली आउटिंग, बीच ट्रिप पे जाओगे या फिर घर पर फुल ऑन रिलैक्सेशन मूड. जो भी आपका प्लान हो, रेट्रो रिदम आपके मूड को परफेक्ट साउंडट्रैक देने के लिए बस यहीं पे है. एंड साथ में योर डेडिकेशंस आर द मोस्ट वेलकम. तो चलिए ये अगला गाना जो है हम डेडिकेट करना चाहेंगे स्पेशली फॉर यू माई डियर. किसी ने बोला है कि रिक्वेस्ट किया है, कोशिश करेंगे आपकी बहनों के लिए अनीता अमृता एंड माला के लिए. एंड टू योर ब्रदर्स सुनील धीरूज एंड विशाम कमिंग फ्रॉम और आपके हस्बैंड राज के लिए. दस कमिंग फ्रॉम माया जो मेबर्ग की रहने वाली हैं. थैंक यू सो मच माया जी. और बस यूँ ही साथ देते रहना. कृष्टि हे हाय कैसे हो आप, रिविया दिख रहे से. सो अ बिग हाय गोज टू यू, हैव अ ग्रेट वीकेंड आई हैड वंडरफुल डे टू यू माई स्वीट हार्ट. आपके हस्बैंड विक्रम के लिए, आपके ट्विंस कौशिक एंड कौशल के लिए भी ये अगला गाना हम डेडिकेट करना चाहेंगे. एंड एज यूजुअल हे इट्स फ्राइडे सो लेट्स रॉक. जय माता दी. सो डारेन श्वेता रविश प्रिशा लवेशा पा डू फैमिलीज कैसे हो आप, आप लोग रोशनों से साथ दे रही हो. तो ये अगला गाना हमारी तरफ से आपके नाम. तो चलिए आई जस्ट वांट टू डेडिकेट दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग टू ऑल दोस जो अभी काम पे है. सो आई जस्ट वांट टू विश यू बॉन कुराज हमारी पूरी टीम की तरफ से. 54991294 5499 1294. Exactly, that's the number G. आपको बस उसी नंबर पे अपना जो मैसेजेस हैं, डेडिकेशन से दिल की बात है लिख के हमें भेजना है. I'm just waiting for them. Enjoy this song.
1: All right, Radio Mystery.

आइए जानते हैं एमबीसी प्ले पर न्यू वर्ल्ड स्पोर्ट्स पैक में सब्सक्राइब करने का तरीका। स्टेप वन, सब्सक्राइबर को पहले एमबीसी प्ले ऐप खोलना होगा और जाना होगा टीवी सेक्शन में। अब जब किसी भी न्यू वर्ल्ड चैनल पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा टू अ सिक्योर मिप्स पेमेंट पोर्टल। स्टेप टू, अब आपके सामने होंगी दो पेमेंट ऑप्शंस। एक तरीका मोबाइल बैंकिंग एप्स के जरिए पेमेंट करने का, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। सो आपको सिलेक्ट करना होगा अपना प्रेफर्ड मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। अब इन पेमेंट एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर आपको एंटर करना होगा। ऐसा करने के बाद उस बैंकिंग एप्लीकेशन के द्वारा एक सिक्योर पुश नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पर दिखेगी। यूजर को उस नोटिफिकेशन को खोलना है, ट्रांजैक्शन और उसकी डिटेल्स को रिव्यू करना है और सिलेक्ट करना है एक्सेप्ट एंड पे। और वहीं पर अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का ऑप्शन चुनते हैं तो पहले मांगी हुई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स आपको भरनी होंगी और उसके बाद आपके बैंक के द्वारा आपको मिलेगा एक सिक्योर्ड वन टाइम पासवर्ड, यानी कि ओटीपी एसएमएस या ईमेल द्वारा। ये ओटीपी आपको अपने स्क्रीन पर एंटर करना होगा टू ऑथराइज द ट्रांजैक्शन। तीसरा और अंतिम स्टेप, एक बार यूजर ने पेमेंट को ऑथराइज कर दिया अपने बैंकिंग ऐप या ओटीपी के द्वारा, तो उनको अपना स्क्रीन नहीं बंद करना बल्कि इंतजार करना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है पूरी तरह कंप्लीट हो जाए ऑन द एमबीसी प्ले एप्लीकेशन। अब बस सक्सेसफुल पेमेंट कंफर्मेशन होते ही सिस्टम ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर देगा एमबीसी प्ले होम पेज पर और अनलॉक कर देगा इमीडिएट एक्सेस टू द प्रीमियम स्पोर्ट्स स्ट्रीम्स। ज्यादा जानकारी या मदद के लिए सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच में फोन कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन सपोर्ट को 4333135 या 4332871 या 4333145 या 4332905 या 5251-6363 या फिर ऑन 5944-6800। RM2 Radio Musti

0: और एम टू
1: रेडियो मस्ती।
2: रेट्रो रिदम
1: और एम टू

0: रेट्रो रिदम
1: किशोरदा की आवाज में वादा है क्या। और जी हाँ, ये खासकर आप लोगों के लिए जो उनके डाई हार्ट फैन हैं, अभी भी किशोरदा के गाने जब भी बजते हैं ना, तो सभी लोग जो हैं काफ़ी बस जो भी काम कर रहे हैं ना, बस एकदम से रुक जाते हैं और बोलते हैं ओ हो, ये गाना कितना अच्छा है, काफ़ी समय से नहीं सुना है। एक्चुअली यही तो हम कोशिश करते हैं कि रिपीटेडली हम बहुत ही रेयरली कोई गाना चलाएं, और जो काफ़ी वक्त से शायद आपने नहीं सुना होगा, वही तो हम कोशिश करते हैं आपको सुनाने के लिए। 12:41 क्या टाइम बीता चला जा रहा है एंड कितनी शस्ती लंबा माइक साथ देने के लिए। वैसे फ्राइडे की आफ्टरनून और रेट्रो रिदम का जो कॉम्बिनेशन है ना, बिल्कुल परफेक्ट है मेरी जान। अब वक्त है एक और सुपरहिट मेलोडी का, जो गाना है रिलीज हुई थी डिकेड्स पहले, लेकिन आज भी हर जनरेशन के दिल में अपनी जगह रखती है। और ये ही तो बॉलीवुड म्यूजिक का मैजिक है दोस्त। गाने पुराने हो जाते हैं लेकिन एहसास हमेशा नए ही लगते हैं, और इस एहसास को आगे बढ़ाने के लिए हम लेकर आए हैं

खूबसूरत प्यारे गाने एंड मिस्टर डे फ्रॉम द सिटी ऑफ लव, आपने मांगा है ये गाना दिल में हो तुम। अक्सर हम ये प्ले करते हैं, इसलिए गुस्ताखी माफ नहीं प्ले करेंगे आज, क्योंकि वी डू प्ले दिस सॉन्ग बहुत ही ओफनली ऑन रेडियो मस्ती। अगर कोई और गाना है, लेकिन आज हैप्पी हैप्पी, क्योंकि आज फ्राइडे है ना, कुछ बहुत ही हैपनिंग वाला गाना आप मुझसे मांग लीजिए, 80s और 90s का और इवन 70s का। लेट्स सी, अगर शो में फिट होता है तो डेफिनेटली आई विल प्ले इट फॉर यू एंड योर लवली वाइफ अमृता, एंड हैव अ ब्लेस्ड डे अहेड, थैंक यू सो मच। एंड ये अगला गाना सभी दोस्तों के लिए जो रेडियो मस्ती को सुन रहे हैं, दैट्स कमिंग फ्रॉम कल्याणी, जो कौन तो गैल, उनके दोस्त, उनके फैमिली और खुद के लिए ये अगला गाना आप डेडिकेट कर रहे हैं। वेल किशोर दा का गाना, हम जी आप हो मिस्टर कुमार, अभी तो प्ले किया था किशोर दा का गाना, अभी और भी आएंगे, सो जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड हमारे साथ, क्योंकि वीकेंड का जो काउंटडाउन ऑफिशियली जब शुरू हो जाता है ऑन रेडियो में से, आपको तो पता है कि हम अच्छे अच्छे प्यारे गाने लेकर आते हैं। फिलहाल के लिए आप गॉट योर ब्यूटीफुल कम्बो ऑफ मोहम्मद रफी जी एंड लता मंगेशकर, लड़की पसंद की, क्या आपने कर ली है पसंद, ये होगी तो ये गाना उसी लड़की के नाम, 5 9 9 12 94। जी हाँ, send me your dedications, do let me know कहाँ से आप साथ दे रहे हो, what's the plan for the weekend and कैसा लग रहा है ये खूबसूरत गानों का selections on RMT Radio Masti, that's your number one radio station, और हम हैं किनिशा साथ दे रहे हैं।

0: Retro Rhythm.
1: That was such a beautiful combination of मोहम्मद रफी जी की आवाज़ और लता मंगेशकर की आवाज़। जी हाँ, इनकी आवाज़ों में लेकर आई हैं लड़की पसंद की। एंड आई सेड, जैसे कि मैंने कहा है कि अगर आपने लड़की पसंद कर ली है तो ये गाना खासकर उस लड़की के नाम जो दिल में आपने छुपा के रखा है, अरे हमें भी ज़रा बता दीजिए कौन है वो, उसका नाम क्या है। ऑन 5499-1294 पर। एंड नाउ आई एम गेटिंग सच ब्यूटिफुल एंड लवली मैसेजेस। मिस्टर राज, कैसे हो? साथिया तू मेरे सपनों का। अच्छा ठीक है, लेकिन मैडम जी आपका नाम क्या है? आई गेस इट्स प्रेमिला। सो प्रेमिला ने डेडिकेट किया है अपने हस्बैंड के लिए, मिस्टर राज के लिए, एक प्यारा सा गाना। एंड वी डू हैव द नेक्स्ट वन अवनी के लिए, वाइफ मनीषा के लिए एंड रोशन के लिए। वी आर ऑन आवर वे टू तमाशा होटल राइट नाउ। ओहो मेरी जान, मेरे दिल पे चोरियाँ चलती हैं जब आप लोग ऐसे बोलते हैं ना कि वीकेंड आ गए और हम मस्ती करने जा रहे हैं। एंड वेल ये एक्चुअली हम भी करना चाहते हैं लेकिन कल आई हैव टू वर्क, बट इट डजंट मैटर। और क्यारा के लिए ये आप ऐसा समझ लीजिए कि अगला गाना आप ही के लिए है। आप मस्ती करने जा रहे हो तो कर लीजिए ना, बस एंजॉय करते रहना अपनों के साथ। डू हैव अ ग्रेट टाइम एंड ऑल दोज हु हैड अ प्लान टू एंजॉय एट द होटल, समुंदर किनारे जाना है कहीं पे भी अपनों के साथ। इफ़ यू वांट टू गो एंड एंजॉय जस्ट डू इट, और वो पूरे दिल से। लेकिन एक चीज़ है कि आपको रेडियो मस्ती का साथ नहीं छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। सो लीना ऑफ प्लान दे रोश, ये अगला गाना लिटिल प्रिंसेस जिया के लिए, हस्बैंड राजीव के लिए। दे आर एट रोश नोर राइट नाउ, आपका रेस्ट में है ओके, एंड आपका टीम भी है, एंजॉय कर रहे हैं। सो मस्ती कर रहे हैं, अच्छी बात है। जब रेडियो मस्ती को सुनते हैं तो मस्ती तो करना चाहिए ना आपके पूरे परिवार के लिए, शिव शंकर परिवार के लिए। अजी ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, तो उठा लीजिए ना मौका अगर हमने आपको दिया है। माई सेकेंड चॉइस आई नो मिस्टर डे फ्रॉम द सिटी ऑफ लव, यू आर फ्रॉम पेरिस, डेडिकेटिंग इट फॉर मी। अच्छा आपका मैसेज बदल गया ना कि बीवी के लिए मैंने नहीं चला, चलो गिनी को ही बता लेते हैं। तो गाना आपके लिए, आपकी टीम के लिए, विदाउट फॉरगेटिंग ऑफ कोर्स अमृता योर ब्यूटीफुल वाइफ। सो थैंक यू सो मच। तो चलिए जी, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड। अभी आपको लेके जाएंगे इन द ईयर ऑफ 2000 एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि फिलहाल के लिए आप भी गुनगुनाएंगे और एंजॉय करेंगे इस गाने को। 5499-1294 पर 5499-1294 send me your dedications.

0: आइए सुनते हैं समाचार याचना के साथ। नमस्कार।
1: नमस्कार गिनीशा, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। क्यूपिप की पुलिस मिडलैंड्स के एक रॉन्च में एक व्यक्ति की मौत पर जांच कर रही है। 40 साल के जोनाथन कुयामटू का शव कल उस रॉन्च की पार्किंग में उसकी गाड़ी की बगल में मिली। उसके पेट पर गोली लगी थी। आज शव परीक्षण किया जाएगा। इस हादसे के सही कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस की जाँच जारी रखी जा रही है। वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत हो चली है। कल मेक्सिको के अस्टिका स्टेडियम में औपचारिक समारोह लगा। इस रंगारंग कार्यक्रम में करीब 80,000 दर्शकों ने भाग लिया। इस वर्ल्ड कप के लिए 3 उद्घाटन समारोह निर्धारित हैं, जिनमें से पहला कल मेक्सिको में लगा और दूसरा आज रात कनाडा में निर्धारित है, जो इस साल इस वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है। और वर्ल्ड कप की ही बात करते हैं। कल मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला हुआ। ग्रुप ए का पहला मैच स्कोर रहा 2-0, जिसमें मेक्सिको की जीत हुई। इसके अलावा ग्रुप ए में ही दक्षिण कोरिया ने चेक रिपब्लिक को 2-1 से परास्त किया। आपको याद दिला दें कि एमबीसी प्ले एप्लीकेशन पर आप ₹300 में वर्ल्ड कप की सभी मैच देख पाएंगे। इसके लिए विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं। आज रात बोस्निया और कनाडा की टीमें आपस में टकराएंगी। मैच का सीधा प्रसारण आज रात 11 बजे किया जाएगा। इससे पहले

0: मेजबान देश कनाडा में रात 8:30 बजे से उद्घाटन समारोह आप देख पाएंगे। विदेश की खबरों में थाईलैंड की राजकुमारी का निधन 47 साल की उम्र में हो गया है। 2 साल पहले वे दिल की बीमारी के कारण अचानक बेहोश हो गई और तब से कोमा में थी। वे थाईलैंड के राजा की 7 संतानों में से सबसे बड़ी और पहली उत्तराधिकारी थी। ये थी अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। जॉन मिल्टन रोड होशनुआ में 78 साल की 78 ईयर्स ओल्ड की विधवा अमावती जीवन पैदाशी नाम मुतादीन और जो अमावती के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 9:30 बजे उनके मकान जॉन मिल्टन रोड होशनुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पीतों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 9:30 AM। कौलीला थ्रियोले में 54 साल की 54 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती विमला रामलोचन पैदाशी नाम लखू और जो विमला के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुपहर तीन बजे उनके पति अजय रामलोचन के मकान कौलीला थ्रियोले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्यामिनिस थ्रियोले की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 8:03 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: Retro Rhythm.
3: RM2.

0: रेट्रो रिदम।
1: बिल्कुल जी, यू हैव द एंटायर परमिशन हमारे से है कि आप किसी को याद कर सकते हो, क्यों ना करें। आज फ्राइडे है, अगर याद आ रही है तो बस फ़ोन उठाइए और उनको फ़ोन कर लीजिए और बता दीजिए कि हाउ मच यू आर मिसिंग द पर्सन। कभी कभी होता है ना कि आपने उस इंसान को काफ़ी समय से नहीं देखा और इस गाने को सुनने के बाद हाँ जी आपका दिल अंदर से रो रहे हैं और बोल रहे हैं कि हाँ जी याद आ रही है। अगर याद आ रही है तो किसने रोका है आपको, आप बस फ़ोन उठाइए, उनको मैसेज

कर लीजिए, अगर उनको नहीं कर सकते तो आप मुझे कर लीजिए, और हम वादा करते हैं अपने ही अनोखे अंदाज में हम पहुंचाएंगे आपके चाहने वालों तक आपके दिल की बात। 5499124 पर ललिता जीतन जी ने भेजा है कि वो अभी हमें सुन रहे हैं, लंच टाइम है, सो बोन अपेटाइट टू यू एंड आपकी कलीग्स हैं सुमी, सोनिया, राहुल, रूमी, रवि, पिंकी, स्वीटी, सिमला, दिशिता एंड वी हैव रिया, मीरा एंड मिशेल। ललिता जीतन के जो फैमिली है लावाचा से, उनके लिए भी अगला गाना हम डेडिकेट करना चाहेंगे। एंड हाय मेरी जान, ओए होए क्या बात है कविता बाबुल, एंड ये दुआ ये लेती या ये गाना, अच्छा बाबुल की दुआएं लेती जा, मैं नहीं दूंगी आपको ये, अभी नहीं, बिल्कुल मेरा मन नहीं है, आप तो रुलाओगे भाई। मैंने बोला फ्राइडे है, ऐसे गानों की मांग करना जो दिल खुश हो जाए और मन करे कि यस वी कैन किक स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल वीकेंड टुगेदर, हम गाएं मुस्कुराए साथ में। तो चलिए कोई बात नहीं, अगला गाना जो हम लेकर आए हैं हम आपके लिए ज़रूर डेडिकेट करना चाहेंगे, आपके दोस्तों के लिए और सभी लोग जो काम कर रहे हैं आपके साथ। एंड कविता जी आपने तो लिखा नहीं कि आप कहाँ से हो, लेकिन फिर भी द नेक्स्ट वन गोज आउट टू यू एंड कैसे हो मेरी जान। अय हाय आज तो सबकी जान बनी बैठी हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ हमेशा की तरह। आप हमें विश कर रहे हैं हैप्पी फ्राइडे सभी रेडियो मस्ती टीम को, और आप हो हमारी प्यारी अनीता जी फ्रॉम फिकम फ्लैक। हाई ब्यूटी हैप्पी फ्राइडे, अय मेरी जान इतना भी तारीफ मत करो कल्याणी जी, इट्स नॉट गुड, हम फूलते चले जाएंगे यहाँ पर बैठे बैठे। थैंक यू so much and you too have a lovely time with your family, your friends. Hi my outstanding babe, kya baat hai aaj to itni tareef pe tareef kiye ja rahe hai sabhi log, kya baat hai itne maske kyon laga rahe hai, friday hai na aaj isliye. So dahan shweta ravish prisha ravish and apadu families, the next one goes out to you bo plan se saath de rahe hain girisha and kumar ki taraf se agla gana aapke liye. तो चलिए किशोरदा का कोई प्यारा सा गाना ज़रूर जी थोड़ी देर में ज़रूर प्ले करेंगे। एंड अच्छा आप, मैंने बोला कि आपने लिखा नहीं कि आप कहाँ से, आपने फटाफट लिख दिया डुफ्रेया से, ठीक है दैट्स नाइस। ये कहाँ पे पढ़ता है डुफ्रेया, मुझे नहीं पता, चलो मैं जियोग्राफीज काफ़ी वीक, ढूंढेंगे और एंड देन ज़रूर आएंगे एक दिन दुफ्रेया में, वहाँ पे है थोड़ा घूमने फिरने ज़रूर आएंगे। एंड ऑल दोस्त जो उस साइड हमारा साथ दे रहे हैं आपके लिए भी हम अगला गाना डेडिकेट करना पसंद करेंगे। तो चलिए जी ऑल दोस्त वर्किंग राइट नाउ, हे गॉश टू यू, आई नो फ्राइडे है मन नहीं कर रहा है काम करने का, लेकिन जब ऐसे गाने हम लेकर आते हैं ना टाइम कैसे बीत जाता है इंसान को पता ही नहीं चलता है। एंजॉय कीजिए उषा उठो पप्पी लहरी की आवाज़ों में, अव्वा अव्वा कैसे करते हैं आप ट्राई कर लीजिए, ठीक है।

आइए जानते हैं एमबीसी प्ले पर न्यू वर्ल्ड स्पोर्ट्स पैक में सब्सक्राइब करने का तरीका। स्टेप वन, सब्सक्राइबर को पहले एमबीसी प्ले ऐप खोलना होगा और जाना होगा टीवी सेक्शन में। अब जब किसी भी न्यू वर्ल्ड चैनल पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा टू अ सिक्योर मिप्स पेमेंट पोर्टल। स्टेप टू, अब आपके सामने होंगी दो पेमेंट ऑप्शंस। एक तरीका मोबाइल बैंकिंग एप्स के जरिए पेमेंट करने का, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। सो आपको सिलेक्ट करना होगा अपना प्रेफर्ड मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। अब इन पेमेंट एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर आपको एंटर करना होगा। ऐसा करने के बाद उस बैंकिंग एप्लीकेशन के द्वारा एक सिक्योर पुश नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पर दिखेगी। यूजर को उस नोटिफिकेशन को खोलना है, ट्रांजैक्शन और उसकी डिटेल्स को रिव्यू करना है और सिलेक्ट करना है एक्सेप्ट एंड पे। और वहीं पर अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का ऑप्शन चुनते हैं तो पहले मांगी हुई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स आपको भरनी होंगी और उसके बाद आपके बैंक के द्वारा आपको मिलेगा एक सिक्योर्ड वन टाइम पासवर्ड, यानी कि ओटीपी एसएमएस या ईमेल द्वारा। ये ओटीपी आपको अपने स्क्रीन पर एंटर करना होगा टू ऑथराइज द ट्रांजैक्शन। तीसरा और अंतिम स्टेप, एक बार यूजर ने पेमेंट को ऑथराइज कर दिया अपने बैंकिंग ऐप या ओटीपी के द्वारा, तो उनको अपना स्क्रीन नहीं बंद करना बल्कि इंतजार करना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है पूरी तरह कंप्लीट हो जाए ऑन द एमबीसी प्ले एप्लीकेशन। अब बस सक्सेसफुल पेमेंट कंफर्मेशन होते ही सिस्टम ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर देगा एमबीसी प्ले होम पेज पर और अनलॉक कर देगा इमीडिएट एक्सेस टू द प्रीमियम स्पोर्ट्स स्ट्रीम्स। ज्यादा जानकारी या मदद के लिए सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच में फोन कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन सपोर्ट को 4333135 या 4332871 या 4333145 या 4332905 या 5251-6363 या फिर ऑन

0: 0549446800.
1: Retro Rhythm
2: RM2 Radio Musti.

picture seeing this beautiful and lovely actress Manisha Koirala. हाँ जी, ये कितनी खूबसूरत है ना, वो अभी भी बहुत है. एंड वैसे अगर किसी ने आपको बोला नहीं, आज आप बहुत ही अच्छे लग रहे हो. हाँ जी, यू आर लुकिंग वेरी प्रीटी. किसी ने शायद आपको ये कॉम्प्लीमेंट नहीं दी, लेकिन आई एम टेलिंग यू, आप तो अब सोचेंगे कि गिन्नी ने देखा ही नहीं. अरे देखने की क्या ज़रूरत है, मुझे पता है आप लोग बहुत ही प्यार से जब हमारा साथ देते हो तो ये जो मुस्कुराहट आप लेकर आते हैं होंठों पर, तो ऑफकोर्स इफ़ यू आर स्माइलिंग यू आर लुकिंग सो प्रीटी. सुरेखा कैथ कोको से साथ दे रही हैं और रामधन परिवार के लिए अगला गाना वो डेडिकेट करना चाहेंगे. दैट्स सो स्वीट ऑफ यू एंड आई जस्ट वांट tell you thank you so much for choosing us as your radio partner. And husband Sylvan, ye mere nahi unke husband hai ji, and main nahi bol rahi hu, I miss you, aapki biwi bol rahi hai ki wo aapse beinteha mohabbat karti hai aur aapko bahut hi zyada miss kar rahi hai despite the difficult times. Jo rough and tough chal rahe hain, upar niche to chalta hi rehta hai na life mein, lekin उनका मैसेज अधूरा रह गया. अरे बीवी जी, अब आपका नाम कैसे लूंगी. लेकिन सिल्वन, आपको तो पता है ना आपकी बीवी का नाम क्या है, तो चलिए उन्हीं की तरफ से ये अगला गाना आपके लिए. एंड चलिए जी, प्रणाम, आपको भी प्रणाम. तो आई जस्ट वांट टू डेडिकेट द नेक्स्ट वन. फरमाइश है एक गाने की, आपने पूछा क्या बजा सकती हूँ. मैं तो बजा सकती हूँ, लेकिन नाम क्यों नहीं लिखती हूँ. यू शुड साइन योर मैसेजेस. ऐसा नहीं चलेगा जी, मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ जो मुझे पता चलेगा कि हमारे ये मैसेजेस के उस पार कौन है जो हमें प्यारे प्यारे मैसेजेस भेज रहे हैं. तो चलो कोई बात नहीं. एंड वेल, वी हैव सो मेनी पीपल राइट नाउ जो साथ दे रहे हैं. कोई बोलते हैं कि काम इतना तेज़ी से चल रहा है जैसे ये पहला गियर गाड़ी. अरे पहला नहीं, मैं तो बोलते हो फिफ्थ गियर पे चलाओ और बस चलाते रहना. अरे इतना कौन मेहनत करे. हम तो बोलते हैं कि आजकल बिना गियर के लगाए हुए आप गाड़ी चला सकते हो. सो व्हाई डोंट यू ड्राइव द ऑटोमेटिक गाड़ी जैसे हम चला रहे हैं ना गाड़ी, आपके गाने आपके लिए. देखा आपने तो मुझे गाड़ी, आपने तो मुझे रोड पर पहुँचा दिया. तो मैं आपके लिए चला रही हूँ अच्छे अच्छे गाने, आप बस इन्जॉय कीजिए ना. एक्चुअली ये जो लवली फ्राइडे ट्यून्स हम लेकर आते हैं, अगर आप दिल से एंजॉय कर रहे हो तो दैट्स इट, मेरा काम पूरा हो गया. और जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो जाएगा, आपको पता अंदाज़ा भी नहीं होगा कि टाइम हो गया घर जाने का. अरे अभी नहीं, अभी तो टाइम बाकी है, आप कहाँ जा रहे हो. तो चलिए फिलहाल के लिए आप गॉट यू अ ब्यूटीफुल सॉन्ग अलका याग्निक की आवाज़ में. ऑन दिस वन इट्स टेकन फ्रॉम द मूवी मैडम एक्स. मैडम जी, जितने खूबसूरत लेडीज़ हमारा साथ दे रहे हैं, अगर आप भी किसी को पसंद करते हो चोरी चोरी चुपके चुपके और सोच रहे हो कि कैसे उनका दिल जीतना है, मुझसे मत पूछेगा, मुझे नहीं पता. आप खुद सोच लीजिए और इस गाने को एंजॉय कर लीजिए. हो सकता है कि इस गाने में आपको आपके सवाल के, अपने जितने सवालों का है जो मन ही मन में चल रहे हैं, जवाब मिल जाए आपको. तो चलिए, दिस वन गोज आउट टू यू ब्यूटीफुल लेडीज.

0: Retro Rhythm.
1: That was such a beautiful track, जी हाँ, bringing back some lovely souvenirs. कुछ याद आया आपको? बिल्कुल, मुझे तो बहुत सारी चीजें याद आ गई. 1994 में खींच के ले गई है मुझे ये खूबसूरत सा गाना, taken from the movie Bombay, Remo Fernandez की आवाज में. एक हो गए हम और तुम. जी हाँ, and I can clearly see the

उस टाइम तो हम आपसे पूछ रहे थे कि वो लड़की कौन है जो आपके दिमाग में है और जो आपने पसंद भी कर लिया, लेकिन अभी जो लड़कियां ना वो थोड़े गुस्से हो गए, बोलते क्या बात है सिर्फ लड़कों के बारे में आप बात कर रहे हैं, हम भी तो पसंद करते हैं, तो सपने में कौन मिलने आ जाता है आपसे, ये तो आपको ही पता है। एंड द वीकेंड इज हियर, सो मेक अ प्लान, मेक एन एफर्ट कि आप उनके साथ मिले, अपनों के साथ अच्छा सा वक्त बिताए। जब भी आते हैं, एक्चुअली जब भी ये मौका आता है ना, वीकेंड आते हैं ऑन आवर एंड टू रेडियो मस्ती, हम ढेर सारा प्यार, ढेर सारी खुशियां भी लेकर आते हैं बांटने के लिए म्यूजिक के जरिए। तो चलिए जी, बस यूं ही साथ देते रहना और आवर एंड टू रेडियो मस्ती को सुनते रहना। एंड आज इट्स फ्राइडे टुडे, हम आपको विश करेंगे हैव अ हैप्पी वन, अ वेरी लवली वन अपनों के साथ। और मैं इजाज़त इस वक्त के लिए मांग रही हूँ क्योंकि हम वापस आएंगे 4 बजे से लेकर 7 बजे तक इन योर फ्राइडे मैशअप विद सम लवली, बहुत ही धमाकेदार नॉन स्टॉप बॉलीवुड म्यूजिक जस्ट टू मेक योर लवली वीकेंड अ बेटर वन। सो द वीकेंड वाइब्स इज हियर, सो लेट्स ऑल फील इट। थैंक यू सो मच साथ देने के लिए।

0: HRM2 Radio Masti.
1: The time is brought to you by McDonald's.
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee. Share the taste. Share happiness.
0: Radio Masti.
3: North. South.
0: 103.5.
3: East. West.
0: 96.4.
3: Center.
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
5: Time check 2 p.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है याचना. आपको नमस्कार.
6: नमस्कार परी. सभी सुनने वालों को भी नमस्कार. सुनिए संक्षिप्त समाचार. क्यूपिप की पुलिस मिडलैंड्स के एक रंच में एक व्यक्ति की मौत पर जांच कर रहा है. 40 साल के जोनाथन कुयाम टू का शव कल उस रंच की पार्किंग में उसकी गाड़ी के बगल में मिली. उसके पेट पर गोली लगी थी. उसका शव परीक्षण किया जाएगा. इस हादसे के सही कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस ने एक जांच शुरू की है. वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत हो चली है. कल मेक्सिको के अस्टेका स्टेडियम में औपचारिक समारोह लगा. इस रंगारंग कार्यक्रम में करीब 80,000 दर्शकों ने भाग लिया. इस वर्ल्ड कप के लिए 3 उद्घाटन समारोह निर्धारित हैं, जिनमें से पहला कल मेक्सिको में लगा और दूसरा आज दूसरे मेजबान देश कनाडा में निर्धारित हैं. वर्ल्ड कप की बात करते हैं. कल मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला हुआ. ग्रुप ए का पहला मैच स्कोर रहा 2-0, जिसमें मेक्सिको की जीत हुई. इसके अलावा ग्रुप ए में ही दक्षिण कोरिया ने चेक रिपब्लिक को 2-1 से परास्त किया. आपको याद दिला दें कि एमबीसी प्ले एप्लीकेशन पर आप ₹300 में वर्ल्ड कप की सभी मैच देख पाएंगे. इसके लिए विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं. आज रात बोस्निया और कनाडा की टीमें आपस में टकराएंगी. मैच का सीधा प्रसारण आज रात 11 बजे किया जाएगा. इससे पहले मेजबान देश कनाडा में रात 8:30 से उद्घाटन समारोह आप देख पाएंगे. विदेश की खबरों में थाईलैंड शोक में डूब गया है. वहां की राजकुमारी का निधन 47 साल की उम्र में हो गया है. 2 साल पहले वे दिल की बीमारी के कारण अचानक बेहोश हो गई थी और तब से कोमा में थी. वे थाईलैंड के राजा की 7 संतानों में से सबसे बड़ी और पहली उत्तराधिकारी भी थी. इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए. आपके ध्यान के लिए धन्यवाद. हमें आज्ञा दीजिए. नमस्कार.
0: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: musty in your life. Radio musty. All the way. The latest news and the greatest mix of music. Radio Musty.
1: Radio Musty.
0: RM2.
1: Radio Musty.
2: तो चलिए दोस्तों 2:03 और आपका वेलकम करते हैं हम ऑन द वेव्स ऑफ RM2 रेडियो मस्ती। जैसे कि आप जानते हैं आपके लिए एवरीडे कुछ खास कुछ स्पेशल हम लेकर आते हैं और काफ़ी टाइम से हम बात कर रहे हैं हमारे एक एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है MBC Play, जो आपको बहुत सारी सुविधाएँ देता है। यानी कि बस मोबाइल एप्लीकेशन है ये, जिसमें आप घर बैठे बैठे या फिर आप कहीं पर भी हो आप कनेक्टेड रह सकते हैं हमारे MBC के प्रोग्राम्स के साथ। और अभी तो वर्ल्ड कप का सीजन है और आज भी हमारी टीम पहुंच चुकी है कहीं खास। सो वी हैव पूनम जी जो लेकर आई हैं सारी अपडेट्स। हेलो हेलो हेलो पूनम जी।
3: हेलो।
2: हां जी। हेलो हेलो जी पूनम जी।
3: अरे आप सुन सकते हो।
2: हां जी बिल्कुल
3: बिल्कुल। थैंक यू। अरे भाई क्या बात है, यहाँ पर जो इतनी एक्साइटमेंट हो रही है ना परी, मैं आपको बता नहीं सकती। हम यहाँ पर कितना खुश हो रहे हैं क्योंकि इस टाइम मैं लाइव हूँ यहाँ पर रोजिल में, रोजिल के जो मेट्रो स्टेशन के नीचे हम लोग खड़े हुए हैं और हमारी पूरी टीम यहाँ पर है। मतलब यहाँ पर एक एक जना है और यहाँ पर जितने लोग हैं मतलब उनके एक्साइटमेंट देखने को है, क्योंकि एक तो उनको पता चला है कि पूरी MBC ने एक बहुत ही प्यारा सा हमारा एप्लीकेशन लॉन्च किया है, उसका तो उनको एक्साइटमेंट है। उसके साथ में जो है कि जो फुटबॉल लवर्स हैं उनकी तो बस बात ही मत कीजिए, वो तो कह रहे हैं कि हमको कुछ भी पहले उपाय बताए कि हम घर में बैठे बैठे कैसे अपने ही घर पर पूरे मैचेस देख सकते हैं। तो यहाँ पर इनकी एक्साइटमेंट को देखते हुए लग रहा है मुझे कि थोड़ी देर के बाद यहाँ पे बहुत बड़ी क्यू लगने वाली है। और वो जहाँ पर सिर्फ ये नहीं है कि यंगस्टर्स हैं, यहाँ पर हर तरह की एज वाले लोग हैं और वो यही कह रहे हैं कि हमें यहाँ पर बस बताइए कि किस तरीके से इजी एप्लीकेशन हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बता दूँ पर यहाँ पर कि यहाँ पर मॉरिशस में जो फुटबॉल लवर्स का जो कमी तो बिल्कुल नहीं दिख रही है और हमें लग रहा है कि यहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप 2026 का मज़ा लेने के लिए सब बैठे हुए हैं। और सबसे पहले हम आपको यही बोलेंगे परी कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनका एक्साइटमेंट तो है, उसके साथ में जो आप सबको मतलब जो भी घर में इस समय लिसनर्स सुन रहे हैं उनको MBC Play 1.0 एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, तभी आप 104 मैचेस देख सकेंगे। और साथ में यहाँ पे 48 जो टीम्स हैं, जो वर्ल्ड की सबसे नंबर वन टॉप पे जो टीम्स हैं और जो सभी लोग हैं एक से बढ़कर एक है, उनका जो एक्साइटमेंट है क्योंकि उनको भी तो जीतना है ना, तो यहाँ पर वो लोग भी जुड़े हुए हैं। हम चाहेंगे कि आप डाउनलोड कीजिए, आपके अगर आपका फ़ोन है, अगर आपके पास टेलीविजन है टेलीविजन में भी आप कर सकते हैं, उसके साथ में अगर आपके पास लैपटॉप है उसमें भी आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको सिर्फ एक सिंपल सी चीज़ करनी है, बहुत ही ईजी है ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना, उसमें आपको अकाउंट क्रिएट करना है। जब लॉग इन करेंगे तो उसके अंदर आपको एक टीवी का ऑप्शन आएगा जहाँ पर उसमें आपको जाना है, उसमें न्यू वर्ल्ड टीवी का जो ऑप्शन मिलेगा उसे सिलेक्ट कीजिए। उसके अंदर सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट करने के लिए आपको सिर्फ पे करना होगा 300 रुपीज़। अपनी पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं, अपने दोस्तों को बुला सकते हैं, पार्टी शार्टी कर सकते हैं। और मैं कहती हूँ कि जब आप रिचार्ज करेंगे तो उसमें एक पेमेंट का ऑप्शन आएगा जहाँ पर आपको करना है जूस या ब्लिंक, या आपको पॉप से आप पेमेंट कर सकते हैं, या अगर बैंकिंग कार्ड का ऑप्शन आता है तो आपके अंदर उसके अंदर आपको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड ऑप्शन यूज़ करना है। उसके बाद आपकी खुल जाएगी फुटबॉल की दुनिया जहां फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सारे मैचेस देख पाएंगे। और सबसे बात अच्छी बात ये है ना कि टीवी जब सामने होता है तो उसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं होती है घर में खाना पकाने के लिए, क्योंकि टाइमिंग बड़ा ही थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि जहां पर ये मैचेस हो रहे हैं वहां पर रात हो रही दिन हो रहा होगा, हमारे यहां पर रात हो रही होगी, तो सभी लोग अपने अपने घरों में बैठ के आराम से देख पाएंगे। तो मैं तो यही कहूंगी कि एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, उसके साथ में एंजॉय कीजिए फीफा वर्ल्ड कप। परी आपकी तरफ।

0: RM2
1: Radio Musti.
2: भैया हम आ चुके हैं रोजिल मेट्रो स्टेशन पर. फुटबॉल का फीवर साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर और कई लोग यहाँ MBC प्ले 1.0 एप्लीकेशन डाउनलोड कराने आ रहे हैं क्योंकि सभी लोगों को लग रहा है कि ये एप्लीकेशन होगा तो वो देख पाएंगे इजीली फीफा वर्ल्ड कप 2026, जो कि सब पूछ रहे हैं कि भाई कैसे चलेगा, कहाँ से चलेगा, क्योंकि हम तो काफ़ी दिनों से सबको बोल रहे थे डाउनलोड कर लीजिए, बट क्या हो रहा था कि सब लोग इतनी जल्दी नहीं क्विक कर पाते हैं. और वैसे तो यंगस्टर्स तो ये चीज़ें बहुत जल्दी समझ पाते हैं, बट जब बात आ जाती है थोड़ी सी एज में आ जाने के बाद, क्योंकि भाई फीवर तो वैसे ही रहने वाला है ना, जल्दी उतरने वाला नहीं है. तो हमने तो सबको पहले बोला था, बट नहीं अगर हुआ तो कोई बात नहीं. अभी बहुत सारे ऐसे जो हैं जो दिल से जवान हैं वो लोग आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि क्या ये किस तरीके से ऑप्शन होगा, कैसे हम इसको देख सकते हैं इजीली वर्ल्ड कप को हमारे फ़ोन पे या टैबलेट पे या घर के टीवी पे इजीली, क्योंकि कभी भी हमारे जो कहते हैं ना ओल्ड लोग तो हैं बट दिल से जवान हैं, वो लोग कह रहे हैं कि अगर हम टीवी पे देख पाएंगे तो हमारे बच्चे भी देख पाएंगे. एक बार पेमेंट करने से उनके लिए भी ईजी है और सब लोग आराम से इस चीज़ को देख पाएंगे. और कहते हैं ना कि सुबह सुबह जब वर्ल्ड कप चल रहा होता है तो सबसे पहले नज़र होती है स्कोर पे कि भाई कौन जीता, किसने मैच जीता, क्या डिस्कस होता है, परिवार सारी बैठ के एक पूरी टीम की बात करते हैं भाई किसने अच्छा खेला, कैसे खेला. तो ये फुटबॉल का असली एक्साइटमेंट तो होता है, बट मैं सबको ये बताना चाहूंगी कि अगर ये वर्ल्ड कप का जो एक्शन है MBC प्ले जो है उसमें आप डाउनलोड कर लीजिए ये जो एप्लीकेशन है और ये इसमें आप देख पाएंगे 104 मैचेस. कई सारे मैचेस तो है कि जो MBC आपको घर पे दिखा रहा है, पर सारे मैचेस तो नहीं दिखा पाएंगे. पर इसीलिए आपको थोड़ा सा बस करना होगा, आपको जाना होगा एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, अकाउंट क्रिएट करना होगा, वहाँ पर एक प्यारा सा TV सेक्शन होगा, बस उसके अंदर जाइए, न्यू वर्ल्ड TV ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए और सब्सक्रिप्शन लीजिए, जहाँ पर बहुत ईजी है 300 रुपीज में आप सारे मैचेस भी देख पाएंगे और सारे टीम्स को देख पाएंगे. और कहते हैं ना दिन और रात का जो डिफरेंस है उसको बराबर हो जाएगा, क्योंकि स्कोर्स कहते हैं कि एक्साइटमेंट तो देता है और बस ये एहसास दिलाता है कि कोई हमारे साथ दिल से जुड़ा हुआ है. तो हम सारे हमारे वर्ल्ड कप के जितने भी जो चैंपियंस बनेंगे उनके साथ रहेंगे और साथ साथ एक्साइटमेंट ये रहेगी कि आपको पूरी MBC टीम यहाँ पर मेट्रो स्टेशन के जो रोजिल का है उसके नीचे मिलेगी. वहाँ पर अगर आपको किसी भी तरीके से डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है एप्लीकेशन को तो आप यहाँ आ जाइए, घर में मत बैठिए बस, क्योंकि बहुत सारे मैचेस, कल तो एक मैच खेला गया था और आज भी एक मैच है, तो आपको यहाँ पर पहले थोड़ा सा डाउनलोड करना सीख लीजिए. आप सिर्फ आपको घर से लेकर आना है अपना एक पासवर्ड. अगर आपको कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पासवर्ड की प्रॉब्लम आ रही है, उनको नहीं पता चल रहा, तो आप बस अपने परिवार से पूछ कर आइए कि आपके पास जो पासवर्ड है कौन सा वाला पहले से डाला हुआ था आपके फ़ोन पे, बस वो लेकर आइए, आपका हम यहाँ पर डाउनलोड करके देंगे. और अगर आपको कैश पेमेंट करना है तो आप यहाँ पे जिस तरीके से ऑप्शंस हैं वो चुन सकते हैं. और आपको सिंपल सा एक बहुत ही प्यारा सा आपको बता रहे हैं जो भी फुटबॉल लवर्स हैं, क्योंकि फुटबॉल तो सभी को पसंद होता है, क्योंकि ये टाइम ही ऐसा है, क्योंकि वर्ल्ड कप है भाई है, तो आपको आना है यहाँ पर पूरी MBC की टीम को बस बताना है कि आपको कहाँ कौन सी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, तो आप बताइए, हम आपको उसको इमीडिएटली ठीक करके देंगे और आप घर पे बैठ के अपने मैच को देख पाएंगे. तो इन्जॉय कीजिए तब तक ये गाना.
0: Radio Musti.
3: Alkori Fashion, the best one-stop wedding destination.
4: Mais oui, on a lehenga poudouline, lacha, crop top, chelvani, jutpuri, sari, costume, blazer poudoula. Enfin, on a zis tout pour toute la famille.
3: Monsieur, madame, zanvan, ze tout pougain, ze lise-lilaise, poil moyaz, abanbri imbattable.
4: Alkori Fashion, de nous écoute la famille, une élégance extraordinaire.
3: Alkori Fashion, route royale, vis-à-vis Jordan Moblemus.
1: RM2
0: Radio Musti.

कप के जो मुकाबले हैं, जैसे कि मैक्सिको ने साउथ अफ्रीका को 2-0 से हराया, जबकि साउथ कोरिया ने चीका को 2-1 से मार दिया। और दोस्तों अभी वर्ल्ड कप का सफ़र जो है ना शुरू हुआ है और रोमांच बहुत ही मुकाबले का रोमांचक लगने लगा है। और यह लग रहा है कि यहाँ पे जो इनका इंतज़ार है, ये जो लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं और पूछ रहे हैं कि कैसे हमारा जो MBC प्ले 1.0 कैसे डाउनलोड होगा, उनका आज मुझे लगता है सारे लोग आके डाउनलोड करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग इस समय हैं रोजिल में, रोजिल के मेट्रो स्टेशन के नीचे हमने अपना पूरा सेटअप लगाया। यहाँ पर MBC की पूरी टीम जुड़ी हुई है, साथ में वो ये भी बोल रहे हैं कि अगर यहाँ पर इनको ईजी हो जाएगा तो ये आज रात का जो कि मैच है होने वाला, वो इसको लाइव देख पाएंगे और अपनी पूरी टीम को सपोर्ट कर सकेंगे। तो हम भी आपको यही कह रहे हैं कि आप बिल्कुल टाइम ना लगाएं, MBC प्ले में जाएं और 1.0 डाउनलोड कीजिए, जहाँ पर आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। वहाँ पर TV सेक्शन में जाइए, जहाँ जो लोग भी घर पे हैं जिनके पास जूस है या ब्लिंक है या पॉप्स है, वो घर पे ही कर सकते हैं, उनको आने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको सिर्फ इतना करना है कि MBC प्ले 1.0 डाउनलोड कीजिए और साथ में अकाउंट क्रिएट कीजिए। वहाँ पर एक TV सेक्शन दिखेगा आपको, वहाँ पर उस सेक्शन के अंदर जाके आपको न्यू वर्ल्ड TV ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। जो सब्सक्रिप्शन आपको होगा वो 300 रुपीज़ के आसपास होगा, जहाँ पे आप जैसे ही उसे करेंगे तो जब पेमेंट हो जाएगा तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा सारे मैचेस को देखना, क्योंकि 104 मैचेस हैं और जो कि फीफा वर्ल्ड कप में होंगे और जो ये रोमांचक मोमेंट है कोई भी मिस नहीं कर पाएंगे, और आपकी जो फेवरेट टीम है उसको सपोर्ट तो कर पाएंगे, साथ में इंजॉय भी कर सकेंगे। क्योंकि हो सकता है कि आपके पेरेंट्स ये फुटबॉल देखते रहे हों और अब उनको पता ना हो कि वो भाई फुटबॉल आ गया है, तो आप उनको दिखा सकते हैं, उनके साथ बैठ सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। और यही टाइम है थोड़ा सा अपने पेरेंट्स के साथ में, थोड़ा सा फैमिली के साथ में, इंजॉयमेंट के साथ में थोड़ा सा, बस आपको सिर्फ MBC प्ले 1.0 एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। इंजॉय कीजिए अपने इस गाने को।

0: RM2 Radio Masti.
1: क्या बात है, 2:35 हो चुके हैं और यहाँ पर तो बहुत एक्साइटमेंट जो हमारी है. तो घर से तो हम निकले थे बड़े आराम से कि ठीक है छोड़ो हल्का फुल्का सा होगा, पर यहाँ पर तो स्कूल के बच्चे और सारे जितने भी शॉप्स के लोग हैं वो भी पूरी MBC टीम को देखने के आ चुके हैं और RM2 रेडियो मस्ती को भी बहुत ही पसंद कर रहे हैं क्योंकि उनके गाने भी इतनी ज़ोर ज़ोर से चल रहे हैं, कह रहे हैं क्यों ना हम भी डांस कर लें. तो यहाँ पर बहुत सारे लोग अपनी मस्ती के साथ में इंजॉय कर रहे हैं और साथ में अपने फ़ोन लेकर आए हैं. एक सर तो भी मुझे मिले लिसनर्स कि वो कहते हैं कि 3 साल से मेरा ये टैबलेट पड़ा हुआ है, कहीं धक्के खा रहा था, रो रहा था और वो कह रहा है कि आज कोई वर्ल्ड कप दिखा दो. तो भाई हमने भी बोला इतनी देर क्यों लेकर लगाई, आपने जल्दी आ जाना था. तो भाई यहाँ पर माहौल बहुत ही एक्साइटिंग है. कई लोग बोल रहे हैं कि जैसे एक ही परिवार के लोग आए हैं और बोल रहे हैं कि भाई मुझे तो ब्राज़ील पसंद है, कोई कह रहा है मुझे जर्मनी पसंद है, कोई कह रहा है फ्रांस, तो कोई कह रहा है पोर्चुगल. तो भाई सबके घरों में यही हाल होगा इस टाइम क्योंकि सब लोगों को अलग अलग से मैचेस देखना पसंद है. कईयों की डिस्कशन भी अपने घर में शुरू हो गई होगी, यानी कि चाय के साथ साथ में साथ साथ कह रहे होंगे कि भाई स्कोर्स क्या था रात का और सरप्राइज कौन देने वाला है. तो मुझे लगता है वर्ल्ड कप का जादू पूरी दुनिया में छा गया है और आज ये पूरे परिवारों को जोड़ने वाला है क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग टाइमिंग्स पे काम करते हैं. भाई कोई नाइट ड्यूटी पे है तो कोई मॉर्निंग ड्यूटी पे है, कोई शाम को आ रहा है तो कोई कह रहा है भाई जल्दी जल्दी कुछ बना लो और रात को हमने देखना है मैच क्योंकि टाइमिंग बड़ा डिफरेंट है. तो इसीलिए सारे जने यहाँ पे आ रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई हमें आज का मैच बिल्कुल मिस नहीं करना है और आने वाले सभी मैचेस को इंजॉय करना है. पूरे परिवार सब लोग इंजॉय कर रहे हैं और सब यही कह रहे हैं कि आसान हो जाएगा हमारे लिए अगर MBC Play 1.0 एप्लीकेशन हमारी डाउनलोड हो जाए हमारे फ़ोन पे. तो हम जहाँ पे अगर शॉप चला रहे हैं तो शॉप पे हम आराम से देख पाएंगे, अगर हम घर पर हैं तो घर पर. और पेरेंट्स हैं जिनको जो बहुत फुटबॉल लवर्स हैं उनको बहुत ही पसंद था कभी और वो कह रहे हैं कि हो सकता है वो लोग भी थोड़ी सी ज़िंदगी को इंजॉय कर लें अपने ही फुटबॉल मैच के साथ में. तो आपको भी हम इतना ही बोलेंगे लिसनर्स कि आप ये बिल्कुल मत मिस कीजिए, बहुत ही प्यारा चांस है, आपको थोड़ा सा जीने को और मिलेगा हंसते खेलते मुस्कुराते अपने फैमिली के साथ में. तो आपको सिर्फ इतना करना है अपनी एप्लीकेशन जहाँ पे भी आप डाउनलोड करते हैं वहाँ से एप्लीकेशन स्टोर पे जाइए, वहाँ से MBC Play 1.0 डाउनलोड कर लीजिए. वहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना है आपको, उसमें पासवर्ड डालना पड़ेगा आपको और उसके अंदर ही TV सेक्शन दिखाई देगा जहाँ पे न्यू वर्ल्ड TV ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट करना है. वहाँ पर आपको 300 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे.

चाहे आप उसको जूस के थ्रू पे कर सकते हैं, पॉप के थ्रू कर सकते हैं, ब्लिंक के थ्रू पे कर सकते हैं, इजी रहेगा जो जिनके पास ये ऑप्शंस हैं, जिनके पास क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी है या डेबिट कार्ड की आप वो भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, और जिनको यहाँ आकर यानी कि रोजिल मेट्रो स्टेशन के नीचे हम लोग सारे खड़े हुए हैं, हमारी पूरी एम्बेसिटी टीम है, अगर आपको यहाँ पे कैश पेमेंट करना है और एक्टिवेट कराना है तो वो भी कर सकते हैं। और मैं तो कहती हूँ बहुत ही ज़्यादा रोमांच हो रहा है, वर्ल्ड कप का तो है ही है, साथ में वो लोग बहुत खुश हो रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे सारे जो गाने हैं, रेडियो है।

एमबीसी जो हमने 1.0 एप्लीकेशन बनाई है और वो कह रहे हैं हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया क्योंकि कई बार हमारे साथ रेडियो नहीं होता था, अब रेडियो और टीवी हमारे हाथों में है क्योंकि सबके पास ही मोबाइल फोन्स हैं। तो चलिए भाई इंजॉय कीजिए आपके गाने और साथ में हम आपको बार बार पल पल की खबर देते रहेंगे कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। तो आप इंजॉय कीजिए ये गाना, बट इतना ज़रूर बोलूँगी कि जल्दी से फटाफट से एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए।

0: RM2
1: Radio Musti. यहाँ पर हम लोग हैं रोजिल मेट्रो स्टेशन के जहाँ पे नीचे, और वहाँ पर पूरी RM2 रेडियो मस्ती की टीम है, हमारी पूरी MBC की टीम है, क्योंकि यहाँ पर देखने को मिल रहा है सभी लोगों का एक्साइटमेंट जो कि है फीफा वर्ल्ड कप 2026 का। भाई कहते हैं ना कि भूत चढ़े तो चढ़े, और ऐसा फीवर तो बस कि मैं कहती हूँ कि यहाँ पर बच्चे, जो स्कूल के बच्चे हैं, जब उनकी छुट्टी हुई होगी उन्होंने भी देखा कि सारी यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं, तो क्यों खड़े हुए, आ गए। और हमने उनसे सिर्फ इतना ही पूछा, भाई आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई कोई कह रहा है कि पोर्चुगल को, कोई कह रहा है अर्जेंटीना को, कोई कह रहा है कि ब्राज़ील को, कि भाई कौन ट्रॉफी लेकर जाएगा। तो मुझे भी एहसास है कि सभी को थोड़ी सी उम्मीदें होती हैं अपने फेवरेट टीम के लिए। तो आपको भी अगर अपनी फेवरेट प्रेडिक्शन करना चाहते हैं तो कीजिए, पर अपनी टीम को सपोर्ट ज़रूर कीजिए। टीम को जिताना है तो बस आपको सबसे पहले करना होगा MBC प्ले पे जाके, आपको वहाँ पे अपने प्ले स्टोर में जाके MBC 1.0 डाउनलोड करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्ल्ड कप आपको देखना है या आपको रेडियो सुनना है यहाँ पर सारे, क्योंकि वर्ल्ड पूरा ही कहते हैं कि मॉरिशस में जहाँ जहाँ लोग जाके बसे हैं वहाँ पे सभी लोग पसंद करते हैं अपने लोकल चैनल, अपने लोकल टीवी को सुनना या देखना। और वो कहते हैं कि रेडियो में जो सारी इंफॉर्मेशन आती है, न्यूज़ आती है, अपनी कंट्री के बारे में उनको जानना होता है। तो इस समय अगर बाहर से भी हमें कोई लोग सुन रहे हैं तो हम आपको यही कहेंगे कि आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, MBC Play 1.0 एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, जहाँ पर आप सुन सकेंगे। यहाँ पर देखिए एक्साइटमेंट इतना ज़बरदस्त है, सारे लड़के यहाँ पर बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनको बस ये डाउनलोड करनी है एप्लीकेशन, जिससे वो आज रात का जो मैच है मिस ना करें और वो देख सकें कि सुबह कौन जीतने वाला है और कौन हारेगा। और सभी, मुझे लगता है, उम्मीद है कि सबकी प्रेडिक्शन अच्छी ही रहेगी, क्योंकि सभी को अपनी टीम को सपोर्ट करना है। पर हम तो इतना ही आपको कहेंगे कि आप MBC Play 1.0 अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, उसके अंदर अपना अकाउंट क्रिएट करें, जहां पर अपने परिवार से पूछ सकते हैं कि साइन इन कैसे करना है, जो अगर कोई बच्चे हैं तो उनसे पूछ लीजिए, हेल्प ले लीजिए। और यंगस्टर्स को तो सभी को पता होता है, उन्होंने तो अब तक सभी ने कर लिया। यहाँ पर इस समय 400 या 500 बच्चे खड़े हुए हैं और बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ प्लीज़ हमारे को बताओ कि कैसे करना है। तो चलिए भाई, यही तो एक्साइटमेंट होती है कि वर्ल्ड कप है, और फुटबॉल लवर्स तो कहाँ जाएंगे, कहीं नहीं जाने वाले। तो इन्जॉय कीजिए अपने गानों के साथ में। मैं हूँ आपके साथ पूनम, हमारी पूरी टीम के साथ आप मिलने आ सकते हैं। अपने अगर आपको कैश पेमेंट करनी है और आपको आज मैच मिस नहीं करना है, क्योंकि पूरे 104 मैचेस होंगे जो कि आपको देखने हैं और आपको सपोर्ट करना है, और उसके साथ में 48 टीम्स, अरे क्या बात है, मतलब इतना मस्त रहने वाला है ये वर्ल्ड कप। तो बस एंजॉय कीजिए, अपनी प्रेडिक्शन कीजिए, उम्मीदें रखिए कि आपकी ही जो टीम है वो जीते। पर हम आपको यही कहेंगे, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा आज का मैच, एंजॉय कीजिए अपना ही गाना प्यार से।

0: The time is brought to you by McDonald's.
1: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
0: And RKG Classic Pure Cow Ghee. Share the taste. Share happiness.
2: Radio Musti.
3: North. South.
4: 103.5.
3: East. West.
4: 96.4.
3: Center.
4: 99.4.
5: RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
5: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
6: Time check 3 PM. सुनते हैं देश विदेश की खबरें याचना से. आपको नमस्कार.
7: नमस्कार परी. सभी सुनने वालों को भी नमस्कार. सुनिए संक्षिप्त समाचार. वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत हो चली है. कल मेक्सिको के एस्टेका स्टेडियम में औपचारिक समारोह लगा. इस रंगारंग कार्यक्रम में करीब 80,000 दर्शकों ने भाग लिया. इस वर्ल्ड कप के लिए 3 उद्घाटन समारोह निर्धारित हैं. हर एक मेजबान देश में एक उद्घाटन समारोह किया जाएगा. पहला कल मेक्सिको में लगा, दूसरा आज कनाडा में निर्धारित है. कल मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला हुआ. ग्रुप ए का पहला मैच स्कोर रहा 2-0, जिसमें मेक्सिको की जीत हुई. इसके अलावा ग्रुप ए में ही दक्षिण कोरिया ने चेक रिपब्लिक को 2-1 से परास्त किया. इस वर्ल्ड कप को और ज़्यादा खास बनाने के लिए और जनता तक उसकी पहुंच को आसान बनाने के लिए MBC प्ले एप्लीकेशन पर आप ₹300 में पूरा वर्ल्ड कप यानी वर्ल्ड कप की सभी मैच देख पाएंगे. इसके लिए मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन द्वारा विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं. एक कॉल सेंटर स्थापित किया गया है जहाँ पर लोग फ़ोन करके जानकारियां मांग पाएंगे. इसके अलावा कुछ लोग MBC भी आ रहे हैं जहां पर इस एक डेस्क डाला गया था जहां पर इस एप्लीकेशन के लिए लोगों को मदद दी गई. आज रात बोस्निया और कनाडा की टीमें आपस में टकराएंगी. मैच का सीधा प्रसारण आज रात 11 बजे किया जाएगा. इससे पहले मेज़बान देश कनाडा में रात 8:30 बजे से उद्घाटन समारोह भी आप देख पाएंगे. क्यूपिप की पुलिस मिडलैंड्स के एक रंच में एक व्यक्ति की मौत पर जांच कर रही है. 40 साल के जोनाथन कुयामतू का शव कल उस रंच की पार्किंग में उनकी गाड़ी की बगल में मिली. उनके पेट पर गोली लगी थी. आज शव परीक्षण किया जाएगा. इस हादसे के सही कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस की जांच जारी रखी जा रही है. विदेश में थाईलैंड की राजकुमारी का निधन 47 साल की उम्र में हो गया है. पूरा देश शोक में डूब गया है. 2 साल पहले वे दिल की बीमारी के कारण अचानक बेहोश हो गई थी और तब से कोमा में थी. वे थाईलैंड के राजा की 7 संतानों में से सबसे बड़ी और पहली उत्तराधिकारी भी थी. इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए. आपके ध्यान के लिए धन्यवाद. आज्ञा दीजिए. नमस्कार.
4: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
5: RM2
2: Radio Musti.
5: Feel the Musti.

0: RM2 Radio Musti.
1: फीफा वर्ल्ड कप 2026 का जो एक्साइटमेंट है मुझे लगता है कि सिर्फ स्टेडियम तक बिल्कुल सीमित नहीं रह गया है। इस समय रोज हिल में हम मेट्रो स्टेशन के जो मेट्रो स्टेशन का है वहाँ पर हम खड़े हुए हैं। हमारी पूरी एम्बेसी की टीम है यहाँ पर और सारे जने एक्साइटेड हैं क्योंकि लोगों को देख रहे हैं हम यहाँ पर, क्योंकि कई लोग जो है अपने घरों से निकल कर बाहर आ गए हैं और कह रहे हैं कि एक तो हमें एम्बेसी की पूरी टीम को देखना था, दूसरा हमें बहुत सुनने को मिल रहा है कि एम्बेसी ने एक बहुत अच्छा एम्बेसी प्ले 1.0 एप्लीकेशन बनाया है, हमें वो समझ नहीं आ रहा कैसे डाउनलोड करना है। तो बहुत सारी आंटीज आई हैं और हमने बोला है कि चलिए भाई हम आपको सिखाते हैं कि किस तरीके से डाउनलोड करना है, और बहुत सारे अंकल्स भी आ रहे हैं और जुड़े हैं। देखिए यहाँ पर जो हॉर्न है ना वो इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग एक्साइटमेंट में हैं और क्रॉस करते हुए आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें भी बताइए कि कैसे आज का हम मैच मिस ना कर सकें। तो हम आपको भी ये बता दें, जितने भी लिसनर्स हमें अपने घरों में सुन रहे हैं या किसी भी कंट्री से सुन रहे हैं, हम आपको ये कह रहे हैं कि आपको बस सिंपल सा करना है कि आपको एम्बेसी प्ले 1.0 डाउनलोड करना है। आप अपनी जो आपके एप्लीकेशन जो स्टोर है उधर पर जाइए, वहाँ पे से ये एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, क्योंकि जो ये एप्लीकेशन है इंस्टॉल करना इजी है, बहुत इजी है, एक दो मिनट लगते हैं। आप इंस्टॉल करेंगे उसके अंदर आपको न्यू वर्ल्ड टीवी ऑप्शन एक्टिवेट करना है, जहाँ पर आप जो कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 ईजिली देख पाएंगे। और वहाँ पर सिर्फ आपको ऑप्शन आएगा 300 रुपीज़ का, आपको रिचार्ज करना है, चाहे आप जूस से कर सकते हैं, आप पॉप से कर सकते हैं, ब्लिंक से कर सकते हैं, या आपको क्रेडिट फैसिलिटी बैंकिंग सर्विसेज आएगी, या आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं या डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, तो उसको उस ऑप्शन को भी आप चुन सकते हैं। उसमें से अगर आपको लगता है कि आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आप हमारे यहाँ पर कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग एम्बेसी मोका पहुंच रहे हैं और वहाँ से डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं और हमारा स्टाफ सारा जुड़ा हुआ है उनके साथ में, चाहे फ़ोन्स के थ्रू हो चाहे आप आमने सामने हो। और यहाँ पर 402-8000 यानी कि आपको 402-8000 पर कॉल करना है और वहाँ पर आप जान सकते हैं कि अगर आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या आपको समझ नहीं आ रहा है या इजी कोई करना चाहते हैं तो आप कॉल कर लिए, पूरा स्टाफ वहाँ पर आपके साथ जुड़ा रहेगा। और मैं तो इतना कहूँगी कि ये जो उत्साह है ना इसको बिल्कुल कम ना होने चाहिए, इसको बढ़ाते चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो एक्साइटेड है फीफा वर्ल्ड कप 2026 देखने का और साथ में अपनी टीम को सपोर्ट और इन्जॉय करने के लिए। तो ये पूरा परिवार को जोड़ना और पूरे को एक कर देना, क्योंकि फुटबॉल लवर्स जो हैं उनका बस एक्साइटमेंट इतना हाई है क्योंकि उनको लग रहा है कि यही टाइम है जहां पर सब चीज़ें उनके हाथ में आ सकती है, क्योंकि अब इस समय एम्बेसी प्ले जो है हमारा अपने हमारे फ़ोन्स में है। कई लोग बाहर आके बता रहे हैं शॉप से कि हमें पहले पता ही नहीं था कि इतना ईजी हो गया है, हमने अपना सिर्फ बड़े बड़े टी वी हटा दिए, हमने सिर्फ वहाँ पर एक छोटे से स्टैंड पर अपना फ़ोन रख दिया और वहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं अपने रेडियो को। और कई लोग बता रहे हैं कि जब फीफा वर्ल्ड कप का स्टार्टिंग हो ही रहा है तो क्यों ना बड़े टीवी लगा दिया जाए और सब लोग एंजॉय करें। तो यही बात होती है कि हर किसी की अपनी अपनी सोच, अपने अपने तरीका, अपने एक्साइटमेंट जाहिर करने का एक तरीका है। तो जिस तरीके से भी आप एक्साइट करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, कीजिए। बट हम इतना बोलेंगे

0: RM2
1: रेडियो मस्ती।
2: इस टाइम हम हैं रोज हिल मेट्रो स्टेशन पे और लगातार लोगों का जो है क्राउड बढ़ता जा रहा है और सभी को एक्साइटमेंट है फीफा वर्ल्ड कप 2026 को देखने का, एंजॉय करने का और अपने पूरे परिवार के साथ। तो हमने भी यहाँ पर एमबीसी प्ले 1.0 एप्लीकेशन बनाया है जहाँ पर आपको जाना है, डाउनलोड करना है और इंजॉय करना है, चाहे हमारे रेडियोज़ हों, टीवी हो या किसी भी तरीके के जो भी आने वाले टाइम में फ्यूचर में किसी भी तरीके के इंट्रैक्शंस होंगे वर्ल्ड में। से आज जैसे हमारा फीफा वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है तो हमने ऑलरेडी शुरू हो चुका है तो उसके लिए भी बहुत एक्साइटमेंट है। तो यहाँ पर एक हमारे साथ लिसनर जुड़ी हुई हैं तो हम बात करेंगे उनसे कि क्या उनकी एक्साइटमेंट है। क्या नाम है आपका?
3: मिंता, मिंता सांगाया।
2: वेरी नाइस नेम। ओके, तो आप क्या यहाँ पर स्पेशली आज किस लिए आए हैं?
3: मैं यहाँ स्पेशल आया है क्योंकि मुझे फुटबॉल डाउनलोड करना है।
2: तो ये फुटबॉल डाउनलोड नहीं करना है, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, उसमें फुटबॉल देखना है। तो आज आपका फेवरेट कौन सी टीम कौन सी है?
3: मेरा फेवरेट टीम है फ्रांस।
2: फ्रांस, वाओ। तो आपको फ्रांस में कौन, आपका फेवरेट कौन सा है फुटबॉल प्लेयर?
3: रोनाल्डो, क्योंकि मेरा बेटा रोनाल्डो बहुत पसंद है।
2: आपको कौन सा पसंद है? ये तो मुझे पता है, सारे बच्चों को कोई ना कोई पसंद ही होता है, बट आपका कौन सा है फेवरेट?
3: रोनाल्डो।
2: इसीलिए उसे पसंद है क्योंकि आपको पसंद है, तो यही चीज़ होती है। और अब आपने, आपके लिए इजी रहा ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना या आप घर में इजी हो रहा था आपके लिए डाउनलोड करना?
3: नहीं, यहाँ इजी हो रहा। जो लोगों को फुटबॉल देखना चाहते हैं तो यहाँ आओ और अपने आप डाउनलोड करते हैं फुटबॉल ऐप।
2: अरे वाओ, तो यहाँ पर पूरी टीम ने आपको सपोर्ट किया, हेल्प किया?
3: हाँ।
2: तो आपने क्या, कौन सा ऑप्शन चूज़ किया था? कैश ऑप्शन चूज़ किया था या आपने क्रेडिट फैसिलिटी यूज़ किया था या जूस या पॉप या ब्लिंक, कौन सा एप्लीकेशन यूज़ किया?
3: जूस।
2: जूस से मुझे पता है क्योंकि काफ़ी लोगों के लिए इजी हो जाता है जूस ट्रांसफ़र करना, तो मैं भी समझ सकती हूँ। यही है कि एक्साइटमेंट देखने के लिए कि फुटबॉल लवर्स जो वर्ल्ड कप देखना पसंद करते हैं वो मिस नहीं करना चाहते कोई भी किसी भी तरीके का मोमेंट। तो आपको भी यही करना है कि एमबीसी प्ले 1.0 एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जहाँ पर आपको ऐप स्टोर पर जाकर, गूगल प्ले हो चाहे वावे एप्लीकेशन गैलरी हो, वहाँ पर आपको एमबीसी 1.0 डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, उसको सेटअप करना पड़ेगा। उसके लिए अगर आपको कोई मदद चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 4028000 पर। और अगर आपको यहाँ पर आना है रोज हिल मेट्रो स्टेशन तो यहाँ हमारी पूरी एमबीसी की टीम है जुड़ी हुई है जो लगातार हेल्प कर रही है। सभी लोग वन बाय वन करके आ रहे हैं और अपने, चाहे उन्हें कैश देना है चाहे उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो यहाँ पर पूरी टीम उनको समझा रही है इजीली। और बहुत सारे लोग मोका जा रहे हैं जो कि वहाँ

बाय वन करके आ रहे हैं और अपने चाहे उन्हें कैश देना है चाहे उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो यहाँ पर पूरी टीम उनको समझा रही है इजीली। और बहुत सारे लोग मोगा जा रहे हैं जो कि वहाँ पर पुराने प्रोग्राम्स अगर आपको दोबारा से सुनना है, रिकैप देखने या रेडियो सुनना है लाइव, तो हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आपको कोई किसी भी तरीके की न्यूज़ चाहिए तो आपको सारी न्यूज़ भी वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो हमारे सारा एमएस टीम यहाँ पर है रोजिल में, आप आ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। तो चलिए एंजॉय करते हैं आपके गाने। RM2 Radio Musti.

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio.

0: RM2
1: रेडियो मस्ती।
2: बोलो उसके लिए आज का दिन काफी एक्साइटिंग रहने वाला है। कल वर्ल्ड कप का शानदार आगाज हो चुका है। मेक्सिको ने साउथ अफ्रीका 2-0 से हराया और साउथ कोरिया ने कालचिका को 2-1 से मात दी। अब सभी की नजरें हैं आज के मुकाबले पर। आज कनाडा और बोस्निया आमने सामने होंगे, जबकि यूएसए एंड वर्ल्ड कप जर्नी की शुरुआत पैराग्वे के खिलाफ करेगा। तो फुटबॉल फैंस के लिए मुकाबले काफी खास माने जा रहे हैं। यहाँ रोजिल मेट्रो स्टेशन पर वर्ल्ड कप का जो है उत्साह काफी एक्साइटिंग हो गया है। बहुत सारे लोग अभी तक जुड़ चुके हैं और साथ में एमबीसी प्ले 1.0 एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए हम आपको कह रहे हैं कि आप डाउनलोड कीजिए, जहाँ पे आप रेडियो इजीली से सुन पाएंगे, यहाँ पर टीवी के जो भी प्रोग्राम्स हैं आप देख पाएंगे और साथ में आप जुड़ पाएंगे अपने ही टीवी के एक सेक्शन में से, जहाँ पर आपसे जुड़ा जाएगा आपको फीफा वर्ल्ड कप 2026 को, जहाँ पे कुछ भी मिस नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पर होने वाले हैं 104 मैचेस, जिसका एक्साइटमेंट सभी को बहुत ही हाई है, क्योंकि सबकी ही अपनी पसंद की कई काफ़ी सारी टीमें होती हैं और सबको लगता है कि हमारी टीम जीते। और मैं तो भी यही कहूँगी कि अगर आपका एक्साइटमेंट कम हो गया तो फ़ायदा नहीं होने वाला, इसलिए अपनी एक्साइटमेंट को हाई रखिए और अपनी एप्लीकेशन के साथ में जुड़िए, क्योंकि एमबीसी की ये हमारी कंट्री की एक प्राइड है, क्योंकि इस कंट्री ने इतना प्यारा एमबीसी प्ले 1.0 एप्लीकेशन बनाया है। इतना ब्यूटीफुल है, इसके कलर्स इतने प्यारे हैं और उसके अंदर आप देख सकेंगे कि आपको रेडियो मतलब बिना किसी भी प्रॉब्लम के आपको आराम से सुनाई देगा। आपको सारे जितने भी आपके फेवरेट सीरियल्स हैं किसी भी लैंग्वेज में आप देख पाएंगे आराम से। और यहाँ पर हम यही कहेंगे कि एमबीसी प्ले 1.0 एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, अकाउंट क्रिएट कीजिए, टीवी सेक्शन में जुड़े। अगर आपको मैच फीफा वर्ल्ड कप देखना है, न्यू वर्ल्ड टीवी का ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए, जहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं, चाहे आप जूस के थ्रू जुड़िए, उसमें आप पॉप से आप पेमेंट कर सकते हैं, ब्लिंक से पेमेंट कर सकते हैं, और साथ में अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पूरी एमबीसी टीम आपके साथ पल पल है, साथ साथ चल रही है। अगर आपको मौका जाना है तो आप मौका जा सकते हैं, अगर आपके आसपास मौका पड़ता है, अगर रोजिल के आसपास है, वाकवा में है, यहाँ जहाँ पर हैं, तो आप यहाँ रोजिल मेट्रो स्टेशन के पास आ सकते हैं।

0: RM2 रेडियो मस्ती की टीम है, मैं यहाँ पर हूँ, हमारी पूरी MBC की टीम आपके साथ जुड़ी है, हर तरह की सहायता करने वाले हैं। अगर आपको फिर भी कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कॉल कर सकते हैं 402-8000 पर, जहाँ पर आपको पूरी तरीके से आपको हर एक जानकारी दी जाएगी। आप घर में ही बैठ के जहाँ पर भी हैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन के साथ में आपको सहायता मिलेगी, जहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इजीली 2 मिनट में आपकी हर चीज़ आसानी से आपके हाथ में होगी, यहाँ तक कि आप रात को लाइव मैच देख पाएंगे। तो गोल की खुशी हो या लास्ट मिनट का ड्रामा, वर्ल्ड कप हमेशा साथ रहना चाहिए। ये सेलिब्रेशन हमारे साथ जोड़िए, अपने साथ यानी कि MBC प्ले के साथ, जहाँ पर भी हैं इंजॉय कीजिए अपने गाने।
1: RM2 रेडियो मस्ती।

0: RM2
1: Radio Musti. चलिए भैया, हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं रोज़ हिल मेट्रो स्टेशन के पास, और यहाँ पर बहुत ही एक्साइटिंग, लोगों की जो एक्साइटमेंट है बहुत ही हाई हो चुकी है, और वो ये सभी लोग कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप का टाइम है। और जो हमेशा नॉर्मली हमें सुनने को बात मिलती है कि अगले दिन सब लोग पूछते हैं, अरे कौन जीता, किसने खेला मैच, कैसा रहा, तो बस मैच की कहानी सुनने को बैठे होते हैं और कहते हैं अरे नहीं, हम मिस कर गए, हम देख नहीं पाए। और फिर बाद में यही होता है कि ये कैसे हो गया। तो बस हम आपको यही कहेंगे कि बिल्कुल भी आपको कहानी सुननी नहीं है, आपने मैच देखना है। अगर मैच देखेंगे तो आपको पता होगा कि आज क्या चल रहा है, हर मोमेंट की एक एक खबर होगी। अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप भी दे सकते हैं वो इंफॉर्मेशन कि भाई ये इस समय ये लोग जीत रहे हैं, वो टीम

0: हार रही है। तो हम भी आपको यही कहेंगे कि एमबीसी प्ले 1.20 एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। जो यहाँ पर लोग हैं, ये लोग बार बार सिर्फ यही पूछने आ रहे हैं कि हमें क्यों नहीं पता था इतने दिनों से कि ये एमबीसी ने ये एप्लीकेशन बनाई है, और हम फीफा वर्ल्ड कप को सुनना चाह रहे थे और देखना चाह रहे थे, पर हमें समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ डाउनलोड करें। तो आज आपने हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। तो हम भी आपको यही कहेंगे कि 48 टीम्स जुड़ी हुई हैं, 104 मैचेस, दुनिया के सभी टीम्स जो खिलाड़ी हैं शानदार मुकाबले के लिए उतर चुके हैं कल रात से, और वो भी अपने बहुत ही कहते हैं ना कि जब सारी टीम्स आमने सामने होती है और अपनी पूरी तैयारी से जुड़े होते हैं, और उस टाइम कोई ना कोई जब पूरे लोग सपोर्ट कर रहे होते हैं, हर कंट्री उनको सपोर्ट करती है, तो उनको और भी अच्छा लगता है। तो हम भी आपको यही कहेंगे कि एमबीसी प्ले 1.0 एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, अकाउंट बनाइए, टीवी सेक्शन में जाइए और न्यू वर्ल्ड टीवी ऑप्शन चुनिए, जहाँ पे आप देख पाएंगे वर्ल्ड कप 2026, और ये शानदार जो सफ़र है उसका आप हिस्सा बन पाएंगे, और आपको एक दिन कह पाएंगे कि हमने भी देखा था फीफा वर्ल्ड कप 2026। और आपकी अगर ये एप्लीकेशन में किसी भी तरीके से कोई इशू आता है, आपको नहीं समझ आ रहा कि आपको उसे डाउनलोड कैसे करना है, आप पर आपके पास, मैं आपको इतना ज़रूर बताऊंगी कि आपको आपके पास ईमेल एड्रेस ज़रूर होना चाहिए, और अपना उसका जो ईमेल एड्रेस है उसका पासवर्ड ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि कई लोग बहुत सारे आ रहे हैं यहाँ पर जिनको ये मुश्किल आ रही है, क्योंकि कई बार किसी ने किसी बेटे ने या बेटी ने कभी पेरेंट्स के लिए कुछ बना के दे दिया हो, तो यहाँ पर ये मुश्किल आ रही है कि आप अपने बच्चों से सिर्फ ये पूछ कर आइए कि आप हमारा पासवर्ड क्या था या हमारा जो ईमेल एड्रेस है वो क्या है, बाकी हम आप संभाल लेंगे, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर पूरी एमबीसी की टीम जुड़ी हुई है, आपको चाहे मोका की तरफ हो चाहे यहाँ रोजिल की तरफ हो, और लगातार हम आपको बता रहे हैं, फ़ोन पर भी पूरी टीम आपको बता रही है कि आपको किस तरीके से एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और वर्ल्ड कप देखना है या आपको टीवी देखना है या रेडियो सुनना है, तो सारी चीज़ें आपके हाथ में हैं। और अगर आपके पास है तो आप ये सोचिए कि आपके आने वाले सारे मैचेस भी आप आराम से देख पाएंगे और इन्जॉय कर सकेंगे पूरी परिवार के साथ। तो बिल्कुल एमबीसी आपके लिए आपके साथ है, आपके इस मैच के साथ में, और चाहे रेडियो है चाहे न्यूज़ है, कोई भी अपडेट है आपके पास लगातार मिलती रहेगी आपको इन्फॉर्मेशन। तो आपको सिर्फ डाउनलोड करना है एमबीसी प्ले 1.0। तब तक एंजॉय कीजिए अपने गाने।
1: OMG रेडियो मस्ती।
2: Qui peut arriver? T'as des allô au terrain, toi? Jesse, Foulon, Saucette, Moulton, Dité, Café?
3: Mais qui te met quoi? Mon panvi au jeu pour Coupe du Monde, moi. Mon Philippe Ron me dit STV Stream Code Mighty. Tous les 104 matchs, Exot Highlights, tout en anglais. 10 pour 390 roupies.
2: Hé, hey, mais moi, mon compte en suivi football en français.
3: Mais ça aussi, Mighty, Yena. Prends ton pack New World Sport, 10 pour 300 roupies. Vivez l'ambiance du stade directement dans votre salon avec Mighty. Abonnez-vous au DSTV Stream ou New World Sport selon votre préférence et profitez d'un mois gratuit et recevez un cadeau Panini. Appelez le 8902. Termes et conditions applicables.
2: Mighty? Mighty, c'est ça!
1: RM2
4: Radio Musty.

RM2. Radio Musty feels a musty.

0: Real Musty.
1: In the mix.
2: दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप 2026 का माहौल सच में बनना शुरू हो चुका है। मैं इस समय रोज हिल मेट्रो स्टेशन पर हूँ और लगातार लोग एमबीसी प्ले 1.0 एप्लीकेशन

0: उनके बारे में जानकारी लेने आ रहे हैं। और अभी कुछ देर पहले एक मैम आई थी यहाँ पे और उनके हाथ में बहुत सारे पॉपकॉर्न्स के पैकेट थे। मैंने हंसते हुए पूछा, इतने सारे पॉपकॉर्न्स किस लिए? तो उन्होंने कहा, वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, मैच देखते समय पॉपकॉर्न्स तो होना ही चाहिए। तो सच कहूँ दोस्तों, ये बात सुनकर तो मुझे भी हंसी आ रही थी। और वर्ल्ड कप सिर्फ फुटबॉल नहीं होता, ये पूरा एक्सपीरियंस होता है। फैमिली साथ बैठती है, बातें करती है, गप्पे मारते हैं और साथ में प्लान करते हैं कि भैया कौन जीता कौन हार रहा है। और सबकी अपनी अपनी टीम्स होती है। कई बार जो एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं ना, वो अपने बच्चों से पूछते हैं, भैया बताओ कौन सही खेल रहा है कौन गलत खेल रहा है। तो ये बातें चीज़ें एक दूसरे को सिखाते हुए चल रहे हैं। और यही टाइम है इस समय आपको अपने परिवार के साथ बैठ के थोड़ा सा टाइम बिताना है, स्पेंड करना है। और मुझे पता है डे एंड नाइट का डिफरेंस चल रहा है, क्योंकि ये प्रोग्राम जितने भी मैचेस चल रहे हैं वो रात के टाइम चल रहे हैं, क्योंकि जिस कंट्री में हो रहा है वहाँ पर तो मॉर्निंग हो रही है ना, और हमारे यहाँ हो रही है रात भर। वो बच्चों ने भी यहाँ पर बहुत सारे ट्यूशंस के बच्चे आए थे, वो बोल रहे थे कि हमको पढ़ाई करनी है, पर हमारे पेरेंट्स जो हैं बहुत एक्साइटेड है और हम बहुत खुश हैं कि हमको पढ़ने का टाइम मिलेगा, मौका मिलेगा, पर हमारे बच्चे पेरेंट्स जो है ये प्रोग्राम्स इंजॉय कर सकेंगे क्योंकि इस टाइम, क्योंकि उनको पता है कि उनके लिए स्टडी कितनी इंपॉर्टेंट है और पेरेंट्स के लिए मैच कितना इंपॉर्टेंट है। तो अगर फुटबॉल लवर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं MBC टीम के साथ, तो हम इतना ही कहेंगे कि आपको अपनी ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। रोजिल मेट्रो स्टेशन में अगर हम यहाँ पर हैं, अगर आपको किसी भी तरीके की कुछ भी इशू आ रहा है आपको डाउनलोड करने में, तो आप यहाँ आ सकते हैं। बिल्कुल जो भी आसपास है, चाहे आप रोजिल में हैं, चाहे वाकपा में हैं, चाहे आप ग्लेन पार्क साइड में हैं, कहीं पर भी किसी भी तरी जगह पे हैं, आप यहाँ पे आइए, आराम से पूछ लीजिए। बस आप पासवर्ड और अपना ईमेल एड्रेस लाना बिल्कुल मत भूलिएगा, और करेक्ट पासवर्ड लेकर आइएगा। तो फिर उसके बाद सारी जिम्मेदारी हमारी पड़ जाती है, क्योंकि हम आपको बिल्कुल ईजिली से करके देंगे कि आपको कहीं पर भी कोई इशू ना आए और शाम का जो मैच होने वाला है आप आराम से देख पाएँ। और इसके साथ में मैं आपको इतना ही कहूँगी कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कॉल कर सकते हैं 402-8000 पर, क्योंकि वहाँ पर पूरे हमारा MBC का स्टाफ बैठा हुआ है जो आपको एक एक पल पल की खबर तो दे रहा है और साथ में आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन आप हमें दे रहे हैं वो लोग सॉल्व कर सकते हैं आपकी प्रॉब्लम को। और आपके साथ में हम जुड़े हुए हैं इस टाइम पूरी टीम के साथ में। और सबसे स्पेशली इतना ही बोलूँगी कि बहुत सारे जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो इतना ही कह रहे हैं कि आज का मैच हम मिस नहीं करना चाहते, तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी हमारी एप्लीकेशन को सेट कर दीजिए जिससे हमारे कोई इशू को ना आए। तो कई लोग बहुत, एक तो अंकल आए, उन्होंने कहा कि क्या मैं TV लेकर आ सकता हूँ, तो इतना बड़ा TV मत लेकर आइए, आप अपना टैबलेट लेकर आइए, अगर आपका फ़ोन ला सकते हैं हाँ, बट हम आपको सिखा सकते हैं घर पर आप किस तरीके से करते हैं, बस आप आ जाइए और इन्जॉय कीजिए अपना मैच और साथ में ये गाने।
1: Radio Mastie in the mix. Radio Musty feels a musty in the mix.

0: ब्यूटीफुल एंड लवली लवली गानों के साथ स्पेशली आपका साथ हम दे रहे हैं ऑन आर एम2 रेडियो मिस्सी. फिलहाल के लिए जस्ट चेक योर टाइम, इट्स ऑलरेडी 4 पीएम.
1: आर एम2 रेडियो मिस्सी.
2: The time is brought to you by McDonald's.
3: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
2: And RKG Classic Pure Cow Ghee. Share the taste. Share happiness.
1: Radio Musti.
4: North. South.
5: 103.5.
4: East. West.
5: 96.4.
4: Center.
5: 99.4.
6: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
6: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti. Feel the Musti. The Musti.

0: आइए सुनते हैं समाचार याचना के साथ। नमस्कार।
1: नमस्कार गिनिशा, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। मॉरिशस में ऑनलाइन और इलेक्ट्रॉनिक धोखाधड़ी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ठग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैसेजिंग सेवाओं का इस्तेमाल कर लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। इस वर्ष की शुरुआत से अब तक फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन द्वारा शुरू की गई 57 धोखाधड़ी संबंधी जांचों में से 20 मामले इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड से जुड़े हुए थे। अब तक इन धोखाधड़ियों से होने वाले वित्तीय नुकसान का अनुमान 10 मिलियन रुपए से अधिक लगाया गया है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इन मामलों में अधिकांश पीड़ित बुजुर्ग लोग हैं, जिन्हें साइबर ठग आसानी से निशाना बना रहे हैं। क्यूपिप की पुलिस मिडलैंड्स में एक रंच में एक व्यक्ति की मौत पर जांच कर रही है। 40 साल के अकाउंटेंट जोनाथन कुयामटू का शव कल उस रंच की पार्किंग में उनकी गाड़ी की बगल में मिली। उनके पेट पर गोली लगी थी। वे रोजिल के रहने वाले थे। आज शव परीक्षण किया जा रहा है। इस हादसे के सही कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस ने एक जाँच शुरू की है। MBC Play एप्लीकेशन एक ऐसा एप्लीकेशन है जिस पर 300 रुपये में आप पूरा वर्ल्ड कप देख पाएंगे, यानी सभी मैच आप देख पाएंगे। मात्र इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फ़ोन पर आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अपनी टीवी पर भी, जो एंड्रॉयड टीवी आपके पास है उसमें आप सभी मैच देख पाएंगे। इस एप्लीकेशन को लेकर जिन लोगों को कठिनाइयाँ हो रही हैं उनके लिए MBC द्वारा विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं। एक कॉल सेंटर स्थापित किया गया है और साथ में आप यहां पर आकर इस पर ज़्यादा जानकारी भी हासिल कर सकते हैं और कठिनाइयों से भी बच सकते हैं। वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत हो चली। कल मेक्सिको के अस्टेका स्टेडियम में औपचारिक समारोह लगा। इस रंगारंग कार्यक्रम में करीब 80,000 दर्शक ने भाग लिया। इस वर्ल्ड कप के लिए 3 उद्घाटन समारोह निर्धारित हैं, जिनमें से पहला कल मेक्सिको में लगा और दूसरा आज कनाडा में निर्धारित है। आपको बता दें कि इन सारे मैचों की का सीधा प्रसारण आज MBC पर भी किया जा रहा है। विदेशी समाचारों में थाईलैंड की राजकुमारी का निधन 47 साल की उम्र में हो गया है। इससे पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। 2 साल पहले वे दिल की बीमारी के कारण अचानक बेहोश हो गई और तब से कोमा में थी। वे थाईलैंड के राजा की 7 संतानों में से सबसे बड़ी और पहली उत्तराधिकारी भी थी। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आगे दीजिए। नमस्कार।
2: Your news on MBC Play, MBC Radio.tv, MBC Radio.

0: RM2
1: Radio Musti. चलिए भैया हम आ गए हैं रे मेट्रो स्टेशन पे रोजिल पे और यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं वो ये सिर्फ जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, क्यों इतनी एक्साइटमेंट हो रही है. तो हमें भी एक्साइटमेंट हो रही है, जोश चढ़ा हुआ है क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप 2026 वही शुरू होने वाला है. कल रात से जो शुरू हुआ है उसका एक्साइटमेंट तो अभी तक हमें कम नहीं हो रहा, बट जो आने वाली आज रात को जो ये मैच होगा उसका तो एक्साइटमेंट होना ही चाहिए ना. तो हम भी यही आपको बोलते हैं जो भी फुटबॉल लवर्स हैं चाहे, और कई लोग ऐसे भी यहाँ पर आ रहे हैं वो लोग उन्होंने कभी, मैं कहते हैं ना कि बस पसंद से इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगता था उनको फुटबॉल, बट उनको लग रहा है कि हाँ यस अब उनकी एज है उनको फुटबॉल समझना चाहिए. कई बच्चे आए हैं वो कह रहे हैं कि हमें पहले नहीं पता चलता था कि फुटबॉल क्या कैसे खेला जाता है, बट अब हम एक एज में आ गए और हम जानना चाहते हैं कि फुटबॉल क्या है. तो भाई हम भी यहाँ पर, हमारे पूरी एमबीसी की टीम है यहाँ पर और बच्चों को बता रही है कि भाई फुटबॉल का ये टेस्ट होता है, ये मज़ा होता है, क्योंकि लड़कों को चीज़ ये ज़्यादा चीज़ें समझ आती हैं, पता चलता है. और ये भी कह रहे हैं कि हाँ अगर फुटबॉल की जो आज रात को जो मैच होगा उसमें क्या क्या होने वाला है, तो यहाँ पर सभी उनको बता रहे हैं कि आज रात को क्या होने वाला है. तो यहाँ पर जहाँ कनाडा और बोस्निया और यहाँ आमने सामने होंगे, वहाँ वही यूएसए एंड पैराग्वे के बीच में मुकाबला खेला जाएगा. और दोस्तों वर्ल्ड कप का यही खास बात है कि मैच ख़त्म नहीं होता और अगले मैच की तैयारी शुरू हो जाती है और इंतज़ार शुरू हो जाता है हम सबका कि भाई कल क्या होने वाला है. तो इसलिए हमें आपको भी यही कहेंगे कौन खेलेगा कौन जीतेगा ये अलग बात है, किसकी एक्साइटमेंट कैसी होगी, किसकी टीम जीतेगी कौन हारेगा ये अलग बात है, बट सबसे बड़ी बात है कि आप अपना मजबूत कदम ज़रूर बढ़ाइए, आप बढ़िए एक्साइटमेंट के साथ में. एमबीसी प्ले 1.0 एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लें ताकि कोई भी मैच या कोई भी गोल आपसे दूर ना जाना चाहिए, क्योंकि सेलिब्रेशन तो मिस नहीं होना चाहिए. क्योंकि साथ में अगर आप सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारे साथ एमबीसी प्ले 1.0 एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद, तो मुझे लगता है कि आपको और मैच अच्छे से समझ आ सकेगा. और साथ में ये भी है कि अगर आपको किसी भी तरीके की कोई तकलीफ आ रही है डाउनलोड करने में या आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करें, तो आपने सिंपल इतना ही करना है, आपने एक आपका पासवर्ड है आपके पास, आपका ईमेल एड्रेस है, आप अपना साइन इन कीजिए हमारा एमबीसी प्ले 1.0 एप्लीकेशन अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, या जो भी आपका सिस्टम है वहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए. उसके अंदर जाके आप देखेंगे कि जब आपका रेडियो और टीवी दिखने लग जाएगा आपको, वहाँ पर एक टीवी का ऑप्शन होगा जिसे कहते हैं न्यूज़ से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड. तो वो टीवी जब ऑप्शन ऑन करेंगे तो वहाँ पर आप फीफा वर्ल्ड कप 2026 का ऑप्शन आएगा, जहां पर आपको सिर्फ पे करना होगा सिर्फ 300 रुपये, यानी कि 300 रुपीज़. चाहे आप ऑप्शन यू चूज़ कर सकते हैं, जूस से पे कर सकते हैं, ब्लिंक से पे कर सकते हैं, पॉप से पे कर सकते हैं, और साथ में अगर आपको ये तीनों ऑप्शंस नहीं चाहिए तो आप क्रेडिट कार्ड से वो भी फैसिलिटीज़ हैं, और चाहे बैंकिंग सर्विसेज जुड़ी हुई हैं, चाहे डेबिट कार्ड है आप उधर से कर सकते हैं. उसके साथ में जैसे आपका वो स्टार्ट हो जाएगा तो आज रात से आप सारे मैच देख पाएंगे आसानी से. और साथ में अगर आपको मौका से आपको कोई हेल्प चाहिए, यानी कि एमबीसी से कोई हेल्प चाहिए, कहीं पे भी आपको इश्यू आ रहा है, तो आप 402-8000 पर कॉल कर सकते हैं. और अगर आप बहुत आसपास हैं जैसे कोमंडल है, चाहे ग्लेन पार्क है, वाकवा है, बोबासा है, यहाँ पर आप आ सकते हैं, कथबोन साइड है, तो आप यहाँ पर रोजिल में आ सकते हैं मेट्रो स्टेशन के पास. हमारी पूरी टीम है जो आपको पूरी तरीके से हेल्प करेगी. अगर आपको कैश पेमेंट करनी है, अगर आपको कोई ऑप्शन समझ नहीं आ रहा आपको कैश पेमेंट करनी है, तो हमारे यहाँ पर सारे लोग जुड़े हुए हैं, जाके यहाँ तक कि सारे रेडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती हैं, न्यूज़ इन्फॉर्मेशन मिल सकती हैं, टीवी अगर आपको कुछ ऐसा चीज़ देखनी है जो आपने 2 दिन पहले प्ले की थी और अब आप देखना चाह रहे हैं, कुछ मिस हो गया है तो भी

आपके पास ये बेनिफिट्स अब हो रहे हैं। एप्लीकेशन में आप अपना रीप्ले कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम्स को गाने सुन सकते हैं, पूरे वर्ल्ड से अपने अपने फैमिलीज को जोड़ सकते हैं कि आपके किसी भी तरीके किसी भी लैंग्वेज में आप प्रोग्राम सुन सकते हैं, देख सकते हैं, जो भी हमारे यहाँ पर एमबीसी में प्ले हो सकता है। क्योंकि कई लोग हमारे साथ जुड़े हैं, वो बोल रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स दूसरी कंट्री में हैं, वो कई बार जुड़ना चाहते हैं अपने रूट से अपनी कंट्री से, तो आप बस आप उनको ये एप्लीकेशन बताइए कि वो डाउनलोड किए करें और साथ में एंजॉय करें अपने गानों के साथ अपनी कंट्री के ये ब्यूटीफुल एमबीसी प्ले 1.0 एप्लीकेशन। थैंक यू, एंजॉय कीजिए अपना गाना।

0: RM2
1: रेडियो मस्ती।
2: दोस्तों बात करें तो मौसम की, यहाँ पर मौसम बहुत ही सुहाना है। यहाँ पर थोड़ी सी धूप निकली हुई है और अभी थोड़ा सा ठंडा ठंडा लग रहा है। हम इतनी देर से हम यही सोच रहे थे कि मौसम बहुत प्यारा सा हो चुका है, पर साथ में इतना ज़रूर हम आपको कहेंगे कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, फीफा वर्ल्ड कप का जो मौसम है ना, बस कुछ अलग ही हो गया। साल भर लोग अपने कामों में बिजी रहते हैं क्योंकि सबको बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन वर्ल्ड कप आते ही हर कोई फुटबॉल एक्सपर्ट बन जाता है। तो कोई कहता है कि मैच मिस मत करना, अरे यार स्कोर्स दो क्या हुआ और कौन हार रहा है कौन जीत रहा है। तो हम इतना ही आपको कहेंगे कि जो भी स्कोर्स हो, बट अगर आपका सबसे पहले इम्पोर्टेंट है देखना, अगर आपने देखा नहीं तो क्या फ़ायदा स्कोर्स जाने का, क्योंकि जो इन्जॉयमेंट पूरे परिवार के साथ या अपने दोस्तों के साथ मिलती है, वो कहते हैं ना शैतानियाँ करते करते, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है और याद रहता है, वो यादें याद रहती हैं कि किसने मिलकर कौन सा मैच एक साथ देखा था। तो हम आपको भी यही कहेंगे, आप इस टाइम को बिल्कुल मिस मत कीजिए। अगर आपको आपको टाइम है, इंजॉय करना चाहते हैं पूरे परिवार के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, तो आपको सिर्फ इतना करना है, एमबीसी प्ले 1.0 एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। उसके ज़रिए आप वर्ल्ड कप के साथ तो जुड़ेंगे, साथ में इंजॉय कर पाएंगे अपने प्रोग्राम्स को, रेडियो को, चाहे टीवी को। और उसके साथ में आपने अगर अभी तक पेमेंट नहीं किया है, आज रात को जो मैच होने जा रहा है उसके लिए आपको सिर्फ इतना ही करना है, आप जाइए एमबीसी प्ले 1.0 एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। उसके साथ में आपने क्या करना है, टीवी ऑप्शन पर जाना है, वहाँ पर ऑप्शन आपको दिखाई देगा, वहाँ से आप जुड़ पाएंगे अपने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के साथ। उसके अंदर आपको सिर्फ 300 रुपीज़, यानी कि आपको 104 मैचेस हैं, यहाँ की 48 टीम्स हैं, अगर आपको 104 देखने हैं तो आपको कितना कम प्राइस में आप मतलब इतने सारे मैचेस देखने हैं और आपको सिर्फ 300 रुपीज़ पे करने हैं, कुछ भी नहीं है। और आप पूरा परिवार एक हो सकते हैं, पूरे परिवार के साथ बैठ के बातें कर सकते हैं। कई बार होती हैं कोई छोटी मोटी घरों के अंदर कुछ बातें हो जाती है, तो इस टाइम में ही वो चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं, परेशानियाँ ख़त्म हो सकती हैं, इंजॉय कर सकते हैं उनके साथ। आप पूछ सकते हैं, अरे यार क्या हो गया, ये वाला कौन सा कितना क्या स्कोर दे रहा है, क्या ये कौन जीतेगा। तो ये जब बातें होती हैं तो एक परिवार एक बन जाता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अपने उस दोस्त को मैसेज करो जिससे बहुत दिनों से नहीं मिले हो, उसको बोलो चलो साथ में मिलके ये मैच देखते हैं, क्यों ना हो, एवरीडे किसी ना किसी के साथ देखेंगे तो अच्छा ही लगेगा, आपके लिए भी अच्छा होगा। और जब ये एक टाइम आएगा जब वर्ल्ड कप ख़त्म हो जाएगा तो आपकी वो यादें नई तरोताज़ा हो जाएंगी। तो हम आपको यही कहते हैं, अगर किसी भी तरीके की आपको तकलीफ़ आ रही है उसे डाउनलोड करने में, अगर आपके पास क्या कहते हैं पासवर्ड नहीं है या ईमेल एड्रेस आपको याद नहीं है, तो उसको बस देखिए अपने परिवार

0: से पूछिए, बाकी आपकर आपको यहाँ पर आना है रोजिल में तो रोजिल आइए। यहाँ पर बहुत सारे लोग जुड़े हैं और रोजिल आ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि कैसे हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि हम लोग रेगुलरली बता रहे हैं कि आप डाउनलोड कीजिए, पर अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया है। तो हम आपको कह रहे हैं, जो भी लिसनर्स इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, मैं यहाँ पर हूँ पूनम आपके साथ, तो आप प्लीज़ डाउनलोड कीजिए। और डाउनलोड करते ही उसके अंदर जो एप्लीकेशन है, चाहे रेडियो है, चाहे टीवी है, किसी भी तरीके से सारी चीज़ें आपके हाथ में है। चाहे आप टैबलेट पे डाल सकते हैं, अपने टीवी पे रख सकते हैं, फ़ोन पे कर सकते हैं, जिससे कि हम सब आपस में एक साथ कनेक्ट हो सकें। बाहर देशों में जो जुड़े हैं लोग, परिवार जुड़े हुए हैं, जो मॉरिशस से बाहर काम करने के लिए गए हैं, वो भी इसके साथ जुड़ सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं अपने प्रोग्राम्स को। तब तक साथ साथ इन्जॉय कीजिए अपने गाने और साथ साथ इन्जॉय कीजिए अपना MBC प्ले 1.0 एप्लीकेशन।
1: Radio Musty. Le ministère de l'Agro-Industrie, de la Sécurité Alimentaire, de l'Économie Bleue et de la Pêche informe le public que conformément à l'Animal Diseases Act, toutes les fermes, les centres d'élevage, les abattoirs et les centres de quarantaine qui élèvent, manipulent ou détiennent des bovins, caprins, ovins, porcins, volailles, cervidés et abeilles doivent s'inscrire au Système National d'Information sur l'Élevage, NLIS. Pour s'inscrire, veuillez vous rendre sur le site web du ministère agriculture.govmu.org ou télécharger l'application NLIS sur Google Play ou App Store. Pour toute assistance, veuillez appeler le 463 3107 ou envoyer un message WhatsApp au 5500 1000.
2: RM2 Radio Musty.

0: बहुत सारे सवाल सिर्फ यही पूछ रहे हैं सभी कि आज कौन खेल रहा है। फुटबॉल लवर्स के लिए हम बता दें कि जो कनाडा एंड बोस्निया आज मुकाबले में एक साथ होंगे, वहीं यूएसए और पेनाग्रों के मैदान में उतरेंगे। यही एक्साइटमेंट का लेवल लगातार बढ़ रहा है और सभी लोग आके सिर्फ इतना ही पूछ रहे हैं कि क्या हम एमबीसी प्ले 1.0 डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि हमें भी ये मैच देखने हैं, हमें भी हमारे पेरेंट्स ये गाने सुनना पसंद करते हैं, पुराने गाने। कई लोग कह रहे हैं हमें मॉर्निंग में जाते हुए बहुत थकावट हो जाती है और आते हुए भी, तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा अगर हम रेडियो सुनते सुनते आएंगे और अगर एमबीसी के साथ हम जुड़ जाएंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कई बार बहुत थकान हो जाती है, तो उस समय इन लोगों के लिए यही एक सबसे अच्छी चीज़ होती है जब रेडियो साथ चल रहा होता है, साथ में हर घर की हर एक इन्फॉर्मेशन सभी के पास होती है और उन्हें पता चलता है कि हाँ इसके बीच में वर्ल्ड कप फीफा आ गया है, जुड़ गया है और ये एक महीना उनके नाम हो चुका है। तो 104 मैचेस हमारे साथ ये होने वाले हैं जिसको देखने के लिए सभी लोग बहुत एक्साइटेड हैं और जानना चाहते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा। लास्ट डे को तो इतना एक्साइटमेंट होती है क्योंकि हमें पता होता है कि दो टीमों में से एक जीतेगा, बट उसके बीच में जो एक रिदम सी बन जाती है और सारे लोग हर मैच के साथ जुड़े होते हैं, सभी खिलाड़ियों के साथ जुड़े होते हैं, सभी प्लेयर्स बहुत ही एक्साइटमेंट दिखाते हैं अपनी तरफ से क्योंकि उनको भी सपोर्ट चाहिए होता है। अभी सभी अपने जितने भी जो उनके साथ में जुड़ना चाहते हैं, फुटबॉल लवर्स हमेशा यही चाहते हैं कि उनके पास सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ में साथ हो। अगर आपके पास भी साथ है, आप उनका देना चाहते हैं, तो आप जुड़ जाइए हमारे साथ यानी कि एमबीसी प्ले के साथ में। और अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया इस एप्लीकेशन को तो प्लीज़ आप डाउनलोड कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए रेडियो और टीवी तो साथ साथ लेकर आएगा, साथ में इस समय जो कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 चल रहा है उस समय आपको अपने परिवार के साथ में भी कहते हैं ना कि एक साथ मिलाएगा और इन्जॉय करवाएगा आपको आपके गानों के साथ, आपके टीवी के प्रोग्राम्स के साथ में। आपकी कहते हैं ना कि प्रोग्राम जब चलते हैं तब एहसास होता है कि कितना अच्छा हुआ, काश ये चाहे वर्ल्ड कप चाहे आते तो 4 साल के बाद है, पर ये जो एक महीना होता है पूरा घर ऊपर नीचे हो जाता है क्योंकि टाइमिंग का डिफरेंस होता है। वहाँ पर इस समय हमारे यहाँ पर रात होने वाली है और वहाँ पर सुबह होने वाली है और सभी लोग इंजॉय करने वाले हैं क्योंकि कई लोगों ने वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिया होगा और साथ में कई लोगों ने बोला होगा, बहुत सारे लोग छुट्टियाँ मारने वाले होंगे मुझे पता है, क्योंकि उनको बताना है कि भाई देखना तो टीवी है बट एहसास हो जाता है कि हाँ भाई थोड़ा सा टाइम खुद के लिए भी होना चाहिए, थोड़ा सा इंजॉयमेंट क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कुछ भी थेरेपी लेने जाते हैं या मसाज कराते हैं या किसी भी तरीके की अपने को मोटिवेट करना चाहते हैं, बूस्ट करना चाहते हैं, तो जब आपके फेवरेट फुटबॉल चलता है जो कि मॉरिशस का सबसे हैपनिंग ऐसा मैच है, वो उसमें एक और अच्छा लगता है कि हाँ भाई ये देख लिया तो उसके बाद और कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 300 रुपीज़ पे करने हैं जहाँ पर आपका जो पूरा मैच है, सारे मैचेस हैं जितने भी हैं आपके हाथ में होंगे, आराम से कहीं पे भी बैठ के अगर आपको कुछ काम भी करना है तो आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, स्कोर्स होंगे और आप उनके साथ में जो आवाज़ आती है ये वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी टीम जीत रही होती है। अगर कहीं पर सैड भी हो रहे होते हैं तो बट अगले दिन का मैच आपको और कह देता है कि हाँ क्यों टेंशन लेनी हम है ना, तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसके साथ में जुड़े हुए हैं पूरा मैच के साथ में मस्ती के साथ में। तो आपने सिर्फ इतना ही करना है कि एमबीसी प्ले अपने प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ पे एमबीसी प्ले 1.0 डाउनलोड कीजिए, बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि आज रात को भी मैच होने वाला है, मस्ती के साथ में आप इंजॉय कर पाएंगे अपने टीवी पर और साथ में आराम से खाते पीते आपको पता भी नहीं चलेगा किस कितनी जल्दी से ये प्रोग्राम्स एक महीने में फिनिश भी हो जाएंगे और आपको एहसास होगा कि हाँ वो यादें वो बन सकती थी अगर हमने उसको डाउनलोड किया होता। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं है तो नहीं किया है तो डाउनलोड कीजिए, अगर आपको कोई भी परेशानी आ रही है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें यहाँ पर रोजिल में आ सकते हैं, आपको मोका में कॉल करना है 4028000 पर कॉल कर सकते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, आपको जहाँ पर भी कुछ भी परेशानी होगी आपको हमारा पूरा स्टाफ हमारी पूरी टीम आपको हेल्प करेगी, आपको कहीं पे भी नहीं रुकना है, आज शाम का मैच ज़रूर देखना है, बस 300 रुपीज़ पे कीजिए और पूरे कहते हैं ना टीवी का आनंद लीजिए, एमबीसी प्ले का आनंद लीजिए, अपने रेडियो पे पूरी सारी इन्फॉर्मेशन लीजिए, बस आपको हमारे साथ जुड़ना है इन गानों के साथ अपने ही प्रोग्राम के साथ।
1: You're listening to RM2, a radio must.

0: 12 लड़के तो मार ही देती होगी तू दिन में।
1: तुझे जैसे 36 फिरते हैं मेरे वर्गी और न होनी वे
2: स्टूडियो के घड़ी में 4:38 हो चुके हैं। आप सोचेंगे कि गिनती को इतनी जल्दी क्यों है, हमारे स्पोर्ट्स गुरु आ चुके हैं भाई, रेडी हो जाइए फॉर सम लेटेस्ट स्पोर्ट्स न्यूज।
3: स्पोर्ट्स मैगजीन इज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी देखो द फ्लो एक्सपर्ट।
2: स्पोर्ट्स गुरु इज ऑल सेट जी हाँ इस वर्ल्ड कप के लिए एंड आपका स्वागत है जी।
4: यस सो वर्ल्ड कप स्पेशल कह सकते हैं, सब कुछ आजकल वर्ल्ड कप ही के बारे में बात कर रहे हैं, बाकी जो न्यूज हैं दे आर मोर और लेस फीका।
2: आपको कैसा लगा कल का ओपनिंग एंड द मैच?
4: ग्रैंड ग्रैंड ग्रैंड वन। और मेक्सिको की टीम ने भी साबित कर दिखाया कि अपने मैदान में वे बब्बर शेर हो जाते हैं।
2: एग्जैक्टली
4: सो ये तो हुआ कल, और वर्ल्ड कप के बारे में आज तो काफ़ी मैच होंगे, तो चलिए वर्ल्ड कप स्पेशल की ओर, और इसमें आपको आज के मैच के बारे

में जानकारियां देंगे। फिर हमारे फुटबॉल गुरु, फुटबॉल स्पेशलिस्ट सर जुगाड़ू शंकर भी बाद में उनसे हम बात करेंगे, जो आज के दो मैचों पर चर्चा करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग वर्ल्ड कप स्पेशल।

0: Special World Cup Magazine, World Cup Special, Bienvenida a Mexico, Mexico की टीम के लिए परफेक्ट स्टार्ट, 2-0 की जीत। इस वर्ल्ड कप का पहला गोल स्कोर किया मेक्सिको के खिलाड़ी जुलियन क्विनोनेस ने। पहला रेड कार्ड साउथ अफ्रीका के याया सितोले को दिया गया। रेफरीज टफ हो रहे हैं, पहले ही मैच में 3 रेड कार्ड, जबकि कतर 2022 में पूरे टूर्नामेंट में केवल 4 रेड कार्ड निकाले गए थे। साउथ कोरिया की ओर से जबरदस्त कमबैक, सब कुछ सेकंड हाफ में हुआ। चेक रिपब्लिक का गोल क्रेस्की का रहा, फिर साउथ कोरिया के लिए वांग इन बेओम और ओ ह्योन यू एक एक गोल स्कोर कर पाए। साउथ कोरिया की जीत, नाम पर नहीं जा कोरिया नहीं, मेहनती है कोरियन खिलाड़ी। आज कनाडा की टीम की एंट्री होगी बोस्निया हर्जेगोविना के खिलाफ, टोरंटो में मैच खेला जाएगा आज रात 11 बजे मॉरिशन टाइम। कनाडा की टीम के लिए वर्ल्ड कप हिस्ट्री में बहुत खास नहीं है, अभी तक ग्रुप स्टेज से आगे नहीं जा पाई है ये टीम। ले रूज द रेड्स इस बार अपने वर्ल्ड कप में बहुत आगे जाना चाहते हैं। पहला मिशन होगा ग्रुप स्टेज पार करना। स्क्वाड में यूरोप के बड़े क्लबों के खिलाड़ी हैं। कप्तान अल्फोंसो डेविस टीम का बेस्ट खिलाड़ी है, पर वो नहीं खेलेगा। कनाडा का पहला वर्ल्ड कप गोल उसी ने स्कोर किया था कतर 2022 में। रेफ्यूजी कैंप से कनाडा का कप्तान बना, बायर्न म्यूनिख में पहला यूएस खिलाड़ी बना यूरोपियन चैंपियंस लीग में खेलने वाला। 15 इंटरनेशनल गोल, पर आज के मैच में वो नहीं खेल पाएगा। टीम में जोनाथन डेविड भी है, कनाडा का ऑल टाइम गोल स्कोरर, यूवेंटुस का खिलाड़ी। ताजन बुकानन भी है। अल्फोंसो डेविस के स्थान पर स्टीफन उस्तकायो कप्तान होगा। यूवेंटुस का स्ट्राइकर जोनाथन डेविड भी होगा। बोस्निया एंड हर्जेगोविना द ड्रैगन्स वेल्स और इटली को हराकर क्वालिफाई हुए। उनका कॉम्पैक्ट डिफेंसिव 4-2-3-1 स्ट्रक्चर है। अप फ्रंट 40 साल का एडिन जेको अपनी वेटरन लीडरशिप के साथ। प्रेडिक्शंस कनाडा की ओर जा रहे हैं, जो 40,000 फैंस के सपोर्ट के साथ खेलेगा। सो आज रात 11 बजे होगा मैच कनाडा और बोस्निया एंड हर्जेगोविना के बीच। और अंत में समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, वैसे फुटबॉल शूज ब्लैक और व्हाइट हुआ करते थे, अब कुछ रंग बदलने लगे हैं। इस वर्ल्ड कप में पिंक कलर फुटबॉल शूज का फैशन है। रीजन ये है कि टॉप सेलिंग ग्लोबल ब्रांड नाइक, एडिडास और पुमा सब ने सिमिलर स्टाइल बूट्स प्रोड्यूस किए हैं। सो मेक्सिको साउथ अफ्रीका वाले मैच में पिंक फुटबॉल शूज अधिक रहे। चलिए आप भी पिंक शूज पहनिए फुटबॉल खेलने के लिए, और अगर आपके मेल कोलीग्स पिंक जूतों के साथ आज काम पे आते हैं तो नो जोक, वर्ल्ड कप है, फैशन है, चलता है। सो दैट वाज द लेटेस्ट फ्रॉम द वर्ल्ड कप।
1: सुबह वेदिता पिंक शूज पहन के आई थी, आज आपने भी पिंक शूज पहनी है।
2: हाँ जी, और मैंने पिंक नेल पॉलिश भी लगाई है।
1: ऑलराइट,
2: आई एम गोइंग विद द ट्रेंड।
1: हाँ, तो आज तो लड़कों को भी कह सकते हैं कि फुटबॉल खेलने के लिए पिंक शूज लेकर जाइएगा, इट्स फैशनेबल, और ये एक तरह से एक नया रंग देने के लिए फॉर दिस वर्ल्ड कप। तो वर्ल्ड कप की बात हुई तो कल से हम हमारे फुटबॉल गुरु, फुटबॉल स्पेशलिस्ट सर जुगारू शंकर से बात कर रहे हैं। आज हमने के दुगो जो मैच खेला जाए आज और कल, एक बारे में जानकारी दिया ना सुनील राजा सर जुगारू शंकर जी के।
3: मैच कनाडा वर्सेस बोस्निया हर्जेगोविन, बोला सर कि कनाडा लास्ट वर्ल्ड कप कतर में निमा से नहीं खेला सर, ओकर सिक्से नहीं मिला ला लोग, तो कब से की लेकिन पुआ हर बरिस दुनिया के लोग होश कर रहे सर, ए जहना कि प्रेशो में ढेर वो लोग में कि लिमन से कहें है वर्ल्ड कप, और ये देखा सा कि अमेरिकन कोच जेस मार्च वो एगो सिस्टम करी फो फोटू कहा एगो स्टार प्लेयर रही अल्फोंसो डेविस, और बोस्निया हर्जेगोविन इतना एगो एगो अबिचुआ कप जिमोन से, और ये लेकिन पे देखा सा एगो मेलांस वाले एक्सपीरियंस और यंग प्लेयर्स लोग, अरे वेदित की बोला सा वेदित और सबसे बड़ा प्लेयर को हर्जेगोविन बोस्निया हर्जेगोविन लोग के लेकिन में बा वो तो एडिन जेको, एडिन जेको ओकर क्वालिटी में सबसे बोले कि वो लेकिन पा के आनी दस्ती आगे और शकीला की

0: Y el equipo A, gracias aquí con el coach Bob Arez, cette discipline tactique, ahora bolasa aquí bien organizada. Ahora ya tengo victoria, Bosnia-Herzegovina. Hay un World Cup. Ahora bolasa aquí expectation is very high. Hay tournoi Katin. अरे बोला कि किसे हम जानिए सके फुटबॉल नेशनल स्पोर्ट्स ने अति अमेरिक में बोला ग्रास आ एमएलएस बेकाम मेसी और दूसरे स्टार प्लेयर्स अब एको बढ़िया डेवलपमेंट बाक फुटबॉल अमेरिक में और इकोल कोच मॉरिशो पोचिटिनो कुछ ही जानिए सको टोटनहम हॉस्पर के आगे के कोच हाल उस सकेला एको लिमन लिकिप डालता है वर्ल्ड कप में पाराग्वे वो भी एको बड़ी गुड फुटबॉल कल्चर देश है और बोला कि पराग्वे के मेंटालिटी और कैरेक्टर वो सब प्लेयर बड़ी टफ प्लेयर्स हैं सा अरे बोला कि कोच गुस्तावो अल्फारो वो एगो टैक्टिक डाली कहाँ उतना टैक्टिकली उतना जोली ने बात देखे कि माचवा मगर वो कल एकिप बिया ऑर्गेनाइजे कैरेक्टर बा सकेले से को डिफिकल्टी में डाले अमेरिके हम जहाँ पे को मैच नील एनएन और यूएसए ए पराग्वे
1: चलिए, ये हमारे फुटबॉल पंडित रहे और ऐसे ही आप लोग इनके एनालिसिस सुनते रहेंगे। और अभी सैटरडे को एक मैच है, सैटरडे नहीं बल्कि संडे सुबह, वो अभी के लिए ओपनिंग मैचेस में सबसे ज़बरदस्त मैच होगा, वो है ब्राज़ील और मोरक्को के बीच। ब्राज़ील हम तो जानते ही हैं सुपर पावर है फुटबॉल में, और उधर मोरक्को की टीम जो अफ्रीकन चैम्पियनशिप में फाइनल तक पहुंची, फाइनल में हारी लेकिन उसे ऑफिशियली चैम्पियन बनाया गया। सो वो मैच 2 बजे खेला जाएगा, तो मैं सोच रहा हूँ संडे को ये मैच देखने के बाद 2 बजे फिर हो जाएगा 4 बजे लगभग मोर और लेस, तो उठ के जाऊंगा सब्जी खरीदने।
2: क्यों?
1: संडे बाजार।
2: अच्छा
1: गुड, ऑलराइट। तो भूलिएगा नहीं, लाइव मैच एमबीसी टीवी पर देखते रहिएगा और एमबीसी प्ले पर भी। और अभी भी बहुत लोग आ रहे हैं एमबीसी में, जो स्पेशल डेस्क लगाया गया है फॉर द इंस्टॉलेशन एंड फॉर द पेमेंट, और हमारे स्पोर्ट्स डेस्क में भी फोन पर फोन आ रहे हैं। आप भी अगर सभी 104 मैच देखना चाहते हैं तो एमबीसी आपके साथ।
2: एंड इवन मैंने पता किया है आज अरविंद जी जानने के लिए कि जितने भी मॉरिशियंस हैं अक्रॉस द ग्लोब जो बाहर है, अगर वो एमबीसी प्ले डाउनलोड करना चाहते हैं, अगर अभी भी आपका जो व्हाट्सएप रजिस्टर्ड है एक मॉरिशियन नंबर पर, यू कैन डाउनलोड इट एंड यू कैन इवन हैव एमबीसी प्ले 1.0 ऑन योर मोबाइल एंड वॉच ऑल द वॉचेस। एक्चुअली यू नो, आप वर्ल्ड कप को अपने जेब में लेके घूमोगे तो कितना अच्छा फीलिंग होगा।
1: यही सोचे, आज सुबह 6 बजे मैच था, बहुत लोग 6 बजे घर से निकल जाते हैं काम के लिए, अब अपने टीवी थोड़े लेकर जाएंगे।
2: सो गेट योर शूज, योर पिंक शूज, डोंट वरी, आई एम नॉट गोइंग टू कॉल यू पिंकी ऑन मंडे, सो जस्ट फॉलो द ट्रेंड एंड get your pink shoes. Okay.
3: Thank you. FIFA World Cup 2026 11 June se 19 July. Catch all the news, views, previews and latest updates. J

0: रेडियो मस्ती।
1: क्या बात है ये गानों के साथ में जो हमारा फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फुटबॉल लवर्स का जो मूड है ना, इसने बदल दिया है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर, हम तो यहाँ पर रोजिल मेट्रो स्टेशन के नीचे खड़े हुए हैं, हमारी पूरी एमबीसी की टीम है यहाँ पर जुड़ी हुई और हम हर पल की इन्फॉर्मेशन आपके साथ पिछले 3 घंटे से हम दे रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे कंडक्टर्स हैं जो कि बार बार निकल कर आ रहे हैं अपनी बसों से और पूछ रहे हैं कि क्या प्लानिंग है भाई, हमको भी बता दिया जाए कि क्यों यहाँ पर RM2 रेडियो मस्ती और पूरी एमबीसी टीम आई है। और वो इंजॉय कर रहे हैं, वो उनका कहना सिर्फ इतना सा है कि हमारे को भी क्या डाउनलोड करके दे सकते हैं ये एप्लीकेशन, क्योंकि कई बार हमारे को अपनी कहते हैं यहाँ पर सुनना होता है, कहीं पर हम बैठे होते हैं, हमारा अगला शेड्यूल होता है, पर हमें लगता है कि ये शेड्यूल जो है अब इस बार फुटबॉल को देना पड़ेगा। तो उनके लिए टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और वो कह रहे हैं कि अब हमारी बैटरी फुल होनी चाहिए। और यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि इंटरनेट तो बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, बट हाँ सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 में हमारे परिवार के साथ में हम बैठ के ये प्रोग्राम सुन पाएंगे, देख पाएंगे। और हमारे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है क्योंकि ये मैच होता ही ऐसा है, क्योंकि उन सबको लगता है कि हाँ ये टाइम जो है उनके लिए है। और सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं, उनकी बहुत सारी टीम्स ऐसी होती हैं जो उनकी फेवरेट होती है। कई बार इंसान की कोई खुद की कोई फेवरेट टीम नहीं होती है, बट दोस्तों से सुन सुन के उनके प्लेयर्स के बारे में उनकी भी चॉइस बन जाती है कि हाँ यार ये वाला पर्सन तो बहुत बढ़िया खेलता है, बहुत अच्छा खेलता है, क्यों ना हम इसको फॉलो करें, इसको देखें, इसके जैसे बने। तो ये भी बड़ी एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है यंगस्टर्स में, जो बच्चे अभी ट्यूशंस के लिए जा रहे हैं या स्कूल से वापस आ रहे हैं उनको बहुत मज़ा आ रहा है। और कई लोग आए थे शॉपिंग के लिए, वो भी राउंड करके जा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या आप ये हमारे लिए चला सकते हैं, ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो उनके लिए भी बहुत एक एक्साइटिंग चीज़ हो रही है। और साथ में हम इतना आपको बताएंगे कि यहाँ पर 104 मैचेस आपको मिलेंगे पूरे मंथ में, यहाँ पर जितने भी ये वर्ल्ड कप में आपको सुनने को और देखने को मिलेगा उसमें आप 48 टीम्स जुड़ेंगी, जहाँ पे बेहतरीन खिलाड़ी होंगे जिनकी जो बॉडी है ना उसको देख के भी कई लोग जो जिम में जाते हैं उनको बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ भाई मुझे भी ऐसी जिम ऐसी बॉडी बनानी है, ऐसे मुझे अपना ख्याल रखना है, ऐसी मुझे अपने आप को एक कहते हैं बूस्ट देना होता है, ये बहुत देखने को मिल रहा है। वो लोग कह रहे हैं, कई लोगों ने तो बहुत सारे अपने शेड्यूल प्रिंट करा लिए। एक लड़का अभी आया, उसने बताया कि ये मेरा शेड्यूल है, मैंने बताया है कि मैं इस टाइम ऐसे ये देखूंगा मैच, इस टाइम उठूंगा। और मैं एक्साइटेड हो रही थी, मैंने बोला इस तरीके से आप लोग बनाते हैं शेड्यूलिंग, कहते हैं यस जब हम ये बनाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आपको भी मिस नहीं करना है फीफा वर्ल्ड कप 2026, तो आपको डाउनलोड करना है एमबीसी प्ले 1.0 एप्लीकेशन अपने प्ले स्टोर से या कोई भी जो जिसमें भी आपके लिए आपकी एप्लीकेशंस डाउनलोड होती हैं वहाँ पर जाना है। और वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर एक टीवी ऑप्शन मिलेगा, उस टीवी ऑप्शन को चूज़ करेंगे तो उसके अंदर आपको सिर्फ पे करना होगा 300 रुपीज़। और 300 रुपीज़ पे करते ही आपको सारे मैचेस देखने को मिलेंगे। आप उसको टीवी में कनेक्ट कर सकते हैं, अपने फ़ोन पर कनेक्ट कर सकते हैं, लैपटॉप के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। और साथ में सारी इन्फॉर्मेशन के साथ में आपको रेडियो तो सुनने को मिलेगा ही, बट अगर आपको टीवी के कोई प्रोग्राम्स देखने हैं तो वो भी आपको देखने को मिल सकते हैं। और साथ में आप इंजॉय कर सकते हैं हर वो चैनल जो आपकी अपनी लैंग्वेज में है, वो गाने सुन सकते हैं। तो मेरे लिए लगता है कि आपके लिए और सभी के लिए एमबीसी प्ले बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है आने वाले फ्यूचर में, क्योंकि हर चीज़ एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो रही है। और साथ में आज की डेट में एमबीसी प्ले जो हमारे हाथ में आने वाला है मोबाइल के जरिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये जो टाइम है वर्ल्ड कप का, इससे बेहतरीन तो कुछ और हो ही नहीं सकता। आपको अगर किसी भी तरीके की, अभी हम और 15 मिनट यहाँ पर हैं, तो आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मौका में कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली एमबीसी में 4028000 पर। और पूरी हमारी एमबीसी नेम अभी भी यहाँ पर है। आपको अगर कैश पेमेंट करनी है तो आप कैश पेमेंट आके कर सकते हैं और यहाँ पर अपना डाउनलोड कर सकते हैं जो टीवी का ऑप्शन है, जिसके अंदर आपके लिए स्पेशली फीफा वर्ल्ड कप 2026 देख पाएंगे आप आसानी से। तो यहाँ पर हमारी पूरी टीम जुड़ी हुई है। और उसके साथ में हम आपको ये भी कहना चाहेंगे कि अभी भी आपके पास कुछ मिनट और हैं, आप आ सकते हैं, आप कनेक्ट कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं अपने गानों और टीवी के साथ में फीफा वर्ल्ड कप 2026। इन्जॉय कीजिए अपना नेक्स्ट सॉन्ग।
0: You're listening to RM2, a Radio Masti.

खुल गए। RM2 रेडियो मस्ती। दोस्तों, वर्ल्ड कप का जोश अब तर हर तरफ दिखाई दे रहा है। आज के मुकाबलों को लेकर फुटबॉल लवर्स काफ़ी उत्साहित हैं। अगर आप भी इस पल को मिस नहीं करना चाहते हैं तो MBC प्ले 1.0 एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कर दीजिए। और हम धन्यवाद देंगे सभी लिसनर्स का जिन्होंने ये एप्लीकेशन डाउनलोड ऑलरेडी कर लिया है और MBC प्ले 1.0 डाउनलोड कर लिया है। और वर्ल्ड कप जो कि पसंदीदा सभी का TV और रेडियो प्रोग्राम्स के लिए, ढेर सारी शुभकामनाएँ देना चाहते हैं। और सभी मेट्रो स्टेशन यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं, जितने भी यहाँ पर मेट्रो स्टेशन के आसपास लोग रहते हैं, जो मिलकर ये बस बता रहे हैं कि हमें ये एप्लीकेशन बहुत पसंद आई है, हमने इंजॉय कर रहे हैं। और सब लोगों ने जिन्होंने भी पेमेंट कर दी है और आज शाम को मिस नहीं करना चाहता है अपना मैच, तो उनके लिए भी हम थैंक यू यही बोलेंगे और मैं भी आपके साथ यही थैंक यू बोलूँगी आप सबको कि इंजॉय कीजिए अपने परिवार के साथ आज का वर्ल्ड कप जो कि कल से शुरू हो चुका है। तो मैं लेती हूँ आप सबसे इजाज़त। आपके साथ जुड़ी हुई थी पूनम। इंजॉय कीजिए आपका नेक्स्ट ट्रैक।

0: about the music. It's about the feeling.
1: Friday Mashup. Friday Mashup.
0: RM2, Radio Musti, in the mix.
2: बिल्कुल जी, इट्स ऑल अबाउट द फीलिंग, हाउ यू फील द गुड म्यूजिक. हमारे साथ ऑन आर वन टू रेडियो मस्ती. चेक योर टाइम, 5:25 हो चुके हैं. थोड़ी देर पहले गिनी शेख सवाल पूछा था, और गिन्नी ने सवाल पूछते ही आपको बोला था कि आज अगर आपका नंबर निकल आता है लकी ड्रॉ में, यू गोना बी माय लकी विनर एंड यू गोना विन अ वाउचर वर्थ 500 रुपीस ऑफर्ड टू यू बाय मिस्टिक वर्ल्ड. थैंक यू सो मच टू ऑल दोस जिन्होंने सही जवाब दिए और पार्टिसिपेट भी किए. कोई भी गलत जवाब नहीं मिले भाई, अच्छी बात है, अच्छी बात है. ऐसा लगता है कि सभी लोग जो है बड़े ध्यान से सुनते हैं जब भी बोलते हैं कि ये गाना इसने गाया, उसने गाया. सो दिस इज सो गुड टू नो दैट एवरीवन इज फॉलोइंग सो वेल. यिमी यिमी का गाना हमने आपको सुनाया था, यस, जिसमें मेल वॉइस था वो टेसी था, एंड हमने पूछा था फीमेल वॉइस कौन है, हु इज द सिंगर इन द फीमेल वॉइस, एंड द राइट आंसर इज श्रेया घोषल. सो कंग्रेचुलेशंस टू मिस्टर अजीत कुमार वर्मा जो रहते हैं कोरोमंडल में. कंग्रेचुलेशंस टू यू माय डियर, यू आर विनिंग अ वाउचर वर्थ 500 रुपीस ऑफर्ड टू यू बाय मिस्टिक वर्ल्ड. जिन्होंने नहीं जीता दिल छोटा नहीं करते मेरी जान, अगली बार जरूर ट्राई करना. यू नेवर नो योर लक आपका साथ दे सकता है. सो थैंक यू सो मच. और फिर से आपको याद दिलाते हैं, इफ यू आर लुकिंग फॉर द परफेक्ट गिफ्ट आइडिया, जी हाँ, अगर आप ढूंढ रहे हैं एक परफेक्ट गिफ्ट, सो mysticworld.mu वहां पे यू कैन डिस्कवर द एक्सक्लूसिव गिफ्ट कार्ड्स, गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी, ऑथेंटिक क्रिस्टल्स एंड स्टनिंग होम डेकोर. mysticworld.mu एग्जैक्टली उनके पास है जो आपको चाहिए. सो विजिट कीजिए उनके वेबसाइट आज ही अभी इसी वक्त mysticworld.mu, या आप उनको फोन कर सकते हैं ऑन 5880762 5880762. थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग.

सब्सक्राइबर को पहले एमबीसी प्ले ऐप खोलना होगा और जाना होगा टीवी सेक्शन में। अब जब किसी भी न्यू वर्ल्ड चैनल पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा टू अ सिक्योर मिप्स पेमेंट पोर्टल। स्टेप टू, अब आपके सामने होंगी दो पेमेंट ऑप्शंस। एक तरीका मोबाइल बैंकिंग एप्स के जरिए पेमेंट करने का, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। सो आपको सिलेक्ट करना होगा अपना प्रेफर्ड मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। अब इन पेमेंट एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर आपको एंटर करना होगा। ऐसा करने के बाद उस बैंकिंग एप्लीकेशन के द्वारा एक सिक्योर पुश नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पर दिखेगी। यूजर को उस नोटिफिकेशन को खोलना है, ट्रांजैक्शन और उसकी डिटेल्स को रिव्यू करना है और सिलेक्ट करना है एक्सेप्ट एंड पे। और वहीं पर अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का ऑप्शन चुनते हैं, सो पहले मांगी हुई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स आपको भरनी होंगी और उसके बाद आपके बैंक के द्वारा आपको मिलेगा एक सिक्योर्ड वन टाइम पासवर्ड, यानी कि ओटीपी एसएमएस या ईमेल द्वारा। ये ओटीपी आपको अपने स्क्रीन पर एंटर करना होगा टू ऑथराइज द ट्रांजैक्शन। तीसरा और अंतिम स्टेप, एक बार यूजर ने पेमेंट को ऑथराइज कर दिया अपने बैंकिंग ऐप या ओटीपी के द्वारा, तो उनको अपना स्क्रीन नहीं बंद करना बल्कि इंतजार करना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है पूरी तरह कंप्लीट हो जाए ऑन द एमबीसी प्ले एप्लीकेशन। अब बस सक्सेसफुल पेमेंट कंफर्मेशन होते ही सिस्टम ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर देगा एमबीसी प्ले होम पेज पर और अनलॉक कर देगा इमीडिएट एक्सेस टू द प्रीमियम स्पोर्ट्स स्ट्रीम्स। ज्यादा जानकारी या मदद के लिए सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच में फोन कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन सपोर्ट को 433-3135 या 433-2871 या 433-3145 या 433-2905 या 5251-6363 या फिर ऑन 5944-6800।

0: Fashion Tips powered by Halkari Fashion, House of Ready-Made Garments.
1: बिल्कुल जी, ऑन रेडियो मस्ती एवरी आफ्टरनून कुछ लेटेस्ट फैशन टिप्स हम आप लोगों के लिए हमेशा लेकर आते हैं, विच आई गेस इट कैन रियली हेल्प यू आउट टू ले अप योर लवली लुक। तो चलिए जी, अभी है तो आपको बताया कि विंटर चल रहा है और अगर आपको इस वीकेंड के लिए किसी पार्टी में जाना है तो मैं आपको बता दूँ स्मार्ट विंटर जो पार्टी लुक होते हैं, आप लेडीज जो होते हैं ब्लैक फिटेड जीन्स पहन सकते हैं, सैटिन टॉप पहन सकते हैं, ओवर साइज ब्लेजर, एंकल बूट्स या इवन ब्लॉक हील्स पहन सकते हो, गोल्ड हुप्स एंड एक स्मॉल क्लच अगर आप कैरी करोगे, सो इट्स गोना लुक वेरी वेरी क्लासी। एंड लड़के जो होते हैं, जो गाइस हैं, यू कैन वेयर डार्क जीन्स, सॉलिड ब्लैक या इवन वाइट शर्ट पहन सकते हो, लाइट वेट जो ब्लेजर होते हैं, क्लीन वाइट स्नीकर्स या लोफर्स पहन सकते हो। बिल्कुल जी, आप बहुत ही हैंडसम लगेंगे। वैसे लेयरिंग जो होते हैं ना, करो आप करो लेयरिंग जो होते हैं, लेकिन ओवर लेयर मत करो क्योंकि मॉरिशस के जो विंटर होती है ना वो यूरोप जैसी कोल्ड नहीं होती है। एक स्टेटमेंट पीस रखो हमेशा, ब्लेजर, लेदर जैकेट या क्लासी बूट्स आप पहन सकते हैं। पार्टी लुक में फिट सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्सपेंसिव क्लोज से ज्यादा वेल फिटेड क्लोज स्टाइलिश लगते हैं। सो अगर आउटडोर पार्टी है तो लाइट जैकेट जरूर कैरी करो, रात को हवा थोड़ी सी चिली हो सकती है, एंड यू गोना लुक रियली अमेजिंग। तो ये थे आपके लिए फैशन टिप्स ऑन आरएनटी रेडियो मस्ती।
0: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाई हल्कोरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।

0: थैंक यू सो मच साथ देने के लिए ऑन आवर एम टू रेडियो मस्ती. जी हाँ दोस्तों, फिलहाल के लिए जस्ट चेक योर टाइम, इट्स ऑलरेडी 6 पीएम. आवर एम
1: टू रेडियो मस्ती.
2: The time is brought to you by McDonald's.
3: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
2: And RKG Classic Pure Cow Ghee. Share the taste. Share happiness.
1: Radio Musti.
4: North. South.
5: 103.5.
4: East. West.
5: 96.4.
4: Center.
5: 99.4.
6: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
6: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti. Feel the Musti. The Musti.

0: 12 जून की तारीख शुक्रवार का दिन। स्वागत आप सभी का 6 बजे के समाचारों में। सबसे पहले आज की सुर्खियां। डिजिटल दुनिया के बढ़ते दायरे के साथ ऑनलाइन ठगी के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। एफसीसी के अनुसार इस वर्ष दर्ज की गई 57 धोखाधड़ी संबंधी जांचों में से 20 मामले इलेक्ट्रॉनिक ठगी से जुड़े। मिडलैंड्स में एक शिकार क्षेत्र के पार्किंग स्थल पर 40 वर्षीय जोनाथन कुयामटू की मृत्यु, उनके सीने पर गोली लगी है। विश्व कप 2026 का रोमांचक शुरुआत, मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका पर जीत के साथ अपने अभियान का शानदार आगाज किया। विदेश की खबरों में अमेरिका और ईरान के बीच संभावित समझौते की अटकलें तेज हो रही हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने जल्द सहमति बनने का दावा किया है। बुलेटिन में एक बार फिर आप सबका स्वागत। पेश है समाचार विस्तार से। मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप के जरिए होने वाली ठगी के मामले मॉरिशस में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ठग नए नए तरीकों से लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं। एफसीसी के अनुसार इस साल अब तक दर्ज की गई 57 धोखाधड़ी संबंधी जांचों में से 20 मामले इलेक्ट्रॉनिक ठगी से जुड़े हुए हैं। इन मामलों में अब तक 10 मिलियन रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। सबसे अधिक निशाना बुजुर्ग लोगों को बनाया जा रहा है। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
1: फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन के स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड के लिए हालिया जांच है। असल में जांच के अंतर्गत पिछले बुधवार को डोडो टॉपअप कंपनी के निदेशक योहान मुहापियर को गिरफ्तार किया गया। संदिग्ध व्यक्ति ने अपने आप को कमर्शियल बैंक का एक कर्मचारी बताया और व्हाट्सएप पर लोगों से उसने संपर्क रखा तथा उनसे उनकी बैंक संबंधी जानकारियां प्राप्त की। समझा जाता है कि उसने 2 मिलियन रुपए तक की रकम ऐंठ ली है। फाइनेंशियल क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन यूनिट एफसीसी के एक्टिंग हेड डैनियल चंगयान ने कहा,
2: Je trouve un logo de la banque locale qui vous dit comme ça qu'il y a un problème là où qu'on ban scamela je tenais une ordre que m'a convaincre la personne. Je prétends être la banque, prétends être la police, custom, donc besoin d'une casse. Il y a un numéro qui ban personne a venir rapporter ces ban numéro étranger plus 44 l'Angleterre ou soit ban numéro de Madagascar de l'Afrique.
1: इस साल की शुरुआत से तथाकथित हेरा फेरी की 57 जांच रही। 20 से अधिक इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड से संबंधित 6 महीनों में इस तरीके से 10 मिलियन से अधिक रुपए की रकम डाइवर्ट की गई। एफसीसी के एक्टिंग चीफ पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर इब्राहिम रोसाई ने कहा,
3: Malheureusement, c'est ben du monde vulnérable, ben personne âgée qui victime de sa bande fraudée là. Étant donné qu'il nous a un mandat d'éducation et de prévention aussi, nous passons l'appel aux membres du public, à tout le monde, pour qu'ils aient fait bien attention quand quelqu'un demande un détail bancaire, que ce soit l'OTP, que ce soit l'account number ou ça l'PIN number, vous besoin pas donner.
1: हाल में कुछ अलग तरीके की धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं, यानी नकली डोमेन खासकर कंपनियों को निशाना बनाया जा रहा है।
2: Quand il me l'a ou get lui at first sight ou tout dit tout correct mais quand vous analysez bien vous trouvez un petit point en plus ou soit une exclamation des trucs comme ça que des fois la banque détectait mais des fois ça passait.
1: दो वर्षों में एफसीसी में इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड के 84 मामले दर्ज किए गए हैं। एफसीसी ने इस शुक्रवार को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऐसे नकली नंबरों को उजागर किया जिनका इस्तेमाल फ्रॉड करने वाले कर रहे हैं।
0: निर्यात को बढ़ावा देना मॉरिशस की आर्थिक प्राथमिकताओं में शामिल है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा के बढ़ते दौर में मॉरिशस नए बाजारों की तलाश के साथ उच्च मूल्य वाली सेवाओं के निर्यात पर भी जोर दे रहा है। इसी दिशा में इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड स्थानीय उद्योग को नए अवसरों तक पहुंच बनाने और अंतर्राष्ट्रीय मंडियों में अपनी मौजूदगी मजबूत करने में सहयोग दे रहा है। दुनिया के कई हिस्सों में जारी चुनौतियों के बीच चीन अफ्रीका के साथ अपने संबंधों को और मजबूत बनाने पर ध्यान दे रहा है। इसी संदर्भ में बेलहोज स्थित चीनी दूतावास में आयोजित एक संवाद सत्र के दौरान मॉरिशस में चीन की राजदूत ने मीडिया प्रतिनिधियों के साथ चीन अफ्रीका संबंधों, बीजिंग की प्राथमिकताओं और मॉरिशस के साथ सहयोग की संभावनाओं पर विचार साझा किए। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
4: व्यापार, नवाचार, हरित विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान, ये ऐसे प्रमुख क्षेत्र हैं जिनमें बीजिंग अफ्रीकी महाद्वीप के साथ अपनी साझेदारी को और मजबूत बनाते हुए प्रगति देखना चाहता है। मीडिया से बातचीत के दौरान चीन की राजदूत हुआंग शिफांग ने विशेष रूप से उन नई पहलों पर प्रकाश डाला जिनका उद्देश्य अफ्रीकी उत्पादों की चीनी बाजार तक पहुंच को आसान बनाना है। साथ ही उन्होंने कई रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग की व्यापक संभावनाओं का भी उल्लेख किया। राजदूत ने ये भी रेखांकित किया कि भू राजनीतिक तनावों और आर्थिक चुनौतियों से प्रभावित वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में उनका देश संवाद और बहुपक्षवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।
5: China has always worked with Africa in the spirit of sincerity, real results, amity and good faith, and will continue to do so. A concrete example is the zero tariff treatment China has implemented since May 1st this year. With this policy, China has become the first major economy to voluntarily extend comprehensive zero tariff treatment to all African countries with diplomatic ties.
4: मॉरिशस के लिए ये पहले सहयोग के नए अवसर खोल सकती हैं, विशेष रूप से नवाचार, सतत विकास तथा मानवीय और सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्रों में। चीन ने कई कूटनीतिक मुद्दों पर भी अपनी स्थिति दोहराई है। राजदूत ने एक चीन सिद्धांत के प्रति मॉरिशस की निरंतर प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने साथ ही शागोस मुद्दे पर मॉरिशस के रुख के प्रति बीजिंग के समर्थन को भी पुनः दोहराया।
5: China appreciates Mauritius' long-standing and firm commitment to the One China principle and has always firmly supported Mauritius' just position on the Chagos issue. China stands ready to work with Mauritius to uphold the purposes and principles of the UN Charter, safeguard national sovereignty and territorial integrity, and defend international fairness and justice.
4: राजदूत के अनुसार ये प्रतिबद्धताएं मॉरिशस के साथ एक दीर्घकालिक और रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने की बीजिंग की दृढ़ इच्छा को दर्शाती है।
0: मॉरिशस और स्पेन के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने की दिशा में एक नया कदम उठाया गया। स्पेन के नए राजदूत जोसे मैनुएल पास्कुआल गार्सिया ने आज स्टेट हाउस में राष्ट्रपति को अपना परिचय पत्र दिया। इस अवसर पर दोनों देशों के संबंधों तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की गई। फलों और सब्जियों की आपूर्ति व्यवस्था को लोगों के और करीब लाने की दिशा में एक नई पहल की जा रही है। नेशनल होलसेल मार्केट की कुछ सेवाओं को गुडलैंड्स और फ्लैक तक वितरित करने की योजना विस्तारित करने की योजना है। इस परियोजना का उद्देश्य परिवहन लागत को कम करना और उपभोक्ताओं तक उत्पादों को अधिक आसानी से पहुँचाना है। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
6: करीब 1,500 खेतिहर औक्षणीय नीलामी करने वाले व्यावसायिक और टापू भर से 700 से 900 वाहन बेलगेव स्थित नेशनल होलसेल मार्केट में रोज मौजूद। यहां पर 200 टन फलों एवं सब्जियों की बिक्री होती है। बोली लगाकर बिक्री के विकेंद्रीकरण के साथ परिवहन से संबंधित खर्चों को कम करते हुए फलों एवं सब्जियों की अधिक से अधिक बिक्री प्रोत्साहित की जा रही है।
7: Bansi Plantier, surtout qui ben, vous apprend les légumes de tout coin de l'île Maurice pour amener à Bellerive. Les frais de transport, ça pour aider à baisser le coût de production.
8: Moi-même, en compteur, ça veut dire que nous avons un sens pour travailler et flac et né du matin, 4h du matin. 4h du matin, à National Council of Mogherini, travaille ça et né la journée, midi à et né la journée. Nous avons un sens, nous pouvons travailler de côté.
6: विकेंद्रीकरण की पायलट परियोजना के चलते कृषि उद्योग मंत्रालय और एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड की ओर से विचारों के आदान प्रदान करने के लिए संबंधित सभी पक्षों को जुटाया गया।
9: बन मौसम सेलमो क्या से हो ग्रो से बनला की jouer le prix un petit peu mon perroger. Mais par contre, ce que nous nous proposer à cette là, c'est-à-dire vous avez un buyers sellers meeting, côté comment dire planter là les vignes, les vendre en gros, mais les capables vendre en petite quantité avec Manjimoun qui ont envie acheter.
10: C'est bien que nous faisons là sa session interactive là. Et tout va se faire dans un esprit de participation et avec la transparence voulue. Okay? Et parce que aussi bien répondre à la norme sanitaire.
6: करीब एक महीने में परियोजना पर काम शुरू होने वाला है। शनिवार के दिन गुडलैंड्स में मंडे के पास और फ्लाक में बस अड्डे के पास।
0: हर चार साल में आने वाला महीना जब रातें छोटी और फुटबॉल की चर्चाएं लंबी हो जाती हैं। कल से विश्व कप 2026 का आगाज हुआ और इसके साथ ही मॉरिशस के फुटबॉल प्रेमियों में भी उत्साह चरम पर पहुंच गया। मैक्सिको के ऐतिहासिक स्टेडियम में रंगारंग उद्घाटन समारोह ने इस वैश्विक आयोजन की शानदार शुरुआत की। जरा विस्तार से रिपोर्ट।
11: फीफा वर्ल्ड कप 2026 औपचारिक रूप से शुरू। पहली सीटी बजने से पहले उद्घाटन समारोह ऐतिहासिक अस्टेका स्टेडियम में। अस्सी हजार से ज्यादा फैंस से भरा था स्टेडियम। साथ साथ मेजबानी रही तीन अलग अलग शहरों में, वहां पर भी समारोह हुए। लोकप्रिय कलाकार की कमी नहीं थी। शकीरा, बनाबोई, जे बाल्विन स्टार परफॉर्मर रहे। वर्ल्ड कप 2010 के प्रतीक शकीरा अपने वाका वाका के साथ इस बार दाई दाई गीत के साथ उन्होंने सबको नचाया। एक्ट्रेस सलमा आयक के साथ फीफा के अध्यक्ष यानी इन्फेंटिनो वर्ल्ड कप के ट्रॉफी प्रस्तुत कर पाए। फिर दिग्गज आंद्रेया बोसेली के परफॉर्मेंस रहे। रंगारंग कार्यक्रम के बाद फुटबॉल की बारी, जहां मेजबान टीम मेक्सिको ने अपना पहला मैच आसानी से जीता। अपने हजारों फैंस के सामने ज़ावियर अग्वेरे की टीम की आसान जीत हुई 2-0 से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। इस वर्ल्ड कप में पहला गोल 90 मिनट पर स्कोर किया जुलियान क्विनोनेस ने। फिर सेकंड हाफ में राउल यिमेनेज दूसरा गोल स्कोर करता है मेक्सिको के लिए। इस मैच में केवल गोल नहीं बल्कि इस मैच में रेड कार्ड भी रहे। तीन तीन रेड कार्ड, दो दक्षिण अफ्रीका के लिए, एक मेक्सिको के लिए। मेक्सिको का अगला मैच दक्षिण कोरिया से होगा। दक्षिण कोरिया ने भी अपना पहला मैच जीता 2-1 से चेक रिपब्लिक के खिलाफ, जबकि दक्षिण अफ्रीका के बफाना खेलेंगे चेक रिपब्लिक के विरुद्ध। मेजबान टीम मेक्सिको की सफल शुरुआत अपनी जनता के सामने वर्ल्ड कप में बहुत दूर जाना चाहते हैं, ठान लिए हैं बहुत आगे जाने के लिए।
0: और मेजबान मेक्सिको की जीत के साथ विश्व कप का रोमांचक सफर शुरू हो चुका है और अब बारी है दूसरे मेजबान देश कनाडा की। कनाडा आज रात बोस्निया के खिलाफ खेलेगा और उसकी कोशिश विजय शुरुआत करने की होगी। दूसरी ओर बोस्निया भी मैच में अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहेगा। मिडलैंड्स में कल हुई एक दुखद घटना के बाद पुलिस जांच में जुटी हुई है। 40 वर्षीय जोनाथन कुयामटू का शव एक शिकार क्षेत्र के पार्किंग स्थल पर उसकी गाड़ी के पास खून से लथपथ अवस्था में मिली। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार उनके सीने पर गोली लगने का निशान पाया गया है। इस घटना के सटीक कारणों और परिस्थितियों का पता लगाने के लिए जांच जारी है। विदेश की खबरों में, क्या अमेरिका और ईरान के बीच जारी टकराव अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता जल्द हो सकता है। हालांकि ईरान ने अभी किसी अंतिम सहमति की पुष्टि नहीं की है। युद्ध विराम, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े इस घटनाक्रम पर अब पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। जानते हैं मौसम का हाल। हमारे इलाके पर हल्की हवाएं बह रही हैं। इसके अलावा पूर्व से आ रहे सक्रिय बादल आज रात को स्थानीय मौसम को प्रभावित करने लगेंगे। आज रात आसमान साफ रहेगा। कल सुबह पूर्वी इलाकों, दक्षिणी इलाकों, उत्तरी इलाकों, सेंट्रल प्लेटू पर बादल घिर रहेंगे। दोपहर बाद भी पश्चिमी इलाकों पर बादल घिराएंगे और बारिश की भी संभावना है। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के परे 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटू पर 17 से 19, अधिकतम 23 से 26, जबकि तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 21 से 23, अधिकतम 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह सूर्योदय 6:42 पर, शाम को सूर्यास्त 5:37 पर होगा।

0: देश विदेश की इन्हीं खबरों के साथ ये बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसको आप तक पहुंचाने में पूरे न्यूज विभाग और तकनीकी पर शिव का साथ रहा। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।
1: NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: शोक समाचार सुनिए। लाल बहादुर लेन मालेगा सेंपिया में, लाल बहादुर लेन मालेगा सेंपिया में 75 साल के 75 ईयर्स ओल्ड के श्री विनोद महेश गंगाराम, श्री विनोद महेश गंगाराम जो मनोज के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 1 बजे उनकी पत्नी रानी गंगाराम के मकान लाल बहादुर लेन मालेगा सेंपिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैमौतैमो होश की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 1 PM। एम्पास मर्डर एंड स्टोर रॉयल रोड ओकुले में, एम्पास मर्डर एंड स्टोर रॉयल रोड ओकुले में 85 साल की 85 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती जगाजूदी मारीमुतु, श्रीमती जगाजूदी मारीमुतु पैदाशिना मर्डन और जो आते पुष्पा के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सपहर 3 बजे उनके मकान एपास मर्डन स्टोर रॉयल रोड ओकुले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बीगाहा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 3 PM। जॉन मिल्टन रोड होशनुआ में 78 साल की 78 ईयर्स ओल्ड की विधवा अमावती जीवन पैदाशी नाम मुतादिन और जो अमावती के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 9:30 बजे उनके मकान जॉन मिल्टन रोड होशनुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पीतों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 9:30 AM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: It's not just about the music, it's about the feeling.
3: Friday Mashup.
4: Friday Mashup.
2: RM2, Radio Musty, in the mix.

0: Well, guys, welcome in the third hour of this beautiful show. That's your Friday mashup happening just between you and me. आपके मनपसंद रेडियो स्टेशन पर. जी हाँ, that's Radio Masti. 6:27 हो चुके हैं. Once again, a very good evening to all of you. नमस्कार, गणेशा का प्रणाम. उम्मीद करते हैं कि आज का दिन आप ज्यादा थके हुए नहीं हो. वैसे अगर हो तो आपको पता है ना कि म्यूजिक सुनते सुनते हम थकान को भगा भी देते हैं. तो जस्ट तैयार हो जाइए बस साथ देने के लिए. आप बस यूं ही खूबसूरत गानों का मजा ले लीजिए एंड कीप ऑन लिसनिंग टू योर नंबर वन रेडियो स्टेशन. एंड हियर वी गो, दिस वन गोज आउट टू यू माय डियर.
1: यू आर लिसनिंग टू रेडियो मस्ती.
2: Check it out.

टाइम भी इतना चला जा रहा है, 6:41 हो चुके हैं एंड आई गेस लॉट ऑफ पीपल ऑलरेडी काम से घर पहुंच गए हैं और अभी किचन में हैं एंड ऑलरेडी काम पे लगे हुए हैं टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर डिनर एंड कुहाश टू यू माय डियर टू ऑल दोस जो किचन में हैं और आपके मैसेजेस तो फिर से आने लगे ऑन 5499124 पर अगला गाना अरशद के लिए एंड स्पेशली आपके प्यारे बेबी रिबिका की तरफ से जो बोलते हैं कि वो आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं एंड सिस्टर लो रेशमी बगन का जन्मदिन है सो विशिंग योर मैजिकल बर्थडे माय डियर एंड दैट्स कमिंग फ्रॉम सुया लालदेव बेटा विकी बहुकुर कीर्ति वी डू हैव अवनी एंड अ क्यूट वंश फ्रॉम सुया बिहारी ऑफ कंगोमा थैंक यू सो मच सुया जी एंड ऑल दोस हु आर सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडेज एज वेल हम आपको विश करना चाहेंगे लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस सो हैप्पी बर्थडे टू यू माय डियर एंड चलिए जी हैप्पी एट बर्थडे टू प्रिंस अहान बिचू पुद्रो विलेज के रहने वाले एंड दैट्स कमिंग फ्रॉम सचिन बेस्ट विशेज फ्रॉम काजल श्रवण श्रवणी डारन श्वेता रविश प्रिय श्रविशाना पैडो फैमिलीज की तरफ से लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस टू यू माय डियर एंड वेल ये अगला गाना उन तमाम सुनने वालों के नाम जो साथ दे रहे हैं ऑन आवर टू रेडियो मस्ती

तो चलिए जी, इट्स टाइम फॉर गणेश आरती से गुड बाय टू यू. आ गई है हमारी प्यारी दिव्या. यस, फॉर सम लवली म्यूजिक ऑन दिस ब्यूटीफुल फ्राइडे इवनिंग. के लिए आपका साथ देने के लिए ऑन रेडियो वसी. तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत. टेक केयर, बाय बाय.

0: फिल्मी जैम
1: ओएमजी रेडियो मस्ती।
2: भाई देखिए, जब एंजॉय करने की बारी आती है तो हम साथ में रहते हैं, जब प्यार इश्क मोहब्बत की बातें करने को आती हैं तभी हम साथ देते हैं। कहने का मतलब यही है कि सिचुएशन जैसा भी हो, हम तो वादा करते हैं तो इस वादे को निभाने भी आते हैं। शाम के 7:04 हो चुके हैं, इट्स अ वंडरफुल फ्राइडे इवनिंग, इट्स अ फ्राइडे, और फंटास्टिक फ्राइडे को अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए ऑफकोर्स आपको जुड़ जाना है रेडियो मस्ती के साथ, क्योंकि अभी हमारे गाने आप नहीं सुनेंगे तो डेफिनेटली आपका ये फ्राइडे इवनिंग इज गोइंग टू बी इनकम्प्लीट विदाउट दीज ब्यूटिफुल धमाकेदार गाने। कल प्रॉमिस किया था कि एक अलग ही मूड के साथ हम आएंगे, तो फ्राइडे मूड और फ्राइडे मोड ऑन है, तो ऑफ कोर्स आपकी मूड को एकदम सेट करेंगे विद द बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती टिल 9 PM, जहां पर नॉन स्टॉप आप लोगों के लिए धमाकेदार गाने ही चलेंगे। चलिए, हम तो जरूर जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आप अपने इस फ्राइडे इवनिंग को स्पेंड कर रहे हैं। शायद आप लोग सिनेमा में मूवी देखने जाएंगे, या फिर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे, कहीं पर इनवाइटेड हैं, या फिर आपने किसी को इनवाइट किया हुए अपने यहाँ। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई देखो, कुछ नहीं चाहिए, बस आराम करना है। चलिए, ये भी अच्छी बात है, हमेशा हम कहते हैं ना कि जो भी आप करेंगे उसमें हम आपके साथ हैं। और चलिए, आपकी इस डेली रूटीन में हमें हिस्सा बनाने के लिए थैंक यू सो मच, एंड इट्स योर फिल्मी जाम जहाँ पर दिव्या का साथ है टिल 9 PM। सो आपके मैसेजेस को ज़रूर

0: हम वेलकम करेंगे ऑन 5499-1294 इज द मैजिकल नंबर जहां पर आपको अपने मैजिकल मैसेजेस को ड्रॉप इन करना है.
1: फिल्मी जान
2: RM2 रेडियो मस्ती

0: फिल्मी जैम
1: रेडियो मस्ती।
2: वाह क्या बात है, इसको कहते हैं फ्राइडे इवनिंग। मतलब ऐसे ऐसे गाने हम चलाएंगे कि ऑटोमेटिकली आप अगर पार्टी मूड में नहीं है ना तो तभी आप पार्टी मूड में आ जाएंगे और शायद दोस्तों को भी फोन लगाएंगे कि हे आज का क्या प्लान है। हमेशा हम कहते हैं ना कि अनएक्सपेक्टेड प्लान्स और ऑलवेज द बेस्ट। तो कभी ऐसा हुआ होगा आपके साथ कि आपने ठान लिया है कि आप घर पर रहेंगे, आज आप रिलैक्स करने वाले हैं और अचानक से आपको फ्रेंड्स या फिर कुछ फैमिली मेम्बर्स के फ़ोन कॉल्स आते हैं और आप निकल पड़ते हैं उनके साथ कुछ मौज मस्ती करने के लिए। And it turns out to be the best memories of your life. ऐसा होता है, तो चलिए जितना हो सके try to make the most of this Friday, क्योंकि असली खुशी Friday evening को ही होती है। क्योंकि जब Saturday आता है ना तो हम already prepare होने लग जाते हैं Monday daily routine के लिए। तो इसीलिए it's very important कि आप इस Friday evening को जी भर के जीने की कोशिश कीजिए। चलिए तैयब साहब आपको आदाब, साथ देने के लिए शुक्रिया आपको। एंड चलिए नेक्स्ट गाना उन तमाम लोगों के लिए जो इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ, वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। डोंट फॉरगेट 5499 1294, कोई भी गाना अगर आपको सुनना है तो ज़रूर हम तक आपकी फरमाइश को आप पहुंचाइए। लेकिन आज फ्राइडे है तो जितना हो सके कुछ अगर धमाकेदार गाना आप इसका रिक्वेस्ट कर पाएंगे तो विल बी मच हैप्पियर। तो चलिए कुछ और खूबसूरत गीतों के साथ इस म्यूजिकल कारवां को नॉन स्टॉप ऐसे ही चलाते रहेंगे टिल 9 PM। लेकिन डोंट फॉरगेट अगर आप पार्टी के मूड में हैं और अगर आपको पता है कि शायद कुछ ड्रिंक करने के बाद आप गाड़ी नहीं चला पाएंगे तो प्लीज डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। ये हर फ्राइडे को हमेशा हम कहते हैं बिकॉज हम चाहते हैं कि अगर आप एक हैप्पी वाले ओकेजन में शामिल हो रहे हैं तो आप खुशी खुशी इसमें शामिल होइए एंड आप सेफली अपने घर तक पहुंचिए।
0: फिल्मी जैम
1: RM2 रेडियो मस्ती।

Filmi Jam. OMG Radio Masti. All right, it's a wonderful Friday evening और इस fantastic Friday में हम साथ देने के लिए आ चुके हैं and of course हमारा और आपका साथ रहेगा till 9 PM और मुझे पता है कि Friday night में बहुत सारे लोगों का late dinner भी होता है क्योंकि आप इतने मौज मस्ती में डूबे रहते हैं कि बस late dinner ही ले लेते हैं भाई देखिए इसका मजा ही कुछ और होता है इसीलिए आपसे हम बार बार request कर रहे हैं जितना हो सके ना हमेशा आपके Friday को जितना हो सके इसको memorable बनाने की पूरी कोशिश कीजिएगा चलिए यहाँ पर हमारी तरफ से पूरी कोशिश है थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन आई होप हम दे पा रही है टू मेक योर फ्राइडे इवनिंग ब्यूटीफुल वन एंड चलिए यहां पर आपके मैसेजेस की ओर हम बढ़ेंगे नमस्ते जी आशनी ही हाउ आर यू हम बिल्कुल ठीक है एक्चुअली आपके डैड हैं किरण फ्रॉम बोसोर्ज इज फीलिंग अ बिट लो आफ्टर वर्क और उनके इस फ्राइडे इवनिंग को थोड़ा सा आप ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं यू मे वॉन्ट टू मेक हिम स्माइल थ्रू द सॉन्ग नीले नीले अंबर पर लोड्स ऑफ लव फ्रॉम आशनी लीना एंड सोहम थैंक यू सो मच आशनी कि आप अपने पापा के बारे में इतना सोच रहे हैं तो चलिए आई एम श्योर कि आपके पापा अगर इस वक्त हमें सुन रहे हैं तो उनको बहुत ही प्राउड फील होगा कि उनके पास एक केयरिंग बेटी है आपकी तरह तो चलिए अगर पॉसिबल हुआ तो हम चलाएंगे क्योंकि अभी के लिए तो बस ब्यूटीफुल धमाकेदार और लेटेस्ट गाने हम चलाने की पूरी कोशिश कर रही हैं हाय नमस्ते कैसी हैं आप सुया जी आप हैं कुंगमा थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए एक्चुअली सुया जी नहीं है बल्कि कोई और है एक्चुअली मैसेज भेजने का तरीका मैंने देखा तो मुझे लगा कि वो ही है कोई बात नहीं उनका बाद में मैसेज आएगा आई एम वेरी श्योर और आप कहती हैं हाय बेटी नमस्ते मैं तो नाच रही हूँ पराठा बना रही हैं और नाचते नाचते पराठा बनाना वाह क्या बात है इसको एक्सरसाइज कहते हैं तो चलिए उम्मीद करते हैं कि ये जो आप नाच नाच कर रोटी बना रही है ना उससे आपका प्यार भी लोगों को चखने को मिलेगा चलिए यहाँ पर नेक्स्ट का नाम गुजार फॉर बिंदिया सोना कालू ऑफ मिलशान ऑफ गुडलैंड्स एंड आपके दो बेटों के नाम वी हैव सनी एंड स्वयं सभी कालू फैमिली के नाम भी तो चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले गाने की ओर एंड डोंट फॉरगेट इट्स योर फिल्मी जैम जहाँ पर दिव्या का साथ है अभी से लेकर टिल 9 PM फिल्मी जैम ओएमजी रेडियो मस्ती

0: फिल्मी जाम
1: रेडियो मस्ती।
2: All right. मुझे पता है कि फ्राइडे इवनिंग को आपके पास बहुत कुछ करने को होता है, लेकिन इसके बावजूद भी आप लोग टाइम निकाल कर हमें याद कर रही हैं। ये मेरी सबसे फेवरेट पार्ट है जहां पर इससे साफ आपका प्यार झलकता है। थैंक यू सो मच टाइम निकाल के हमें याद करने के लिए। एंड यहाँ पर आप कहती हैं हेलो गुड इवनिंग, नमस्ते दिव्या, टीना हियर। हेलो टीना जी, कैसे हैं आप? बहुत ही खूबसूरत सा फूलों का गुलदस्ता आपने भेजा है और हर एक फूल यहाँ पर नेचुरल है। आई कैन सी इट्स सो ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच कि आपने इतना खूबसूरत फूल हमें भेजा है, भले ही वर्चुअली आपने हमें भेजा है लेकिन दिल तक पहुँच गया। थैंक यू सो मच। एंजॉइंग द धमाकेदार शो फुल ऑन वॉल्यूम के साथ ऑन रेडियो मस्ती। नेक्स्ट गाना गुज़ आउट टू ऑल योर लव्ड वंस, टेक केयर, स्टे सेफ एंड बॉन कुराज। थैंक यू सो मच टीना जी, आपको भी हैव अ ग्रेट ग्रेट फ्राइडे इवनिंग अहेड। और साथ में यहाँ पर अगला गाना खास तौर से हम डेडिकेट करेंगे फॉर हेमा बीसू, आप रहती हैं काठमांडू। नेक्स्ट गाना गुजार फॉर मॉम शमिला, आपके पापा हैं मनोज, बेटी हनिष्ठा, नवीश आपकी बहनें हैं पूजा, डिंपल एंड अनलकीली। यहां पर आपका मैसेज आधा अधूरा आया है क्योंकि कभी कभी टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं नॉर्मल मैसेजेस। अगर आप कंप्लीट मैसेज भेजना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर हमें मैसेज भेज सकते हैं एक बार फिर से ऑन 5499-1294। यस, व्हाट्सएप नंबर सेम ही है 5499-1294। तो चलिए इसी के साथ कुछ और खूबसूरत गीतों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। एंड दिस गाना गोज आउट टू ऑल दोज हैविंग अ लॉन्ग ड्राइव राइट नाउ।
0: Filmy Jam.
1: RM2 Radio Musti.

0: फिल्मी जैम
1: OMG रेडियो मस्ती
2: नॉनस्टॉप वंडरफुल बोम्बास्टिक गाने ऐसे ही चलाएंगे आप लोगों के लिए. चलिए यहाँ पर किसी ने कहा है, हेलो लव योर शो, कुड यू प्लीज प्ले द सॉन्ग सलामे इश्क फॉर माय हस्बैंड सिद्रिक फ्रॉम वाइफी ताश्विनी, अगर पॉसिबल हुआ तो हम चलाएंगे जरूर. वैसे दिव्या साथ रही है अभी से लेकर टिल 9 PM, सो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड. एंड आप कहते हैं नमस्ते जी, हम श्वेता हुकुम फ्रॉम बुनाकोई. एज यूजल श्वेता आ गई है अपने प्यार का इजहार करने के लिए अपने बिलवड हबी रोशन के लिए फ्रॉम रानी. एंड जस्ट वॉन्ट टू टेल हिम दैट लव यू सो मच हस्बैंड जी. चलिए आई जस्ट होप कि इस वक्त आप दोनों साथ हैं और आपके पति ज़रूर मैसेज पढ़ के सुन के एक्चुअली बहुत ही स्माइल कर रहे होंगे. चलिए आई जस्ट होप कि हर किसी का फ्राइडे ऐसे ही हो फुल ऑन मस्ती के साथ. हम यहाँ पर जारी हैं कुछ खूबसूरत गीतों के साथ टिल 9 PM. And it's your filmy jam, जहाँ पर दिव्या का साथ है. So stay right connected. Keep on sending your messages on 5499-1294.
0: Filmy jam.
1: RM2 Radio Musti.

0: आइए जानते हैं एमबीसी प्ले पर न्यू वर्ल्ड स्पोर्ट्स पैक में सब्सक्राइब करने का तरीका। स्टेप वन, सब्सक्राइबर को पहले एमबीसी प्ले ऐप खोलना होगा और जाना होगा टीवी सेक्शन में। अब जब किसी भी न्यू वर्ल्ड चैनल पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा टू अ सिक्योर मिप्स पेमेंट पोर्टल। स्टेप टू, अब आपके सामने होंगी दो पेमेंट ऑप्शंस। एक तरीका मोबाइल बैंकिंग एप्स के जरिए पेमेंट करने का, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। सो आपको सिलेक्ट करना होगा अपना प्रेफर्ड मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। अब इन पेमेंट एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर आपको एंटर करना होगा। ऐसा करने के बाद उस बैंकिंग एप्लीकेशन के द्वारा एक सिक्योर पुश नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पर दिखेगी। यूजर को उस नोटिफिकेशन को खोलना है, ट्रांजैक्शन और उसकी डिटेल्स को रिव्यू करना है और सिलेक्ट करना है एक्सेप्ट एंड पे। और वहीं पर अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का ऑप्शन चुनते हैं तो पहले मांगी हुई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स आपको भरनी होंगी और उसके बाद आपके बैंक के द्वारा आपको मिलेगा एक सिक्योर्ड वन टाइम पासवर्ड, यानी कि ओटीपी एसएमएस या ईमेल द्वारा। ये ओटीपी आपको अपने स्क्रीन पर एंटर करना होगा टू ऑथराइज द ट्रांजैक्शन। तीसरा और अंतिम स्टेप, एक बार यूजर ने पेमेंट को ऑथराइज कर दिया अपने बैंकिंग ऐप या ओटीपी के द्वारा, तो उनको अपना स्क्रीन नहीं बंद करना बल्कि इंतजार करना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है पूरी तरह कंप्लीट हो जाए ऑन द एमबीसी प्ले एप्लीकेशन। अब बस सक्सेसफुल पेमेंट कंफर्मेशन होते ही सिस्टम ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर देगा एमबीसी प्ले होम पेज पर और अनलॉक कर देगा इमीडिएट एक्सेस टू द प्रीमियम स्पोर्ट्स स्ट्रीम्स। ज्यादा जानकारी या मदद के लिए सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच में फोन कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन सपोर्ट को 433-3135 या 433-2871 या 433-3145 या 433-2905 या 5251-6363 या फिर ऑन 5944-6800।
1: The time is brought to you by McDonald's.
2: McDonald's, pa-da-pa-pa-pa. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee. Share the taste, share happiness.
3: Radio Musti.
4: North, South,
5: 103.5.
4: East, West,
5: 96.4.
4: Center,
5: 99.4.
6: RM2 Radio Musti.
3: Radio Musti.
6: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
7: Time check, already 8 p.m.
8: L'action peut continuer donc en finale de compétition débat climat. Bonnes élèves depuis 8 collèges qui finissent sélectionnés, finissent parés pour porter à toute l'opinion le changement climatique. Débat climat, c'est une initiative MCB et Rajiv Gandhi Science Center avec collaboration Dr. François Gemène, spécialiste en environnement. Rendez-vous samedi 13 juin au MBCN et MBCSAT à partir de 8h30 à soir.
9: Feel me, jam.
6: RM2, Radio Musti.

0: फिल्मी जैम
1: OMG रेडियो मस्ती।
2: हाय, इसको कहते हैं गाना। सुखविंदर सिंह और सुनिधि चौहान क्रिएटेड मैजिक। इस गाने के जरिए हम भी यहाँ पर मैजिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं बाय एंटरटेनिंग यू विद दिस ब्यूटीफुल लवली गाने। चलिए, यहाँ पर नॉनस्टॉप आपके मैसेजेस आने चाहिए और हम तो वेट ही कर रहे हैं कि जब आपके मैसेजेस आएंगे हम प्यार से पढ़ेंगे और प्यार से आपका जो पैगाम है आपके अपनों तक पहुँचाएंगे। वेल, ये अगला गाना हम ज़रूर करिश्मा के लिए डेडिकेट कर रहे हैं एंड जितने भी सारे लोग इस वक्त सुन रहे हैं हमें, थैंक यू सो मच। वी हैव राधा जी ऑल द वे फ्रॉम कनाडा, थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए। नेक्स्ट गाना गोज आउट टू ऑल योर फैमिली इन कनाडा मॉरिशस आरएम टू लिसनर्स के लिए। हैप्पी फ्राइडे आपको भी, हर हर महादेव। तो आपने गाना मांगा है आज की रात, ये तो लास्ट वीक हमने ऑलरेडी चला लिया था। तो चलिए राधा जी, ये अगला गाना गोज आउट स्पेशली फॉर यू एंड टू ऑल दोज जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं। और अगर आप लोग इस वक्त ड्राइव कर रहे हैं तो आपके से हम रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज ड्राइव सेफली एंड drive very very carefully.
0: Filmy Jam
1: RM2 Radio Musti.

0: फिल्मी जैम
1: रेडियो मस्ती।
2: भाई फ्राइडे इवनिंग है और ऐसे में मूड थोड़ा नाचने वाला भी होना चाहिए एंड यहाँ पर जितना हो सके ऐसे ऐसे गाने हम चला रहे हैं कि आप मजबूर हो जाएंगे अगर आप घर पर हैं डिनर ले रहे हैं तो डिनर ले लेने के बाद आप खुद ब खुद आपको ऐसा फील होगा कि नहीं भाई चलो थोड़ा सा डांस कर ही लेते हैं। घर बैठे बैठे भी आप पार्टी कर सकते हैं खुद के साथ। इट्स ऑलवेज नाइस टू एन्जॉय योर ओन कंपनी। कभी ऐसा होता है ना कि आपको कहीं पर जाने का मन नहीं होता है, किसी से मिलने का भी मन नहीं होता है, बस आप डिनर ले लेने के बाद रिलैक्स करते हैं और रिलैक्स करने के बाद भी थोड़ा बहुत एक्सरसाइज तो ज़रूरी है, इसलिए हम आपके साथ हैं। तो चलिए आप हमारे इस कंपनी को एंजॉय ज़रूर कीजिएगा ऑन RM2 रेडियो मस्ती, जहां पर हम लेकर आए हैं आपके लिए खूबसूरत गाने। 8:20 हो चुके हैं, टाइम है हमारे और आपके दरमियान चल 9 PM, जहां पर नॉन स्टॉप आपके लिए हम लेकर आए हैं कुछ खूबसूरत गाने। तो चलिए यहां पर वी विल डेफिनेटली लाइक टू हियर द नेक्स्ट गाना स्पेशली फॉर स्वयं, बहुत ही प्यारा सा नाम है स्वयं। द नेक्स्ट गाना गोज़ आउट स्पेशली फॉर यू श्रिया, और साथ में आप कहते हैं कि मेरे सभी फ्रेंड्स के नाम टू ऑल द फैमिली मेम्बर्स जो आपको जानते हैं और आप इस वक्त कनेक्टेड हैं हमारे साथ फ्रॉम बॉम्बू, थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए। तो चलिए यहाँ पर अगला गाना खासतौर से उन तमाम हमारे खूबसूरत बटरफ्लाइज के लिए, यानी कि हमारी लड़कियों के नाम, कुरी नू नचने दे। भाई फ्राइडे है तो थोड़ा सा डांस कीजिए और थोड़ा सा रिलैक्स भी कीजिए।
0: Filmy Jam.
1: RM2 Radio Musti.

0: फिल्मी जान
1: RM2 रेडियो मस्ती.
0: Well, we have this beautiful, beautiful Ghana in the beautiful voices of Vishal Dadlani. We have Shekhar, Dev Negi, Payal Dev. दिल्ली की कुड़िया हो या फिर कहीं की भी कुड़ी हो, बस जहां पर भी जाते हैं माहौल का रौनक भी बन जाते हैं. चलिए भी के लिए जस्ट होप कि आप लोग इस फ्राइडे इवनिंग को बहुत ही अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे हैं. और जैसे हम कह रहे थे शुरुआत में, थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन हमारी साइड से टू मेक योर फ्राइडे इवनिंग अ ब्यूटीफुल वन. तो चलिए इस गाने पर थोड़ा सा डांस हो

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती।
3: तो फाइनल है, कभी आई लव यू नहीं बोलना है, राइट?
4: राइट।
3: कूल। वैसे नेवर से आई लव यू को फ्रेंच में कैसे बोलते हैं?
4: Nadi
5: Jamais Je T'aime. Nadi Jamais Je T'aime. Ah, it's so sexy.

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: RM2 रेडियो मस्ती।
1: बचपन में मरीन लाइंस पे हम लोग ट्रेन पकड़ा करते थे। कंपार्टमेंट में एक शख्स आकर बैठते थे और विस्लिंग किया करते थे, तो मेरे बड़े भाई साहब कहते हैं, यार ये कमाल सीटी बजाती है, ये कौन है? फिर पता चला कि मदन भैया हैं। मदन भैया की मेरी बहुत पुरानी एसोसिएशन थी, इतना प्यार कि जब मैं गाने गाता था स्कूल में या कॉलेज में, तो वहाँ आकर जब ये जज होते थे, सुनते थे, मुझे गाइड किया करते थे, कहते थे कि अपनी इंडिविजुअलिटी रखनी चाहिए,

0: RM2 Radio Musty.
1: हाँ, क्या कहा?